0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana.

FMK 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गाय कलाकार थे सुरेश वाडेकर। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे किया सेन। सुबह 7 समय होगा कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। प्रातः 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

8:40 पर माटी की महक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:20 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 2:55 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा।

3 बजे से पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसके तुरंत बाद 4:02 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम 5 बजे आकाशवाणी रांची से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। शाम 5:02 पर कार्यक्रम विवरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। संध्या 5:05 पर आप सुनेंगे गुलदस्ता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे एक ही गायिका के गाए चंद फिल्मी गीत। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

हुआकड़ा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:02 पर। 6:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत आज हेडिंगले लिड्स में भारत और नीदरलैंड के बीच होने वाले मैच का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे। 7:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे जिले में आजकल। सात बजकर 10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सरकार के 12 वर्ष के उपलक्ष्य पर एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जाएगा। आज का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ। 7:45 पर पुनः हम आपको लिए चलेंगे हेडिंगले लीड्स, जहां पर ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जा

चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे भारत और नीदरलैंड के बीच आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के मैच का सीधा प्रसारण। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं किया सेन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी किया सेन। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चयभाषा।

कार्यक्रम में आइए, अब सुनते हैं बड़े दिल वाला फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

इस गीत के बाद आइए सुनते हैं हम हिंदुस्तानी फिल्म का शीर्षक गीत मुकेश एवं साथियों के स्वर में।

जोहार चाहे भाषा के इस कार्यक्रम में श्रोता, आइए अब सुनते हैं गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

0: आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहा मना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हतो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
8: नितुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुर मिना जापा में रिया तपा में रिया वहा बेटा मिका
9: अन्या मतुम दो बुंबई कोड़ा पटन मतुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन मतुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गई यहाँ तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बको को काको मेल मिया
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अले आया नु तुम ते ही ना मिल आप ही लेता ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: जोहार चयबासा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत मुकेश के स्वर में।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के प्रभावित गृह रक्षकों को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत मुहर्रम पर्व ड्यूटी 2026 के अवसर पर दिनांक 25 जून 2026 से 28 जून 2026 तक कुल 4 दिनों के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु 300 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। अतः वैसे सभी गृह रक्षक जो वर्तमान अवधि में किसी भी प्रकार के कर्तव्य में प्रतिनियुक्त नहीं हैं, वे सभी गृह रक्षक जिला समादेष्टा कार्यालय चाईबासा में आकर दिनांक 18 जून 2026 से मुहर्रम पर्व हेतु आगमन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझें। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, जोहार चाईबासा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, जौहर चयबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
4: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुँच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
5: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
3: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
6: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
7: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
2: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon.

0: component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper.
1: It clarified that there is no leaked paper for the re-examination. It said that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared the video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. Talking to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
0: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
2: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagra style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashvani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
3: Mera naam Pankaj Jaria hai.
4: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
2: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashvani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath corridor is providing ease of access to pilgrims visiting the temple.
5: My name is Priyanshu Singh. I am a resident of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has done a
4: lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
5: Darshan karne mein kaafi aasani hoti hai.
2: Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
0: In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Cricket Stadium in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In women's cricket, India will take on Netherlands in their second Group A clash of ICC Women's T20 World Cup at Headingley in Leeds today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. In football, Norway returned to the FIFA World Cup in style with a 4-1 win over Iraq in their Group I opener at the Boston Stadium in the United States this morning. Norway's Erling Haaland netted twice to make his World Cup debut special. The scoreline now put Norway top of Group I. Earlier, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group I of FIFA World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
6: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, "The announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem." The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Kishau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 बज चुके हैं। हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन को लेकर की बैठक, कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर दिया जोर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में कहा, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सोच, नवाचार और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अंगदान से लोगों को मिलेगा नया जीवन, सरकार के साथ स्वास्थ्य संस्थानों और सामाजिक संगठनों को मिलकर करना होगा काम। झारखंड में कमजोर पड़ा मॉनसून, बारिश की कमी के कारण तापमान में हो रही वृद्धि, गर्मी और उमस बढ़ी। और रांची में आज से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल और राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का होगा आगाज। थ्रोबॉल प्रतियोगिता में 5 देशों के 150 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री चौहान ने चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
9: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची लोक भवन में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के तहत आईआईटी इंदौर से आए विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है और ऐसे कार्यक्रम युवाओं को देश की सांस्कृतिक समृद्धि को निकट से जानने का अवसर प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सोच, नवाचार और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि अंगदान कई लोगों के जीवन की नई शुरुआत बन सकता है और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अंगदान मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है तथा इसके लिए सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा।
10: युवा प्राप्तवान से लेके किडनी प्राप्तवानता का प्रमोट करते हैं। अब इस तरीके के कई बदलाव, कई सारी चीजें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ते जा रहे हैं, उन्हीं के बीच का ये ऑर्गन डोनेशन का भी एक विषय है। ये जरूर है कि इसकी अवेयरनेस, इसका आवश्यकता, इसकी कैसे इन सब चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं।
8: केंद्र सरकार के 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत रांची जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायतों, जेलों तथा शहरी क्षेत्रों में अब तक 3,100 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जाँच और उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
11: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत।

0: है। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। इस बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन देने के लिए भाजपा पर निशाना साधा है।
1: भारतीय जनता पार्टी की सोच ये रही कि नाथवानी को सपोर्ट करके यदि हम नाथवानी को चुनाव जिता देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत मानी जाएगी, अगर नाथवानी हार जाते हैं तो वह हार नाथवानी जी की झोली में जाएगी, तो ये सोच उनका ध्वस्त होने वाला है, हो चुका है।
0: झारखंड में 12 जून को दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के बाद भी बारिश सामान्य से काफी कम है, जिससे राज्य में उमस और गर्मी बढ़ गई है और किसान चिंतित हैं। बारिश की कमी के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका असर रांची सहित अधिकांश हिस्सों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 19 और 20 जून को राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में गरज और बारिश तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। इसे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची आज से दो बड़े खेल आयोजनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर चमकने के लिए तैयार है। खेल गांव में आज से दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल और नेशनल स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू हो रही है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारी संवाददाता।
2: राजधानी रांची स्थित खेल गांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आज से दो दिवसीय द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल चैंपियनशिप का रोमांचक आगाज हो रहा है। थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लगभग 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड के अमरदीप पुरुष टीम में शामिल हैं, जबकि राज्य की अरुणा यादव भारतीय महिला टीम की कमान संभाल रही हैं। इसके साथ ही रांची आज से एक और बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी कर रहा है। खेल गांव के रोलर स्केटिंग स्टेडियम में 5 दिवसीय 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप भी आज से शुरू हो रही है। 21 जून तक चलने वाली इस राष्ट्रीय स्पर्धा में देश भर से 1000 से अधिक स्केटर्स विभिन्न आयु वर्गों में क्वाड और इनलाइन रेस में अपना दम दिखाएंगे। मेजबान झारखंड के भी 127 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण विश्व चैंपियन स्केटर अनीश राज और के शर्मा की मौजूदगी रहेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नाथवानी के लिए एनडीए के विधायक होटल में। दैनिक जागरण ने रांची में आयोजित कृषि एवं व्यापार मेले की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने हजारीबाग में कोयला साइट पर तोड़फोड़ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने नीट पुनर्परीक्षा को लेकर टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन को लेकर की बैठक। कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर दिया जोर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में कहा, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सोच, नवाचार और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अंगदान से लोगों को मिलेगा नया जीवन। सरकार के साथ स्वास्थ्य संस्थानों और सामाजिक संगठनों को मिलकर ना होगा काम। झारखंड में कमजोर पड़ा मॉनसून, बारिश की कमी के कारण तापमान में हो रही वृद्धि, गर्मी और उमस बढ़ी। और रांची में आज से दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल और राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का होगा आगाज। थ्रो बॉल प्रतियोगिता में 5 देशों के 150 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित

FMK 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवा रहे हैं बांग्ला गीत। कलाकार हैं पूर्णदास बाउल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप सुन रहे थे बांग्ला गीत, कलाकार थे पूर्णदास बाउल। इसके साथ ही माटी की महक का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: नमस्कार, सुप्रभात। आज की विविधा में मैं हूं आपके साथ अंजू रानी। मौसम काफ़ी बदलते जा रहा है। कभी बहुत उमस भरी गर्मी हो रही है, फिर कभी बारिश हो रही है। तो आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। स्वस्थ है तो सब कुछ है ना। चलिए, आज विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिन वैश्विक स्तर पर लोगों को मरुस्थलीय और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इनसे निपटने के लिए उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन लोगों को भूमि के क्षरण, मरुस्थलीय और सूखे के खतरों से अवगत कराता है। या सरकारी, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस दिशा में नीतियां बनाने, सहयोग करने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि धीरे धीरे अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है और बंजर भूमि में बदल जाती है। इसके पीछे कई मानवीय और प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक चारागाही, वनों की कटाई, अनुचित सिंचाई, जलवायु परिवर्तन और भूमि का अत्यधिक दोहन। इससे कृषि उत्पादकता में गिरावट और खाद्य संकट बढ़ जाता है। जल स्रोतों का सूखना और पेयजल की कमी होगी। पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता में नुकसान होगा। ग्रामीण आबादी का प्रवासन, यानी कि लोग ग्रामीणों में रहना छोड़ देंगे, प्रवासी यानी कि शहरों की ओर चले जाएंगे, जिससे शहरी दबाव बढ़ेगा। सामाजिक और आर्थिक असमानता और संघर्ष बढ़ेगा। इसके लिए वृक्षारोपण, वनों की कटाई रोकना और हरित क्षेत्र बढ़ाना सबसे अच्छा उपाय और समाधान है। सेवनीय कृषि प्रथाओं को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों की संतुलित उपयोग करना चाहिए। जल संरक्षण तकनीकों जैसे वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करना होगा। स्थानीय समुदायों की भागीदारी से भूमि सुधार योजनाओं को लागू करना होगा। नीतिगत सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना अति आवश्यक हो गया है। इसी तरह अगर हम सभी कोई इस दिशा पर कार्य करें और ध्यान दें तो रोकथाम को, इस सूखे की रोकथाम को हम रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इस संकट से हम निकल सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: सनी राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले रोगे नेहर मेना ବୋଲେ ନୂଆ ନୁକାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଲେ ସବ ଓଡ଼ା ବାପସ ରୁଡ଼ କିନା ଧାରାରେ ନାକାଗି ଆମ ବୋଲେ ରୁଡ଼ ତ ବନୁମେ ହେଲେ ପରିବାର ସେ ମତଲବ ପୁରା ଇଏ ହେଲା
4: ବର୍ଣ୍ଣା ମଙ୍ଗଲର ଏକ ଗାଁ ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଥାନା ଜଙ୍ଗଲ ଯା ହେତେ ଆଉ କା କାହା ମାନେ ଆହେ ବୋଲେ ଆଉ କା ଜିନ୍ଦା ହେନ ମାନେ ଜିନ୍ଦା ହେ କୋଇ କନ ଆମର ଶୁଣି ପାରିଲି ଭାଇ ଚାଲତେ ଏକଦମ ଆମରେ ପୁରା ଏକଦମ ଏଖନ ତ ତମେ ଠିକ ହୋଇ ହେଇ ନାଇଁ ତ ପୁରା ଏକଦମ ପରିବ
5: ନାମ ହେ ରଣବାଲା ଦେବୁ ଗାଁ ବାର ହେତ ଘର ଆଇନି ଆମର ଘରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କେ ବାତ ହେ ତ ଏଖନ ବାତ ହେ ଯା ହେ
6: ମୁତମ ବରେନ ସିଂ ତାମସାଏ ଅନିତା ତାମସାଏ ଭୁରୁପା ଆସିନା କନା ଏସବୁ ଦୁଃଖରେ ମିନା ଆଜ୍ଞା ବାପା ମେରୁ ତାପା ମେରୁ ଓଆ ବିଟା ମିଟା
7: ଆଜ୍ଞା ମୁତମ ବୁମ୍ବାଇ କୋଡ଼ା ପାଟ ମୁତମ ବୁମ୍ବାଇ କୋଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ହୁଣ ଦେ କଦମରି କୋଡ଼ା ପୁର ପାଟ ପାଟ ମୁତମ କେତେ ମାଇ କୋଡ଼ା ମୁନିନି ବୁଡ଼ିନି ବାଗିଆ ତୋଟକେ ମୁନି ଆସି ଆସି କଲେ ପୋଲିସ କଲେ ଏମି ଲଢ଼ାଇ ଚଲାଓ ତମେ ବୁରୁରେ ଗୋଇ ଆଣ୍ଡ ଯାଇ ତାରେ କାକା ବିହ ଉଲିବୁ କକୋ କାକୋ ମେଲ ମିଆ
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: खास मेहमान को, क्योंकि हमारा हर दिन खास होता है, तो आज हमने अपने कार्यक्रम में एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है। आइए सबसे पहले जानें उन्हीं से उनका परिचय।
1: या जोहार अंजू, मैं फादर रंजीत किंड हूँ और ATRTC जो पड़ियारपी बड़ा गुरा में स्थित है
0: जी,
1: वहाँ का निदेशक हूँ और पिछले 14 साल से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में आपका। आपने TRTC की बात की सर, तो सबसे पहले मैं, मेरा सवाल रहेगा कि आपने अपना परिचय तो दिया, TRTC का भी परिचय थोड़ा सा दीजिए विस्तार रूप से।
1: हाँ, TRTC जमशेदपुर जेसुइट सोसाइटी की एक संस्था है जो विशेष करके सामाजिक कार्य करता है, और सामाजिक कार्य के लिए ही ये संस्था समर्पित है
0: जी,
1: और इस संस्था की शुरुआत 1981 में फादर मैथ्यू अरी परमपिल, जो स्वर्गीय हैं अभी हमारे
0: जी,
1: तो उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की।
0: अच्छा।
1: 1981 में, और ये उस समय सेंट जेवियर्स हाई स्कूल लुपुंगुटू में इसकी शुरुआत की गई थी।
0: अच्छा।
1: और वहीं से इस संस्था से संबंधित कार्य जैसे नाइट स्कूल जो
0: जी,
1: था
0: जी।
1: वो उसी से वहीं से संचालित हो रहा था, लेकिन इस संस्था को जब यहाँ पर अभी वर्तमान स्थान में TRTC जो अभी बना है यहाँ पर जो स्थान में 2005 में
0: अच्छा।
1: बिल्डिंग बनने के बाद में इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया
0: जी।
1: पूरे पश्चिम सिंहभूम में कहें
0: विशेष
1: कहेंगे 6 प्रखंडों में हम लोग काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: या तो एक्सटेंशन की बात है उसमें कोल्हान कम्युनिटी कॉलेज एक इसका जो विंग बना वो 2008 में उसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ और वो विशेष रूप से कौशल विकास
0: अच्छा।
1: के लिए ही है
0: जी।
1: जिसके द्वारा तहत हम लोग जो रोजगार स्वरोजगार का जो ट्रेडिंग करते हैं
0: जी जी जी,
1: अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी लेते आए हैं
0: जी,
1: और प्रोजेक्ट्स के साथ में एक कौशल विकास का काम भी हम लोग करते आए हैं और तब से लेकर आज तक युवाओं को विशेष करके रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का काम उसमें चला है
0: जी।
1: लेकिन उसके साथ ही साथ जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार वाली बात है, तो ऐसे जगहों में उनकी आवाज को बुलंदी देना वो भी काम हम लोगों का युवाओं के साथ रहा है।
0: ये भी उद्देश्य है।
1: उद्देश्य है, उद्देश्य है,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन पूरे संस्था का उद्देश्य अगर मोटा मोटी कहें तो इसका जो है हमारे चूंकि पश्चिम सिंहभूम में है तो यहाँ हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर संस्था अपने विजन मिशन में यहाँ के स्थानीय लोगों के विरासत की चीजों को बढ़ाने के लिए संस्था खड़ा हुई है ना। उसमें वो रिसर्च के द्वारा, शोध के द्वारा कैसे हम लोग कुछ चीजों भी लुप्त हो रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कौशल विकास का काम भी वो 2006 से शुरू हुआ था। ICDRCE चेन्नई जो कम्युनिटी कॉलेज का एक वहाँ पर संस्था है
0: जी,
1: जो पूरे भारत में कम्युनिटी कॉलेज नाम को बढ़ावा दे रहा है, तो उनसे हम जुड़े हैं, अभी तक तो उससे जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा।
1: लेकिन बीच में जब कम्युनिटी कॉलेज का कार्यक्रम हमने लिया था तो इसको हमने इग्नू से भी जोड़ा था। जो आने वाले समय के लिए हम जो सोच रहे हैं ना उसमें से एक बहुत बृहद एक प्रोग्राम आने वाला है इलेक्ट्रिकल को लेकर के।
0: अच्छा।
1: हाँ, इलेक्ट्रिकल को लेकर के मैं अभी विशेष रूप से दो बातें और बात बताऊंगा आपको, कौशल विकास की बात है ना
0: जी।
1: तो इलेक्ट्रिकल भी मेरा बहुत पहले से ख्वाहिश थी, बीच बीच में हमने इसका प्रशिक्षण भी करवाया था, डॉन बॉस्को से भी हमने था।
0: अच्छा।
1: तो अभी डॉन बॉस्को से बहुत बढ़िया लाभ मुझको मिला है यहाँ पर, लेकिन मैं उतना ही सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। मैं गाँव गाँव में कम से कम दो दो जवानों को बिजली पर विशेष ट्रेनिंग दे करके, हाँ, जो मन मुंडा उनके द्वारा ग्रामीण को दिया जाएगा उनको विशेष ट्रेनिंग देगा, तो दोनों बिजली और सोलर लाइट का ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने 9 जन को ट्रेनिंग भी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा था कलकत्ता, हमारे फादर लोग यहाँ पर करवाते हैं, तो वहाँ पर जाके देखे हम लोग, वहाँ पर माताओं को सिखाया जा रहा है बिजली का असेंबलिंग का, है ना, और उनका संगठन बना दिए हैं और वही लोग उनको सामान उपलब्ध कर दिया है, सबको असेंबलिंग वही करती है पूरा, तो ऐसा इधर भी सीखेंगी। तो वही सोच के मैंने 3 बहनों को और 5 भाइयों को मैंने भेजा था, है ना।
0: अच्छा।
1: 6 भाइयों को।
0: अच्छा।
1: तो लोग सीख के आए, अभी जितना TRTC में लाइट बल्ब सब है ना, सारा का मरम्मती वे लोग कर लेते हैं।
0: अरे हाँ, क्या बात।
1: तो अगर ऐसे ही गांव लेवल में अगर कर लेंगे तो ही, मेरा इच्छा है कि ये करेंगे। और जैसे मैं तो खुद मानता हूँ, हमने किया भी है अभी कुछ कुछ गांव, जैसे अभी नकाहसा गांव है, गुंडीपुसी गांव है, अभी गुड़गांव में मशीन उतारा है हमने, जहाँ पर कुसुम योजना जो है ना, जिसपे सोलर लाइट के द्वारा जहाँ पर पानी की व्यवस्था करवा करके उसको पटाने का, सब्जी उगाने का ना। तो जब अभी नकाहसा में एक फसल नहीं, दो फसल खदान का पानी निकाल के पूरा दो फसल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसलिए बिजली के चलते तो संभव हो रहा है।
0: हाँ,
1: इसलिए बिजली सोलर लाइट दोनों का
0: हो गया
1: है ना, तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैं
0: उन्हें पानी की कमी महसूस होगी ही नहीं तो वो खेती अच्छे से करना, बागवानी करेंगे ना,
1: तो लोगों का पूरा सिर्फ खान पान में बहुत परिवर्तन हो जाएगा, है ना, एकदम पूरा। इसमें टीआरटीसी एक कैंपस है जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, जो हम बोल रहे हैं वही चीज करवा भी रहे हैं। पिछले जब से मैं यहाँ पर निदेशक बना हूँ 15 से, यहाँ पर हर साल मेरा यहाँ गौशाला से 5 ट्रैक्टर गोबर घुसता है, बाकी अपने पितने पत्तियाँ गिरती हैं पेड़ से, सब कंपोस्टिंग होता है।
0: जी, जी,
1: और यहाँ पर हम लोग शुरू में बोलते थे कि फादर आप तो फर्टिलाइजर या चलाने रासायनिक खाद घुसाने दे रहे हैं, नहीं होगा। लेकिन एक साल के बाद में अभी देखिए वहीं पर सोना उगल रहा है ना। और साल भर मेरा यहाँ तक कि सिर्फ प्रोग्राम, बाहरी प्रोग्राम जो बुकिंग लेते हैं तभी बड़ी संख्या में, तो हम लोग बाहर से सब्जी सब करते हैं, या तो सब यहीं से हम लोग अपना है, एकदम पूरा है ना,
0: अपने पास है।
1: हाँ हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: और इसी कौशल विकास में और एक बहुत बड़ा होगा मंजू, वो तो यूथ लोग के लिए ही है। अभी जो कंप्यूटर लाए हैं वो विशेष एक चीज के लाया गया है कि इसको थोड़ा हाई ग्रेड का ट्रेनिंग देंगे हम लोग, तो उसमें है ना कि हम लोग अभी इस पे लगे हुए हैं, इटिकी ट्राइबल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और कोल्हान यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो हमारे खदान चलाने वाले जो साथी लोग हैं ना, उद्योगपति लोग हैं, उनसे सहयोग लेकर के हम लोग, ये सिर्फ पश्चिम सिंहभूम के जवानों को कॉल नहीं, लेकिन पूरे झारखंड के जवानों के लिए भी ये प्रोग्राम खुला रहेगा, जिसके तहत हम लोग 6-6 महीने का साल में ट्रेनिंग करवाएंगे, जिसमें 100 जवानों को हम लोग रोजगार में, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप प्रोग्राम बोलते हैं ना, स्टार्टअप हुआ वैसा, तो उन 100 जवानों को हर साल हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, जो बिजनेस के
0: लिए तैयार हो,
1: बिजनेस के लिए, जैसे भी हो रहे हैं, जैसे भी जितने जवान लोग हमारे हैं ना, ये सब बिजनेस में भी मोटा मोटी लग गए हैं, चाहे मछली का हो, चाहे मुर्गी का हो, चाहे बकरी का हो, ये सब उस मोड में गए हैं, कुछ कुछ दुकान चला रहे हैं, कुछ लोग बागवानी में लगे हुए हैं, है ना, अपने ही युवा जुनून के साथी लोग। तो ऐसे ही जवानों को जो थोड़ा जिनमें थोड़ा जुनून है, कुछ करना चाहते हैं, अभी एक साथी मेरे जो है मैंगलोर में जिनका बिजनेस चलता है पोल्ट्री फार्म का, है ना, पिछले 17 साल से जुड़ा हूँ, कुछ जवानों को मैंने यहाँ से भेजा भी ट्रेनिंग के लिए।
0: अच्छा।
1: ये सिर्फ पोल्ट्री फार्म का, लेकिन पोल्ट्री फार्म में A to Z उनका चलता है।
0: अच्छा।
1: और 100 करोड़ टर्नओवर एनुअल, है ना
0: जी।
1: अभी उसी प्रकार सुअर पालन में NK फार्म्स बोल के हमारे एक साथी हैं बड़का गांव में, नकुल महतो बोल के, उनसे भी हम जुड़े हैं पिछले 6-7 साल से जुड़े हैं, और उनका सुअर का जब शुरुआत देखे ना, तो मुश्किल से 2 छोटी-छोटी गाड़ियां थी, टेम्पो था, और एक सेकेंड हैंड उनका स्कॉर्पियो था, लेकिन आज की तारीख में उनके पास 7 गाड़ी है और 3-4 परिवार रखा है, और 400 सुअर का मालिक है, छोटा ही बिक्री करता है पूरा। तो जो भी बोले ना, तो ये सब नमूना हमारे पास
0: एक है, एकदम है, तो नमूना है,
1: इसलिए ये सब रोजगार, अपना स्वरोजगार में घुसेंगे तो बहुत पैसा है, है ना।
0: जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बिजनेस माइंडेड होते हैं सर, है ना, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है रास्ता। सबसे बड़ी बात है सीखना, उस दिशा में चलना। आपने थोड़ा सा दुकान लगाया और क्योंकि उसे जीवन चलने वाला नहीं है सर, लेकिन यहाँ से अगर आप सीख करके सही तरीके से कर रहे हैं, अभी आपने उदाहरण दिया सर मुर्गी पालन के लिए, अभी आपने उदाहरण दिया सर सुअर पालन करके किस तरह से कर रहे हैं, तो वो उनको वहां से रास्ता मिला,
1: रास्ता
0: मिला, तो वो सही दिशा में जा रहे हैं, तब ना वो सर आज वो आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: इसके अतिरिक्त और भी ऐसा है, जैसे जो हम लोग जो करते हैं ना, सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग करवाते हैं, उसको ध्यान में रख करके सरकार की ओर से बहुत स्कीम है
0: जी।
1: 40 45 स्कीम होंगे जो डायरेक्टली हमारे ग्रामीणों के लिए है ना, तो इसको लेकर के हमारे ये जो ये तो कौशल विकास की बात है, लेकिन प्रोजेक्ट्स के द्वारा भी हम लोग लोगों को बहुत लोग मदद कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में अभी एक जो प्रोग्राम है जो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितकरण प्रोग्राम है जो तांतनगर ब्लॉक में उधर 4 पंचायतों को लेकर चल रहे हैं, 2-3 संगठन से मिल करके, और चीखी क्षेत्र में भी है वहाँ पर कुलितुंडंग और बाईपी पंचायत के गांवों में हम लोग कर रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दे करके प्रशिक्षण दे करके हम लोग मुंडाओं को गांव के कुछ जो कम सामुदायिक नेता लोगों को खड़ा किया है और वो एक प्रकार से लोगों के बीच माध्यम बनते हैं है ना। तो जितने भी सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करवाने का काम है ना, उस तक पहुँच करवाने का काम वो लोग करते हैं और ये भी काफी अभी तीसरा चौथा फेज चल रहा है। अपने अधिकारों को जाने और उसके लिए कागज पत्र लिखा टोपी करना जो है ना वो सब कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा है ना।
0: और
1: तो
0: आपके माध्यम से सर वहाँ तक पहुँच रहा है लोग उनको उसका लाभ मिल रहा है। यही बहुत बड़ी बात है।
1: इसी तर्ज पर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का कार्यक्रम भी अभी उधर चल रहा है रामनगर में ही, वो भी अभी 1 साल का भी हुआ है उनका, उसमें भी यही चीज करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ही भी और दो विशेष काम हमारा चल रहा है, वो है प्रवासी मेन माइग्रेंट असिस्टेंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और इसमें हम लोग ऐसे जवानों को हम लोग मदद कर रहे हैं जो यहाँ जाते हैं और किसी तरह से संकट में फंस जाते हैं, जैसे संकट में हो गया कि किसी को मृत्यु हो गई, किसी का पेमेंट नहीं मिल रहा है, हाथ पैर कुछ कट गया मशीन में काम करते समय में, तो उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग मदद करते हैं। ये तो पूरा ओल्ड इंडिया में 100 संगठन से मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ लार आ रहा है, क्योंकि वो जो है ना वो लार जो उत्पन्न करता है ना पेट में, तो वो एकदम दवाई का काम करता है। एक दो बार दो हम लोग ट्रायल किए शुगर फ्री राइस, एक राजू बड़ाइक थे हमारे बिसरा के, उनके द्वारा मिलकर हमने चावल उत्पादन करवाया था, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ गया, जिसमें चीनी की मात्रा बहुत कम थी, नहीं के बराबर, तो इसलिए उसको शुगर फ्री राइस है ना प्रेरित किया। हमारे लोग समझ नहीं पाए हैं और इस बात को मैं यहाँ बोलता भी रहता हूँ मैं, आज हम लोग पश्चिम में सुबह में केवल नहीं लेकिन अन्य जगहों में भी, चाहे वो जो खड़िया मुंडा संथाल लोग भी है ना, चाहे उरांव लोग हैं, अपनी संस्कृति दोस्तों वाली बात को जो दिखती है वहीं तक सीमित करके रखे हैं है ना। जब संस्कृति या दस्तूर की जो बात करते हैं, जो विरासत की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात है जो मूल्य को लेकर के है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वैल्यू बोलते हैं है ना। और आज तक हम लोग एक समाज के रूप में, चाहे वो समाज हो, चाहे उरांव समाज हो, चाहे संथाल समुदाय हो है ना, ऐसे अभी तक हम लोग हैं, अपनी पहचान है, अपनी अस्मिता है, आदिवासी लोग, झारखंडी लोग ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, और मेहनत को बरकरार रखें जो कि हमारी पहचान की रीढ़ है,
0: वही हमारी है ना
1: पहचान है ना। और देखिए ना, आज भी कहीं हमारे पूछ होती है, अभी अभी गुजरात जा रहे हैं लोग, साउथ में जा रहे हैं लोग, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या के लिए, इसी ईमानदारी और मेहनत में तो जाते। मेरे हमारे कुल्हान पुड़ाहाट के साथियों के लिए संदेश, चलिए हम लोग ईमानदार बने और मेहनती बने, और जब हम लोग ये चुनाव करते हैं कि बाहर जाके दूसरों के लिए काम करते हैं थोड़े पैसे के, अधिक पैसे के लिए, उसको हम लोग अपने ही जगह में अपने संसाधन को समेटने में, उसको उसके उपयोग करने में लगाएं इस ईमानदारी मेहनत को, तो हमें कोई भी विकास या उन्नति करने से रोक नहीं सकता है।
0: काफी व्यस्तता के बाद भी आपने काफी समय दिया हमारे कार्यक्रम को।
1: टीआरटीसी सभी के लिए खुला हुआ है, यहाँ ना कोई जात धर्म वाली बात होती नहीं है, सबके लिए खुला है, यहाँ पर हम लोग एक साधन मात्र हैं और साधन बनकर के हम लोग लोगों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए।

इसी के साथ आज का हमारा विविधा का ये सफर नहीं समाप्त होता, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू रानी को दीजिए विदा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चेबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है दिल।

0: दी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: राजा हिंदुस्तानी आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत आवाजें हैं अलका याग्निक उदित नारायण और सपना अवस्थी

अभी आप सुन रहे थे सड़क फिल्म का ये गीत। आवाजें थी कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की। रसंजन कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राजा फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 10 बज रहे हैं, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: लानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि

0: देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने, जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है, जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। यह झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
4: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट!
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
4: अरेस्ट करो!
9: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
10: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, कोई लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: 빨대 코 티코나 망자 하이 두란트 아스파탈 페조.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है, और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
8: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
9: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
8: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
9: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
8: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
9: अच्छा माँ।
4: माँ।
9: लो देवेंद्र भी आ गया।
4: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
8: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
9: ठीक है माँ।
4: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
9: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
4: ये देखो दीदी, ये मारा।
9: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
4: अरे ये मारा।
9: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
4: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
9: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
4: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
8: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
9: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
10: हमें अंदर आने दो।
9: अरे क्यों?
11: ए लड़की रास्ते से हट जा।
9: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
10: लड़की हट।
9: माँ
10: ये चाकू देख रही है ना?
11: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
9: अरे
11: मैं बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
9: माँ
11: हट रास्ते से।
9: माँ
8: क्या हुआ?
9: देखो
8: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
10: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
9: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
10: ये चाकू देख रही है ना?
9: छोड़ दो।
8: मुझे मत मारो,
9: कुछ मत करो।
8: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
10: जल्दी
8: याद नहीं कहाँ रखी है। छोड़ दो,
11: बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
8: अरे मेरे पास तो छोड़ो,
9: मेरी माँ को छोड़ो।
10: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज
8: नहीं।
11: सुनो इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
8: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
9: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
9: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: अच्छा,
9: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
9: हेलो।
10: हाँ बेटा बोलो।
9: पापा।
10: हाँ।
9: पापा।
10: हाँ, बोलो बेटा।
9: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुस आए हैं।
10: कौन घुसा है?
9: माँ को बहुत मार रहे हैं।
10: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
9: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
9: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ बचाओ।
12: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
13: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
14: वाह वाह वाह,
13: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
8: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
13: देखो ना सबकी जान बचाई
8: मेरी बच्ची।
12: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
14: उमंग उमंग उमंग उमंग।
15: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 14-day lube break. That's a world record. Welcome back.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम, और आज के इस कार्यक्रम में भेंट करता थे कमलेश कुमार मिश्रा, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अगला कार्यक्रम जोहार रांची थोड़ी ही देर में, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: जोहार आरती सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि और
1: आरती का
0: जोहार
1: नमस्कार।
0: तो हाजिर हैं हम जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची के एक नए अंक को लेकर। जैसा कि आपको पता ही है, हम कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं। तो आज का सुविचार है
1: मुस्कान और दुआ दोनों मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन इनका असर अनमोल होता है। और इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए दुआएं करते रहिए।
0: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा सुविचार। अब जरा संगीत के रंग में डूबते हैं। प्रस्तुत है एक मधुर गीत। गीत के बाद हम लौटेंगे और बातें करेंगे अपने शहर के मौसम की।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक बार फिर आपका स्वागत है जोहार रांची में। अब समय है जानने का मौसम का हाल, ताकि हम अपने दिन की बेहतर योजना बना सकें। आइए जानते हैं आज रांची और आसपास के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहने वाला है। तो आरती, जब मैं आ रही थी स्टूडियो तो
2: बहुत तेज धूप हो गई
1: मिली, बहुत ही तेज खिली हुई धूप है। जैसे कल का मौसम था, बिल्कुल आज भी मौसम ऐसा ही अभी देखने को मिला है। अब आगे दोपहर या शाम में क्या करवट लेता है मौसम, वो तो हमें भी नहीं पता।
2: नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक देखिए छवि, अभी ये कहा गया है कि मौसम तेजी से करवट लेगा, हालांकि धूप तो रहेगी। अभी देखिए बारिश हो रही है, उसके बाद भी उमस से तो राहत नहीं मिल रही है। उमस तो है, लेकिन आज ये अगर टेम्परेचर की बात कर ले तापमान की, तो अधिकतम तापमान आज 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और साथ ही ये भी कहा, देखिए पहले दो दिन पहले कितनी अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन कल फिर से ऐसी ही धूप हो रही है। तो मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून यानी आज रांची समेत खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, रामगढ़ और बोकारो में दोपहर बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी, वज्रपात और कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। और इसी को देखते हुए इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तापमान घटने वाला नहीं बल्कि बढ़ने वाला है। अच्छा। और अगले दिन यानी दूसरे दिन भी कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है। यानी अभी फिलहाल तो राहत मिलने वाली नहीं है गर्मी से।
1: बिल्कुल, ऐसा ही मौसम लगता है कुछ दिनों तक
2: चलेगा। हाँ,
1: है ना। तो मौसम का तो कुछ किसी का कोई अनुमान नहीं, मतलब एक निश्चित तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसा भी मौसम हो, अच्छी हो, पानी हो, जो भी हो, हम झेल लेंगे। ये करना ही है। तो क्यों ना एक गाना सुनाते अपने दर्शकों को।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महा उत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
2: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
1: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखे झारखण्ड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जोहार रांची में। मैं हूँ छवि और
5: मैं हूँ आरती।
4: तो अब समय है इतिहास के उन पन्नों को पलटने का जिनमें हमारे अतीत की प्रेरणादायक घटनाएं दर्ज है। तो 17 जून 1858 को ग्वालियर के समीप कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध अंतिम युद्ध लड़ा। घोड़े पर सवार होकर उन्होंने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वे केवल एक रानी नहीं बल्कि साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की जीवंत प्रतिमा थी।
5: और देखिए, आज के दिन 1885 में फ्रांस द्वारा अमेरिका को मित्रता के प्रतीक के तौर पर भेंट की गई स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क पहुंची। ये विशाल प्रतिमा आज स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों का वैश्विक प्रतीक मानी जाती है। दुनिया भर से आने वाले लाखों लोग इसे देखने पहुंचते हैं।
4: और साथ ही मैं ये बता दूं कि अमेरिका में आयोजित फीफा विश्व कप 1984

0: में
1: 1994 में, आज ही
0: हाँ,
1: हाँ
0: फुटबॉल को नई वैश्विक लोकप्रियता दिलाई। यह टूर्नामेंट दर्शकों की संख्या और आयोजन की भव्यता के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है।
1: और देखिए आज का दिन 2013 हम कैसे भूल सकते हैं छवि।
0: बिल्कुल
1: केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी, और ये देश की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। इस घटना ने पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के महत्व को भी उजागर किया।
0: बिल्कुल। और तो श्रोताओं, इतिहास के रोचक सफर के बाद अब समय है कार्यक्रम के अगले पड़ाव का। कहा जाता है कि कुछ लोग केवल जन्म नहीं लेते, वे अपने साथ एक युग की शुरुआत लेकर आते हैं। आज के दिन भी कई ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया जिनके विचार, संघर्ष और उपलब्धियां आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। तो इंग्लैंड के प्रभावशाली राजाओं में से एक एडवर्ड प्रथम ने प्रशासनिक सुधारों और सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने देश को मजबूत बनाया। उन्हें मध्यकालीन यूरोप के महत्वपूर्ण शासकों में गिना जाता है।
1: और देखिए आज ही के दिन रूस के महान संगीतकार इगोर स्ट्रोविंस्की ने आधुनिक संगीत को नई दिशा दी थी। उनकी रचनाएं आज भी संगीत विद्यालयों और मंचों पर स्टडी यानी अध्ययन के लिए प्रस्तुति का विषय हैं।
0: और साथ ही हम आपको बता दें, अमेरिकी रैपर और गीतकार कैंड्रिक लैमर अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित गीतों के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें आधुनिक संगीत जगत की प्रभावशाली आवाजों में गिना जाता है।
1: और अब समय है इतिहास और समाज को अपने योगदान से समृद्ध बनाने वाली उन महान विभूतियों को नमन करने का जिन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया।
0: बिल्कुल। तो मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज, महल का निधन 17 जून 1631 को हुआ। उनकी स्मृति में निर्मित ताजमहल आज विश्व धरोहर और प्रेम का अमर प्रतीक है।
1: बिल्कुल। और देखिए अब आज ही के दिन विज्ञान दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान थॉमस कुहन ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के माध्यम से विज्ञान की सोच को नया दृष्टिकोण दिया था।
0: तो आइए सुनते हैं एक गीत।

0: कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी पूंजी न धन है न वैभव बल्कि अच्छा स्वास्थ्य है, क्यों छवि?
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरती। और देखिए, यदि शरीर स्वस्थ है तो चुनौतियां अवसर बन जाती हैं, और यदि स्वास्थ्य साथ ना हो तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल छवि, सही कहा आपने। अपने शरीर का ध्यान रखना खुद के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, सबसे बड़ा निवेश भी
1: सही
0: है।
1: सही बात है। और देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म भी लेते हैं, और स्वस्थ विचार ही सफल जीवन की नींव भी रखते हैं, क्यों?
0: बिल्कुल, और इसलिए तो याद रखिए, जीवन की दौड़ में सबसे आगे वही रहता है जो अपने स्वास्थ्य को सबसे अधिक महत्व देता है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही तो स्वस्थ मन का निवास होता है।
1: और देखिए, कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, यह केवल कहावत नहीं बल्कि एक सफल और सुखी जीवन का बिल्कुल सही मूल मंत्र है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी बड़े से बड़े काम और छोटे से छोटे काम को भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहेगा तो छोटी काम भी बहुत बड़ी लगने लगती है कि कैसे करूं इस काम को, कैसे हो पाएगा।
0: बिल्कुल
1: क्या?
0: हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि देखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपको लगेगा कि अगर कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में है तो अगर आप स्वस्थ हैं तो कोई भी समस्या आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं हैं तो सारी समस्याएं तो आपके साथ ही हैं।
1: बिल्कुल, हमारे साथ ही रहती है, और हम ही को सारी समस्याओं से ये भी निपटना भी रहता है, तो क्यों ना हम अपने शरीर पर थोड़ा सा वक्त निकालें
0: बिल्कुल
1: और
0: हाँ,
1: ध्यान देने की जरूरत है। तो श्रोताओं, आप भी अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान दीजिए, काम तो होते रहेंगे लेकिन कुछ समय अपने अपने हेल्थ और खुद के लिए भी निकालना बहुत जरूरी है।

आप सुन रहे हैं जुहार रांची। अब वक्त है पर्यटन जगत की सैर का, जहां हर स्थान अपने भीतर इतिहास, संस्कृति और प्रकृति की अनेक कहानियां समेटे हुए हैं। तो आज हम हमारे श्रोताओं को अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा की सैर करवाएंगे। सचमुच उड़ीसा एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थान है, तो आइए हम अपने श्रोताओं को इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें। तो श्रोताओं, उड़ीसा भारत का एक खूबसूरत राज्य है, जो अपने आकर्षक समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके अलावा उड़ीसा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा राज्य के नृत्य की जितनी तारीफ की जाए कम है। उड़ीसा की कला, संस्कृति, त्योहार और संगीत इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। उड़ीसा घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दिल खोलकर आनंद लेते हैं। उड़ीसा की संभल और इक्कत साड़ियाँ भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये साड़ियाँ हाथों की कारीगरी यानी हैंडलूम से बनाई जाती हैं। उड़ीसा राज्य में तालसरी नदी के पास सबसे अधिक रेड क्राफ्ट पाए जाते हैं, जो कि एक दुर्लभ प्रजाति के होते हैं। यहाँ की मयूरभंज चाइल्ड लेबर से पूरी तरह मुक्त है। यहाँ बच्चों से कोई भी काम नहीं कराया जाता है। उड़ीसा में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति पामपोश में स्थित है और ये स्थान हनुमान वाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति में 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी समुदाय के लोगों की अपनी एक अलग ही संस्कृति है। उड़ीसा में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा उड़िया है, लेकिन इसके अलावा संभलपुरी भी एक प्रमुख भाषा है।

कहते हैं खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और टीम भावना का प्रतीक है। तो हम आपको बता दें, टीम इंडिया पहले वनडे में शानदार जीत के बाद बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में जीत के साथ ही तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी। इसमें दर्शकों की निगाहें हिटमैन रोहित शर्मा पर होंगी। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर इस सीरीज में रोहित का प्रदर्शन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने मंगलवार को जमकर पसीना बहाया। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम का संतुलन बेहतरीन है। साथ ही भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और लाल रेशमसियामी के गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 2-1 से हराकर नेशंस कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत के लगातार दूसरी जीत से 6 अंक हो गए हैं। मंगलवार को भारत के लिए सलीमा टेटे ने 33वें मिनट में गोल दागा। फिर जापान ने 2 मिनट बाद ही ए हिर मित्युस के गोल से स्कोर बराबर कर दिया। यह मैच मिडफील्ड ज्योति के लिए भी एक यादगार उत्सव था, जिन्होंने सीनियर स्तर पर 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। राजधानी रांची में दो बड़ी खेल प्रतियोगिता का आगाज बुधवार को हुआ। खेल गांव के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोनों आयोजन होंगे। नवनिर्मित स्केटिंग रिंक में 12वें नेशनल रैंकिंग स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू होगी, जिसमें 21 राज्यों से 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रतिभागी खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। वहीं द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हरिवंश टाटा भगत इंडोर स्टेडियम में होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 5 देश भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के 135 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और रांची पहुंच चुके हैं। साथ ही हम आपको बता दें, भारत की दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा लगातार 7 एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय एथलीट बनने जा रही हैं। 39 वर्षीय जोशना आईची नागोया सितंबर 2026 में होने वाली एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका एशियाई खेलों का सफर बुसान 2002 में शुरू हुआ था और अब तक वह 5 पदक जीत चुकी हैं, जिनमें 2 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। जोशना ने कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह की भी बहुत तारीफ की।

श्रोताओं, हमने आपसे बहुत सारी बातें आपके साथ साझा की, तो बातों का यह सिलसिला यहीं थमता है, लेकिन मुलाकातों का सफर जारी रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए विषयों के साथ। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीवन को सकारात्मकता के रंगों से सजाते रहिए। इसी संदेश के साथ हमें इस कार्यक्रम से दे विदा। जोहार, नमस्कार, और आप इस गाने का आनंद लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुहार रांची। मीडियम पे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम का पहला नगमा हम लेकर आए हैं फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम से, जिसके बोल लिखे हैं समीर अंजान ने, संगीत दिया है निखिल विनय ने, आवाजें हैं उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की, और सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हैं बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, रोशनी केसरी, कोटशिला बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: necessità.
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है बागी फिल्म से। समीर के लिखे हुए बोलों को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने। आवाजें हैं अमित कुमार व अनुराधा पौडवाल की। फरमाइश करता है हमारे प्यारे प्यारे श्रोता, आप हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब जुमराव से वली उल्ला अंसारी और असमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मिक्का बिरक।

अगले गाने की फरमाइश आई है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से, विश्वनाथ साहू लेवई से, गुलाब दास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा, आप हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित, इन्होंने सुनना चाहा है। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में परदेसिया फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा प्रोग्राम गृह लक्ष्मी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा प्रोग्राम गृह लक्ष्मी। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: अरुण की स्वर्णिम आभा आपके जीवन को चमकाए, तमस भरे राह में उजियारा फैलाए, ढेरों खुशियों की सौगात देती जाए। इसी शुभकामना के साथ स्वीकार कीजिए सखियों रेडियो सखी मधु का सप्रेम नमस्कार और स्वागत कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
1: अंधेरा न रहे मन का कोना, मिले इतना प्रकाश, खुशियों से इठलाए जीवन, मुट्ठी भर हो अपना आकाश। ऐसी मंगल कामना के साथ रेडियो सखी लता का भी स्नेह से नमस्कार स्वीकार कीजिए सखियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
0: लता कल्पना करो कि पक्षियों की चहचहाट ना हो, सूरज की रोशनी ना मिले, पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट ना हो, यानी हवा की मीठी मंद एहसास ना हो, तो कैसा रहेगा? क्या इन सब के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव होगा?
1: बिल्कुल सही कहा, प्रकृति द्वारा दिए गए इन उपहारों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। प्रकृति का इन सब के बिना कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।
0: लेकिन सखियों, धुआंधार कटते हुए पेड़ों की वजह से वन घटने लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में वातावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा कि सांस लेना भी मुश्किल कार्य हो जाएगा।
1: हाँ सखियों, कभी धरती माँ का सौंदर्य उसके घने वन से ही हुआ करते थे। पेड़ों की हरियाली न सिर्फ प्रकृति का श्रृंगार है बल्कि जीवन का भी आधार है।
0: आपको बता दे सखियों कि वन पृथ्वी के लगभग 31% भाग को कवर करते हैं, पर हम इंसानों की मानवीय लालच के कारण लगातार पेड़ों की कटाई होने से पृथ्वी की सतह का 75% से ज्यादा भाग परिवर्तित और क्षतिग्रस्त हो चुका है।
1: संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट बताती है कि विश्व भर में हर साल लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में वनों की कटाई की दर पिछले दशकों की तुलना में कमी भी दर्ज की गई है।
0: बिल्कुल, एक बात यहाँ बताते हैं लता कि पेड़ को बड़ा होने में दशकों लग जाते हैं, पर उसे जड़ से काट कर हटाने में हमें बस कुछ ही देर का समय लगता है। और हम सब विकास के नाम पर, कभी शहर के नाम पर, प्रतिदिन न जाने कितने पेड़ों को काट के गिरा देते हैं, है ना?
1: बिल्कुल मधु, बहुत ही चिंतनीय विषय है कि इस तरह से तो हमारे पेड़ आने वाले दशकों में तो बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं।
0: बिल्कुल,
1: और कंक्रीट के बनते जंगलों के बीच अब नदियों की कलकल की आवाज, तमाम प्रजाति की जैसे कि चिड़ियों की कोलाहल, हवा में ऑक्सीजन सब कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि धरती के नीचे से मिलने वाला जल भी अब अपनी शुद्धता

0: चुका है।
1: बिल्कुल, घटते वनों के कारण आज जलवायु परिवर्तन की मार भी पड़ने लगी है। असमय और आवश्यकता से कम या ज्यादा गर्मी, सर्दी, बरसात, ओले पड़ना, ये जलवायु में हो रहे परिवर्तन से ही तो हो रहा है ना लता?
0: सखियों, और तो और परिस्थितिक तंत्र भी इसके इससे अछूता नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: वह दिन दूर नहीं जब परिस्थितिक चक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और धरती पर प्राणियों का जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा।
1: आज हम ऐसे दौर में खड़े हैं सखियों, जहां प्रदूषण अब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और मानव सभ्यता के भविष्य के लिए संकट बनता जा रहा है।
0: हाँ, अभी यदि हम सचेत नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ देर जाने की बजाय उनसे उनका जीने का हक भी छीनने करके वाले हैं। है
1: बिल्कुल, इसीलिए सखियों अब समय आ चुका है कि जब हम खुद आगे बढ़ें अब और अपने पेड़ों को बचाएं, वनों को बचाएं।
0: हाँ, और अपनी माँ समान वसुधा को बचाएं। इसके लिए ना सिर्फ एक पेड़ लगाएं बल्कि संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, साथ ही पेड़ों की कटाई को भी यथासंभव रोके।
1: कबीरदास जी के शब्दों में सखियों की, वृक्ष कबहू नहीं फल भखय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार ने साधुन धरा शरीर। यानी वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और ना ही नदियां अपना जल पीती हैं।
0: हाँ, तो बहनों, अब समय की मांग है कि सखियों की हम ज्यादा से ज्यादा अब हम पेड़ लगा करके अपनी धारा को फिर से खूबसूरत बनाएं, उसे जो कंक्रीट की, जो ईंटों की जो हमने चादर बिछा रखी है उससे बचाएं और हरियाली से उसे सजाएं, मरुस्थल उसे होने न दें बल्कि मरुस्थलीय स्थानों को भी हरा भरा करने का प्रयास करें।
1: बिल्कुल, साथ ही पर्यावरण संरक्षित करने के अन्य उपायों को भी जरूर अपनाएं। तब देखिएगा सखियों, वह दिन भी एक दिन जल्दी ही आएगा जब शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण में जीवन खिलखिला सा नजर आएगा और हरी भरी वसुंधरा मुस्कुरा उठेगी अपने बच्चों को गोद में लिए हुए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहाँ मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखिए, सवाल पूछिए। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तो मैडम एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हमें लेकर के जाएंगी हम सब की रेडियो सखी मधु।
3: तो सखियों, अब रोज की तरह आइए चलते हैं, एक भेंटवार्ता सुनते हैं। आज की मेहमान है मनीला धवन और इनसे बातचीत की है लता रानी। आज का विषय भी आपको बता दें, आज का विषय है प्राकृतिक संतुलन, एक सामाजिक दायित्व। तो आइए सुना जाए ये भेंटवार्ता।
4: प्राकृतिक संतुलन पृथ्वी पर जीवन के सुचारू संचालन का आधार है। पेड़ पौधे, जल, वायु, वन जीव और मानव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इनमें संतुलन बना रहता है, तब पर्यावरण स्वस्थ और जीवन सुरक्षित रहता है। प्राकृतिक संतुलन एक सामाजिक दायित्व विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं, और इसके लिए आज हमारे बीच है हमारी खास मेहमान मनीला धवन, जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, विज्ञान की शिक्षिका है। मनीला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद लता जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया।
4: जी मैम, जैसा कि आज हम बहुत ही अच्छे विषय पर, प्राकृतिक संतुलन एक सामाजिक दायित्व पर बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक संतुलन क्या है, इसे कैसे समझा जा सकता है।
5: प्रकृति का निर्माण दो प्रकार के घटकों से होता है, जैव घटक जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव आते हैं, तथा अजैव घटक जिसमें जल, वायु और मिट्टी। प्रकृति में दोनों घटकों के मध्य सामंजस्य होना प्राकृतिक संतुलन कहलाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर करता है।
4: बहुत खूबसूरत उत्तर मैम। प्रकृति में संतुलन बनाए रखना क्यों आवश्यक है?
5: लता जी, प्रकृति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि इससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है, जीवन को सुचारू रूप से चलने और पृथ्वी पर प्रजातियों को स्थिर रखने में मदद करता है। यह स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और अनुकूल जलवायु प्रदान करता है। यह संतुलन अगर बिगड़ जाए तो प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे पर्यावरण में बढ़ जाएंगी।
4: ये तो बिल्कुल बहुत ही अधिक उत्तर है। मैम, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के प्रमुख कारण क्या है?
5: लता जी, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना का मुख्य कारण जो है वो है जनसंख्या में लगातार वृद्धि। जनसंख्या में लगातार वृद्धि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संतुलन का कारण है। जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण लगातार वनों की कटाई हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, तो ये सभी कारण हमारे प्राकृतिक संतुलन को बिगड़ने का कारण है।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
5: लता जी, बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक को असंतुलित करना नागरिक यानी मनुष्य ही जो है वो प्रकृति को असंतुलित किए हैं। तो प्रकृति को संतुलित करने का जो कार्यभार है वो नागरिक को ही करना है। तो नागरिक जो है वो अत्यधिक से अत्यधिक वृक्षारोपण करे, जल बिजली प्राकृतिक संसाधनों का संभल कर और बुद्धिमता पूर्वक उसका उपयोग करे, जल बिजली की बचत करे, प्लास्टिक का उपयोग कम करे, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करे, तब ही हम प्रकृति का संतुलन बनाए रख सकते हैं।
6: ये तो बहुत खूबसूरत उत्तर आपने दिया मैम, क्योंकि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में हम नागरिकों की अहम भूमिका है और हम सबको इसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके इसमें अपना योगदान देना चाहिए। मैम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक संतुलन एक सामाजिक दायित्व है, इस कथन को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, कृपया स्पष्ट करें।
5: प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना केवल सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि हर नागरिक पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पृथ्वी का निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संतुलन एक सामाजिक दायित्व है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है।
6: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने मैम, हम सबको मिलकर के इस कथन को जो है स्पष्ट करना होगा। मैम दैनिक जीवन में कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो प्राकृतिक संतुलन को बचाने में मदद कर सकता है?
5: दैनिक जीवन में अगर कुछ छोटी छोटी आदतें जैसे कपड़े के थैले का उपयोग करना, पानी और बिजली की खपत कम करना, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना और सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालना और किसी के जन्मदिन हो या किसी अवसर पर हम गिफ्ट की जगह उन्हें उपहार के रूप में पौधा दें और उन लोगों को पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण के लिए

0: प्रोत्साहित करें, और हम लोग जो पर्सनल व्हीकल है जो उसका उपयोग ना करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करें, तब हम प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में हम अपने अहम योगदान दे सकते हैं अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल कर।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने मैम कि हम जिस तरह से खुले तौर पर संसाधनों की इस तरह से खपत कर रहे हैं, और हम सबको छोटी छोटी पहल करके, जो आपने बड़े अच्छे सटीक उदाहरणार्थ दिए, आपने ये सुझाव दिए, तो हम आशा करते हैं कि आपके तमाम सुझाव हमारी बहनों कार्यक्रम के माध्यम से सुन रही है। मैम, आपने आज हमारे कार्यक्रम में बहुत ही अहम जानकारी हमारी बहनों को दी, और इतनी अच्छी बातें आपने बहनों से कही, हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारी बहनों से कुछ कहें, कुछ संदेश दें।
0: हाँ लता जी, मैं हमारी बहनों से कहना चाहूंगी कि वे पर्यावरण के महत्व को समझे, इसके संरक्षण के प्रति जागरूक रहे तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, और मैं कहना चाहूंगी कि आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ हरित अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक संतुलित पृथ्वी के निर्माण का संकल्प ले।
1: वाह, बहुत खूबसूरत संदेश मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपनी छोटी छोटी पहल से अपनी जो प्रकृति है उसको हरा भरा बनाएंगे। मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी बहनों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्राकृतिक संतुलन एक सामाजिक दायित्व, अभी आपने सुना सखियों इस विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थी मनीला धवन, और भेंटकर्ता थी रेडियो सखी लता रानी।
3: बिल्कुल सखियो, और अब वक्त हो चला है एक मीठे से गीत का, लेकिन उसके पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है, और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार, और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
7: भाइयों और बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
6: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सखियों, भारत सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर के सुधार और विकास के लिए अपनी अनेक योजनाएं समय समय पर संचालित करती है, और बात महिलाओं की जाए तो उनके स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई से लेकर मातृत्व तक के लिए भी कई योजनाएं चला रही हैं।
1: बिल्कुल बहनों, भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने और मातृ शिशु दर, जो मृत्यु दर है, उसे कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और इन्हीं योजनाओं के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच, पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक सहायता और सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिलती है।
0: इन योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नमोशी योजना इत्यादि है।
1: तो सखियों, आइए थोड़ा विस्तार से जान भी लेते हैं कि आखिर ये योजनाएं हैं क्या।
0: बिल्कुल, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार की वो पहल है जिसमें प्रत्येक माह की निश्चित 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क और उत्तम कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं प्रसव पूर्व प्रदान की जाती है। इसमें गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान जोखिमों की पहचान और
2: काउंटिंग स्टार्स बाय वन रिपब्लिक।
1: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, तो सखियों, ये एक वित्तीय सहायता योजना है जिसके तहत पहली जीवित संतान के जन्म पर माताओं को पोषण के लिए 5,000 रुपए की सीधी राशि प्राप्त होती है।
0: कुछ राज्यों में दूसरी संतान बालिका के होने पर भी 6,000 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है।
1: तो इन योजनाओं का लाभ लेना ना भूले बहनों।
0: बिल्कुल, अब देखो ना लता,
1: हाँ।
0: बात करते करते स्टूडियो की घड़ी अभी इशारा करने लगी है कार्यक्रम, हाँ। समाप्त करने के लिए।
1: बिल्कुल बहनों, तो चलते चलते आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी, और अब दीजिए अपनी सखी लता और
0: मधु को आज्ञा।
1: नमस्कार।
3: गृहलक्ष्मी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं याराना फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। गीत लिखे हैं अनजान ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म याराना।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है. आइए सुनते हैं अजनबी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत. स्वर है किशोर कुमार के, शब्द आनंद बख्शी के और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने.

जी पर। अरे ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म अजनबी से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर व मुकेश को फिल्म शोर से। शब्द रचना संतोष आनंद की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है शोर।

आइए सुनते हैं आँखियों के झरोखे से फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। गीत, संगीत और आवाज़ रविंद्र जैन की है।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म से ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन के हैं, आवाज़ है हेमलता की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि चीन और बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with the United States. Trump. Interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in 2025. During the talks, both sides are expected to deliberate on ways to further strengthen India-US bilateral cooperation across multiple sectors, along with discussions on regional and global issues of mutual interest. The Prime Minister will also attend a working session themed promoting balanced, inclusive, and sustainable economic growth for the benefit of all. The session will include G7 member countries, partner nations, as well as representatives from the International Monetary Fund, the Organization for Innovation and Trump. Mr. Modi will participate in a working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting will bring together G7 leaders, partner countries and chief executive officers of leading artificial intelligence companies to discuss the future of digital innovation and responsible AI development. On the sidelines of the summit, PM Modi is also scheduled to hold bilateral meetings with European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Friedrich Merz. Later, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers. Later, he will participate in the WeaverTech Summit. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. The Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defense capabilities across air, land, advanced indigenous technologies. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. Union Farmers Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level inter-ministerial meeting in New Delhi to review stubble management measures and discuss long-term solutions to crop residue burning. During the meeting held yesterday, Mr. Chauhan highlighted the role of active monitoring by the Stubble Protection Force across 70 tehsils in 14 districts of the National Capital Region. In Puducherry, 3 new ministers were inducted into the cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kolundhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सौंपेंगे प्रोत्साहन राशि। रांची और बोकारो के कर्मी भी होंगे लाभान्वित। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होगा मतदान। सत्ता पक्ष से बैजनाथ राम और प्रणव झा तथा निर्दलीय के रूप में परिमल नाथवानी हैं उम्मीदवार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की आज होगी बैठक। नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स समेत 27 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग में रांची टाइटंस ने धनबाद डायमंड्स को और संथाल स्ट्राइकर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को हराकर दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि देंगे। श्री मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन से ऑनलाइन जुड़ेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय रांची के आयुक्त तारिक अनवर ने बताया कि इस योजना के तहत रांची और बोकारो के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपने हाल की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था। वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है। सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: इधर वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सत्ता पक्ष से झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा तथा दूसरी ओर एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
0: रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की बैठक आज कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में होगी। इसमें 27 प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसमें 4 प्रोफेशनल विभागों का नाम बदलने, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अंक पत्र और सर्टिफिकेट के प्रारूप को स्वीकृति देने समेत नए कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव शामिल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts। और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के प्रांत कार्यालय के पास पेट्रोल बम फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस CCTV की मदद से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सूचना पाकर RSS कार्यालय पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
4: ये साधारण घटना नहीं है, हमारे यहाँ जितने अधिकारी गण है वो चपेट में आते, यहाँ पर पुलिस पिकेट बनाया जाए और जो भी है पकड़कर तुरंत ही बड़ी साजिश का पर्दाफाश करे। पुलिस प्रशासन को उस नियत का पता लगाना चाहिए।
0: कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के प्रगतिशील किसान सुमन लाल मेहता ने मल्टी लेयर खेती के तहत एक ही जमीन पर एक ही मौसम में एक ही पटवन से तीन अलग अलग प्रकार की सब्जियों की खेती कर अपने आय के स्रोत को बढ़ाया है। किसान ने बताया कि मध्य प्रदेश से उन्होंने मल्टी लेयर खेती की विधि सीखी है।
5: का नाम है मल्टी लेयर खेती, ये हमने सीख जो है मध्य प्रदेश से सीखे, ट्रेनिंग करके आने के बाद हमने इसको लगाया है। जिस फसल के लिए 100% पानी लगती है उस फसल में मात्र हम 30% या 25% पानी में ही इसमें उपजा सकते हैं। थ्री लेयर वाला भी हम कर रहे हैं, एक जमीन के नीचे है जो कंद वाली फसल है उसके ऊपर मिट्टी की जो ऊपर पत्तेदार सब्जी लगाना है, तीसरा लेयर है जो लतर वाली, हमने इसमें सिर्फ देसी बीज का ही उपयोग किया है।
0: वहीं कोडरमा के कृषि पदाधिकारी सुरेश स्वासी ने कहा कि मल्टी लेयर खेती पद्धति से दूसरे किसानों को भी अवगत कराया जाएगा।
6: पहले उनका जो फील्ड है विजिट करना होगा, फिर उसमें देखना होगा उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधा नहीं है, जो भी सुविधा नहीं है उसको प्रदान किया जाएगा। फिर जो भी आसपास किसान है उनका फील्ड विजिट कराया जाएगा जिससे कि और भी किसान प्रेरित हो सके।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 341 अंक बढ़कर 77,150 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 89 अंकों की बढ़त के साथ 24,078 पर है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,54,000 रुपए प्रति किलो है। और अब क्रिकेट। राजधानी रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 के सातवें दिन रांची टाइटंस ने धनबाद डायमंड्स को हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आर्यन हुड्डा ने नाबाद 94 और शिखर मोहन ने 62 रनों की पारी खेली, जिससे रांची ने 18 ओवर और 3 गेंदों में जीत दर्ज की। इससे पहले धनबाद डायमंड्स ने राम रोशन शरण के 58 रनों की बदौलत 191 रन बनाए थे, जबकि रांची के प्रिंस अनुराग मुर्मू ने 3 विकेट लिए। वहीं दिन के पहले मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर सत्र की पहली जीत दर्ज की, जिसमें विवेक कुमार ने 64 रन बनाए और प्रत्युष कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सौंपेंगे प्रोत्साहन राशि। रांची और बोकारो के कर्मी भी होंगे लाभान्वित। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होगा मतदान। सत्ता पक्ष से बैजनाथ राम और प्रणव झा तथा निर्दलीय के रूप में परिमल नाथवानी हैं उम्मीदवार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की आज होगी बैठक। नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स समेत 27 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग में रांची टाइटंस ने धनबाद डायमंड्स को और संथाल स्ट्राइकर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को हराकर दर्ज की जीत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम पे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब पेश है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारी आज की कलाकार है सिप्रा

0: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सुन रहे हैं सिप्रा बोस को उप शास्त्रीय संगीत अनुरंजनी के अंतर्गत।

आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब पेश है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हरिहरन से चंद गजलें। सागर है मेरा खाली,

0: मेहमान, ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू, एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री, स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, मोराबादी ग्राउंड, रांची, 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: क्या खबर थी कि मैं इस दर्जा बदल जाऊंगा। आइए सुनते हैं ये गजल हरिहरन से।

हरी हरन के गाए हुए खूबसूरत गजल के साथ ही ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रति

0: 6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21, when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defense production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in financial year 2013-14. Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed a significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land and sea, advanced indigenous technologies and built a stronger foundation for self-reliance and national security. Home Minister Amit Shah has said that over the past 12 years, under the government led by Prime Minister Narendra Modi, India has been rebuilt as a bastion of security that shields the citizens and unleashes destruction upon its enemies. In a social media post, Mr. Shah underlined that whether it is responding to enemies across border with the firepower of surgical strike, airstrike and Operation Sindoor, abrogating Article 370, eradicating Naxalism or fortifying internal security, there were 12 accords in the Northeast. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that India has already brought 21.76 million hectares of land under restoration efforts against its target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi. Speaking on the theme of this year's observance, Range Lands, Recognize, Respect, Restore, Mr. Yadav cited India's desertification and land degradation atlas and said that around 29% of the country's geographical area is affected by land degradation and desertification.
1: We fully reaffirm our ministry's commitment declared by the Honorable Prime Minister during the COP 2014 Delhi Declaration, where it was pledged that we would work toward the restoration of 26 million hectares of land by the year 2030. Under the Government of India's Green India Mission, we have already carried out work on approximately 1.7 lakh hectares of land. Furthermore, with the support of CAMPA, we have also successfully undertaken forestation effort across 3.2 lakh hectare of land over the past 5 years.
2: हम लोगों ने forestation करने का काम किया है.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.AIR app. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today said India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics. He was speaking after inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune. Mr. Vaishnav said that under the leadership of PM Modi, India has transformed into a global electronics manufacturing destination and is exporting products to markets across the world. Three new ministers were inducted into the Puducherry cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kulandhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailashnathan administered the oath of office and secrecy. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-exam. It said that fake proof videos showing chats from before the exam are also being circulated. NTA also shared a video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country.
3: CNTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen. Every question paper has been made in a complete secure manner. We have added layers of security to what is normally done. We have taken every single precaution to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers or translating them or printing them or moving them or storing them till the date of the examination is compromised in any manner.
0: In Manipur, security forces intensified counterinsurgency and law enforcement operations across the state, arresting 3 militants and destroying 26 illegal bunkers in separate operations, said the officials today. The militants were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. U.S. President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Early, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to win the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 200 points, 6 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने, तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से आए वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
5: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
4: धन्यवाद अंकित जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मद से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 154,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे

0: पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम 60 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्लाह और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। फौजी भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपके लिए लेके आए हैं बॉर्डर फिल्म से। रूप कुमार राठौर, सोनू निगम की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए सुनिए यारा दिलदारा फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति के गाया हुआ यह गीत है। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार जतिन ललित।

इस गाने के साथ ही प्रोग्राम जय भारती अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने एसआईटी गठन और जिहादी मानसिकता वाले आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।
1: मैं सरकार से और मैंने तुरंत अभी डीजीपी से बात की है कि अविलंब एसआईटी गठन करके अविलंब जिहादी मानसिकता के जो अभियुक्त उनको अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी तरह की किसी भी सामाजिक संगठन द्वारा किसी की हिम्मत न हो इस तरह का हमला।
0: वही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी और रांची डीसी से बात कर तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है।
2: आरएसएस के ऑफिस पर हमला करना इस प्रकार से पेट्रोल बम से गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए।
0: इधर रांची एसएसपी राकेश रंजन ने घटनास्थल का मुआयना कर बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई है।
3: इस केस में हम लोगों ने काफी गंभीरता से लिया है इस केस को और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे।
0: राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। क्रॉस वोटिंग और तकनीकी गलतियों को रोकने के

0: आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधायकों को मतदान प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि हर वोट सुरक्षित रहे। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। राजधानी रांची में गड़बड़ी रोकने के लिए स्पेशल ब्रांच ने निगरानी बढ़ा दी है। विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास जैसे संवेदनशील स्थानों पर सादे लिबास में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जो पल पल की रिपोर्ट मुख्यालय भेज रहे हैं। रांची में 27 जून को राज्य स्तरीय डिजिटल क्रिएटर्स मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से मतदाता जागरूकता बढ़ाना है। इस मीट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो क्रिएटर्स हिस्सा लेंगे। इच्छुक प्रतिभागी 25 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ के उरीमारी में अबुआ संताल समाज भारत देशों का दूसरा स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में एक दर्जन राज्यों के सैकड़ों आदिवासियों ने शिरकत की। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष विनोद किस्कु और सचिव दसई किस्कु ने समाज को एकजुट होकर अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया।
1: आज का दिन हर्षोल्लास के साथ हम लोग का संस्कृति, हम लोग का सभ्यता, हम लोग का रीति रिवाजे और समाज के जो कल्चर है उसको बचाने के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए उसी को और मजबूती के साथ में हम लोग बनाने के लिए हम लोग संकल्प आज हम लोग दूसरा स्थापना दिवस में हम लोग मनाने के लिए पहुंचे हैं।
0: जमशेदपुर के CSIR NML में 3 दिवसीय राष्ट्रीय छात्र संगोष्ठी बिहाइंड द टीचर्स डेस्क का शुभारंभ हुआ। टाटा स्टील और NIT के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने किया। संगोष्ठी में देश के 40 संस्थानों से आए 150 से अधिक छात्र धातु कर्म और सामग्री विज्ञान पर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। पाकुड़ के हिरणपुर पुलिस ने घाघ रजनी गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। SDPO कुमार गौरव के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 1 किलो 600 ग्राम गांजा और 25 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राज्य की पारंपरिक नचनी नृत्यांगना बुटनी देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने रांची के बुंडो स्थित उनके घर जाकर उन्हें लोक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृतज्ञतापूर्वक सम्मानित किया। उनके साथ उनकी बहन सोमवारी देवी को भी यह संयुक्त पुरस्कार मिलेगा। श्री सेठ ने कहा कि यह झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार।

0: कर।
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
0: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
0: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओ, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने, जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओ, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है, जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली

0: या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800-4405-59। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
3: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
2: हाँ पूछो।
3: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
2: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
3: अच्छा।
2: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
3: अच्छा।
2: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर, गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
3: अच्छा।
2: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
3: मंगल पांडे।
2: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
3: अच्छा।
2: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

মানুষেরা এখানে জন্ম নিয়েছে,

0: बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
1: बड़े बहादुर थे ये।
0: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
2: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
1: वो कहाँ के रहने वाले थे?
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
1: अच्छा।
0: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
2: अच्छा।
0: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
1: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
1: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
1: दादी, फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
1: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
4: और नहीं हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था। शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूं। आओ, भारत मां की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
5: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
0: थी मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
3: ए मंगल पांडे, वॉच आउट!
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
2: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
2: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग दी।

0: उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
1: मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
0: क्या कोई कार्रवाई हुई? हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
2: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
0: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई।

0: 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
1: इसके बाद क्या हुआ दादी?
0: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैल बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल मंगल मस्ती में चूर चलल पहला बागी मशहूर चलल गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल गोली के तुरंत निशान भैल जननी के भेंट परान भैल आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भैल जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
5: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
6: काशु बेटी तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
1: माँ आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
6: देखो बेटी तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
1: ठीक है माँ हम नाश्ता कर लेंगे पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
6: अच्छा ठीक है देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना। मैं पूजा करने जा रही हूँ।
1: अच्छा माँ।
7: माँ माँ
1: लो देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
6: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ। मुझे परेशान मत करना समझे?
1: ठीक है माँ।
7: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी। ठीक है मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
1: ठीक है मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी ये मारा।
1: देवेंद्र चुप रहो मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
1: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो
1: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। दीदी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी ये गिरा।
6: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
8: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
9: ए लड़की रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
1: अरे
9: वरना बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
1: हट
9: रास्ते से।
1: क्या हुआ? देखो जल्दी, ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
8: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
8: ये चाकू देख रही है ना?
1: छोड़ दो, मुझे मत मारो, कुछ मत करो।
6: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
8: जल्दी
6: याद नहीं कहाँ रखी है।
9: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
6: अरे मेरे बात को छोड़ो,
1: मेरी माँ को छोड़ो।
8: चुप चुप, आवाज से गाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
9: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
6: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
1: देवेंद्र।
7: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
7: हाँ।
1: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
7: अच्छा।
1: हेलो।
10: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा पापा।
10: हाँ बोलो बेटा।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुस आए हैं।
10: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
10: नहीं नहीं, अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है ठीक है?
1: देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
7: अच्छा।
11: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
12: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको, कशिका को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
6: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
13: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
12: देखो ना सभी जान
6: बहादुर है मेरी बच्ची।
11: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
14: उमंग उमंग उमंग उमंग।
15: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आप पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं उदित नारायण व महालक्ष्मी अय्यर को फिल्म दिल से में। गीत लिखे हैं गुलजार ने, संगीत दिया है AR रहमान ने।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गीत लिखे थे महबूब ने, संगीत दिया था इस्माइल दरबार ने। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की ही आवाज में, हमराज फिल्म से। सुधाकर शर्मा के बोल हैं, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

आइए सुनते हैं फिल्म परदेस से ये गाना। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार नदीम श्रवण, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

लता मंगेशकर उदित नारायण के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य की पारंपरिक कला और उत्पादों को बड़ी वैश्विक पहचान मिली है। जीआई रजिस्ट्री ने राज्य के कुचाई सिल्क, डोकरा क्राफ्ट और जादू पटुआ पेंटिंग समेत 11 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। रांची आरएसएस कार्यालय हमले पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने इसे राष्ट्रविरोधी ताकतों की साजिश कहा। इधर रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई है। राज्य का पलाश ब्रांड आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धूम मचा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बिरसा हरित ग्राम योजना से राज्य के 2 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार मिला है। इस सीजन में करीब 52,000 एकड़ बगानों से 50,000 मीट्रिक टन आम उत्पादन का अनुमान है। पलामू के जीएलए कॉलेज परिसर से आज सड़क सुरक्षा जागरूकता बाइक रैली को जिला परिवहन पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित वाहन संचालन के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल को देश में 21वां और झारखंड में 2रा स्थान मिला है। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में स्कूल ने 93.30 स्कोर हासिल किया। रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इसका उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बढ़ते कदम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नशे को ना कहें जीवन को हाँ आधारित नशा मुक्त झारखंड अभियान पर, जो 15 जून से 26 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। भेंटवार्ता, विविध लोगों से बातचीत, भेंटकर्ता कमलेश कुमार मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
2: बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। आज के समय में, आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जब हम बात प्रेशर की करते हैं, जब हम बात खुद को अपडेट रखने की बात करते हैं, ऐसे प्रेशर में आज बहुत सारे किशोर और युवा गलत राह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक प्रेशर में आकर वो नशे को अपना साथी बनाते जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष झारखंड सरकार की तरफ से एक ड्राइव चलाया जाता है। ड्राइव का उद्देश्य होता है लोगों को निषिद्ध मादक पदार्थ के प्रति जागरूक करना, उन्हें ये बताना कि जिंदगी में नशा कभी भी आपका साथी नहीं बन सकता, नशा आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है। आज हम उसी ड्राइव की बात करने वाले हैं। आज हम बात उस नशे के जाल की करने वाले हैं जो लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसमें कैसे हम और आप अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना है। जानकारी के लिए आपको बता दो, 15 जून से शुरू हुआ निषिद्ध मादक पदार्थ के प्रति जागरूकता का ये अभियान 26 जून तक चलेगा, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले में सरकार अपने कार्यक्रमों के माध्यमों से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से और अन्य जो प्रचार के माध्यम है उससे लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। अब यहाँ पे हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भूमिका इसमें कैसे सुनिश्चित करें। और कार्यक्रम की शुरुआत आज हम अपने युवा साथी सुनील किसपोट्टा से करेंगे। और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि सुनील भारतीय कराटे टीम के कोच हैं और झारखंड से बिलोंग करते हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बढ़ते कदम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आप एक युवा हैं और आप जिस तरीके से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कराटे में और बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनील, एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय, आज हम निषिद्ध मादक पदार्थों की बात कर रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है लोगों को जागरूक करने की। मैं एक कराटे प्रशिक्षक के तौर पे सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि कैसे युवा अपने आप को इस नशे की लत से दूर करें।
3: युवा अगर अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं खेल की ओर, चाहे वो कराटे खेल हो या अन्य कोई भी खेल हो या कोई भी गतिविधि है
2: जी,
3: तो उनका जो नशे से दूरी बढ़ेगी और उनकी रुचि अगर खेल में आएगी तो क्योंकि उनका ग्रुप चेंज होगा, उनके लोग चेंज होंगे, उनका सर्कल चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली है कि वो नशे से दूर होते जाएंगे।
2: मैं आपसे समझना चाहूंगा सुनील कि आप कराटे कर रहे हैं और मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा जाना तो लगभग 30 वर्षों से आप कराटे सिखा रहे हैं
3: जी।
2: तो एक तो पहले आपने परफॉर्म किया, आपने बेहतर किया, आज आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं। सो ये जो कंसिस्टेंसी है ये भी तो बनाए रखना एक मुश्किल है, क्योंकि लोग तो दबाव में आते हैं और जैसे ही दबाव में आते हैं वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ जा रहे हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कंसिस्टेंसी कितना जरूरी है और कैसे, जैसे कराटे, आपने कराटे को अपने जीवन में चुना, ये कितना मददगार रहा आपके जिंदगी में?
3: नहीं, पहले जब मैंने शुरुआत की तो मैं भी काफी ऐसे कॉम्पिटिशन था जिसमें फेलियर हुआ, जो मेडल हमें लेना था वो हम ले नहीं पाए, पर ऐसा नहीं कि उस सिचुएशन में हम डिप्रेशन में गए और नशे की ओर चले गए। हमने एक लक्ष्य को निर्धारित किया कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है, फिर हम लोग अपने फोकसली तैयारी की उस मुकाम के लिए, तब हम जाके उसे अचीव कर पाए हैं। तो अगर आज के युवा भी हैं, अगर वो किसी भी खेल से जुड़ते हैं, कराटे ऐसा खेल है जो कि सेल्फ डिफेंस के साथ एक डिसिप्लिन सिखलाता है, तो बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन आता है कि डिसिप्लिन में रहना कैसे है, उठना कितने बजे है, एक्सरसाइज कितने बजे करनी है, डाइट क्या होना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो बच्चे एक सही मार्गदर्शन में चलते हैं, तो नशे से उनका लगाव घटता जाता है और लगभग खत्म हो जाता है।
2: आप जब अभ्यास करते हैं या आप जब बच्चों को सिखाते हैं, किस तरह की एनर्जी आती है, कैसा वाइब्स आता है, क्योंकि आपका तो ये डेली का रूटीन है, आप जब एक्सरसाइज करते हैं कैसा फील करते हैं?
3: एक एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास होती है, जो कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने के लिए हमें स्टैमिना चाहिए। स्टैमिना हमें तभी आएगा जब हम अच्छा प्रोटीन लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और नशे से दूर रहेंगे। ये स्टैमिना को बरकरार रखने के लिए हम खुद नशे को दरकिनार करते हैं और अपने तैयारी की ओर फोकस करते हैं, ताकि हम स्टैमिना बरकरार रखें और जिस मुकाम तक पहुंचना है उस पे हम पहुंच सके।
2: एक मेंटल स्ट्रेंथ जो है, मैं जब आपसे मिला भी था और मैंने देखा कि जब आप बच्चों को सिखा रहे तो वो नजर आता है कि आप में एक अलग सा आत्मविश्वास झलक रहा था। सो

0: या आप एक लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप अपने लाइफ में बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़े, कैसे अपने दिनचर्या को ठीक करें, कैसे वो फोकस्ड हो?
1: वो तभी किया जा सकता है जब आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगा। अनुशासित तरीके से अगर आप अपने काम को करेंगे, अपने रूटीन को बनाएंगे कि सुबह कितने बजे उठना है, सुबह कितने बजे अभ्यास करना है, उसके बाद कितने बजे हमें कौन सा खाना खाना है, तो एक रूटीन बनेगी तो ऑटोमेटिकली शरीर उसमें ढलते जाता है। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो जैसा आदत डालता है वो वैसी रिएक्ट भी करता है उसका शरीर। अगर मुझे सुबह उठने की अगर आदत है 5 बजे की, तो शरीर मेरा ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा 5 बज गए हैं, उठ जाओ। अगर हम इसे डिले करेंगे तो वो खुद नहीं करने देता है। तो वैसे हम लोग को अपना एक लाइफस्टाइल बनाना होगा कि हम डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बनाएं और स्पोर्ट्स करते रहें ताकि हम फिट भी रहें।
0: स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, अपने लाइफ को
1: बिल्कुल
0: बेहतर बनाने के लिए।
1: बिल्कुल बहुत जरूरी है। इससे आपके अंदर फिटनेस आता है, आपका माइंड कंट्रोल होता है, आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है, आपको एक जीने का मकसद मिल जाता है जिससे आप इंजॉय करके अपने लाइफ को जी सकते हैं।
0: मैं चाहूंगा सुनील, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना खुद में एक गौरव की बात है, और आप झारखंड से हैं तो हमारे लिए भी ये मान की बात है। आप अपना एक रूटीन बताएं, किस तरह का रूटीन आप फॉलो करते हैं?
1: मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं 2 घंटा अभ्यास करता हूँ अपने घर पे ही। मैंने एक छोटा सा जगह सेंटर बना रखा है जिसे हम स्टूडियो बोलते हैं, उसमें मैं अभ्यास करता हूँ। उसके बाद फिर जो रोज का रूटीन है उसे हम शुरू करते हैं। अपना जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट है वो मैं 8 बजे तक कर लेता हूँ। उसके बाद एक फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट है कि हमको इतने बजे फ्रूट सैलेड लेना है, वो हम उतने बजे ले लेते हैं। लंच की टाइमिंग फिक्स है कि 1 बजे से पहले कर लेना है और डिनर 8 बजे से पहले कर लेना है। एक अपना रूटीन फॉलो किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग एक चीट डे करते हैं जो कि सिर्फ संडे को हम लोग फास्ट फूड खाते हैं या जो भी बाहर की चीजें हैं। स्ट्रिक्टली बैंड होता है कि सप्ताह में 6 दिन नहीं खाएंगे, सिर्फ संडे को हमारे पास परमिशन है कि हम खा सकते हैं, और इसे हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, तब हम जाके फिजिकली फिट भी रहते हैं।
0: तो इस पे एक सवाल मुझे लगता है कि हम अपने श्रोताओं को जरूर बताएं, क्योंकि सुनील आज हमारे पास में सबसे जो चिंता का विषय है कि जो हमारे किशोर है, जो हमारे युवा हैं, वो नशे के गिरफ्त में आ जा रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि आपको इन चीजों से दूर होना है। मैं आपसे इस बात को समझना चाहता हूं कि जब मैं आपकी ही बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 साल के लंबे करियर को आप लेकर चल रहे हैं और आज भी आपको वो मेंटेन करना है, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हैं, आप उन युवाओं को सिखा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो बाकी जो लोग आज नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, एक तो आपको क्या रीजन लगता है सुनील एज ए यूथ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्या वजह हो सकती है?
1: क्योंकि आज के जो युवा है वो थोड़े जब बचपन से वो ना थोड़े पैम्पर्ड है पेरेंट्स के थ्रू, तो उनको हर एक चीज आसानी से मिल जा रही है जो उन्हें चाहिए। हमें चाहिए कि भाई वो जो बच्चे हैं हमारे आज के, उनको थोड़ा सा हम डिसिप्लिन लाइफ दे और थोड़ा स्ट्रिक्ट बने उनके ऊपर कि भाई ये करना है ये नहीं करना है। और जितने भी युवा हैं हमारे जो कि नशे की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि उनका एक जो माहौल है, एक जो ग्रुप है दोस्तों का, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम उन सभी युवाओं को खेल की तरफ डाइवर्ट करते हैं तो वो ग्रुप चेंज होगा, बच्चों का माहौल चेंज होगा और वो बच्चे फिर सही रास्ते पे।
0: अभी क्या हो रहा है कि लोग प्रेशर में बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, मतलब उन्हें लगता है कि हारना है ही नहीं, हमेशा जीतना ही है, कुछ ऐसा प्रेशर भी बच्चों के दिमाग में चल रहा है या कोई और चीज है जो बच्चों को इस तरफ मोल्ड कर दे रही है?
1: नहीं, कॉम्पिटिशन अभी जो है, कॉम्पिटिशन का समय आ गया है, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या किसी फील्ड में हो, और बच्चे उतने स्टेब्लिश नहीं है कि हम उस लेवल को टच करें। अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो आसानी से पा सकते हैं, पर वो उस लेवल का मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि थोड़ी सी आपको मेहनत और करनी है, थोड़ी एनर्जी और लगानी है, तब उसे पा सकते हैं। वो जब उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं तब वो डिप्रेशन में जाते हैं और उसके बाद फिर वो नशे की तरफ जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों को लेकर बच्चों को थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है, युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है।
0: सुनील बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक आखिरी सवाल आपसे, जब इंडियन कराटे टीम की बात आती है फिर उसमें कोच के तौर पे आपका नाम आता है, कितनी खुशी मिलती है खुद को इस जगह पे लाकर खड़ा करना, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना?
1: ये मेरे लिए भी बहुत सम्मान की बात होती है जब हम विदेश में होते हैं, दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और हमारा देश का झंडा होता है वहां पे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे

0: और भी खिलाड़ी आगे बढ़े और इस लेवल तक आए ताकि वो देश का नाम रोशन कर पाए और अपने स्टेट का, अपने जहां पे वो रहते हैं डिस्ट्रिक्ट का, उसका नाम रोशन कर पाए।
1: क्या एक मैसेज होगा आज तमाम उन लोगों के लिए जो बढ़ते कदम कार्यक्रम में आपको सुन रहे हैं, युवा साथियों के लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे?
0: मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वो नशे को ना कहे और खेल को अपनाएं। खेल को अपनाएंगे तो उनका भविष्य भी अच्छा बनेगा, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छी जीवन जीवेंगे।
1: सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपको भी धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए।
1: और अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के कार्यक्रम के दूसरे मेहमान हैं योग आचार्य। हमारे साथ जुड़ेंगे जगदीश सिंह। राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मेडल्स जीते, आज खुद 51 वर्ष के उम्र में योग करते हैं, खुद को फिट रखते हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये कैसे हमें फिट रख सकता है और कितना मददगार है योग। जब हम नशे की बात करते हैं, किस तरीके से हमें नशे से योग दूर कर सकता है। जगदीश जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, और आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं जगदीश जी, और पहला ही सवाल आपसे होगा,
2: जी
1: नशे की गिरफ्त से बाहर आने में योग कैसे मददगार है?
2: काफी अच्छा सवाल है आपका और काफी अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा वर्ग नशे की गिरफ्त में आते जा रहा है, हम लोग को इस चीज के ऊपर सोचना होगा कि आखिर समाज क्यों इस तरफ जा रहा है, क्या कारण है। अगर हम लोग नशे की लत की बात करें तो आज हम लोग देखते हैं कि समाज में जो डिप्रेशन आ रहा है, लोगों में जो डिप्रेशन आ रहा है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या फिर ऐसा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, एक जो होड़ मची हुई है उसकी वजह से लोग मानसिक परेशानियों से घिरते चले जा रहे हैं। उन मानसिक परेशानियों की वजह से लोग नशे का सहारा लेने लग जाते हैं। उनको लगता है कि नशा ही एक रेमेडी है, कुछ देर के लिए सुकून मिलना उनको लगता है कि यह बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। लेकिन नशा जो है वो शरीर को ही नहीं मन को भी प्रभावित करता है, मन को अनस्टेबल कर देता है और धीरे धीरे आपके डिसीजन पावर को कम करता है, आप में जो विल पावर रहता है उसको भी कम करता है। तो अगर हम लोग योग की बात करेंगे तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए हम लोग योग का सहारा ले सकते हैं।
1: यानी योग वो माध्यम है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, आपको एक नई सोच, एक पॉजिटिव वाइब्स देता है।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम लोग कई सारे और जो हेल्थ प्रैक्टिसेस है उनके साथ में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो योग में न केवल शरीर को फिट करता है बल्कि ये मन को भी मजबूत करता है, ये चीज माना हुआ है और कई सारे मेडिकल रिसर्च भी इस पर हुए हैं जिससे इसको साबित किया जाता है कि इसका सीधा असर मन पे होता है। और अगर नशे की लत की बात करें तो मन को अनस्टेबल करता है, और योग में ऐसे कई सारे उपाय हैं, कई सारे आसन हैं और प्राणायाम है, रिलैक्सेशन है, जिससे कि नशे की लत को कम किया जा सकता है और जो लोग इससे दूर रहना चाहते हैं उससे उनको लाभ मिल सकता है।
1: जगदीश जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि योग किस तरीके से मददगार है, कैसे वो उन्हें भी रोक सकता है जो नशे के आदि हो गए हैं, और कैसे उन लोगों को और स्ट्रांग कर सकता है जो अभी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो नशे की गिरफ्त में ना जाए, उस जाल में ना फंसे, किस तरीके से योग मदद कर सकता है?
2: जी, इसमें योग नशे की लत को छोड़ाने के लिए, कम करने के लिए योग बहुत बड़ा एक वरदान साबित हो रहा है आज के युग में, क्योंकि इसमें क्या है कि नशे की लत सबसे ज्यादा प्रभावित मन को करती है, मानसिक रोग है, मन से ही होता है, और मन अगर कमजोर हो गया तो आदमी नशे की ओर ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। और अगर हम लोग योग की बात करें तो योग में कई सारे ऐसे आसन है जो मन को और आपके विल पावर को स्ट्रांग करते हैं और एक निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग करने में अपने आप को बहुत अच्छा साबित होते हैं। जैसे कुछ आसन मैं आपको बताऊं जो संतुलन वाले आसन है, बैलेंसिंग आसन है, जितने भी बैलेंसिंग आसन योग में है ये सारे नशे की लत को छुड़ाने में, और जैसे आपने बताया कि जो लोग इसमें नहीं आए इसके लिए क्या करें, तो ये वो लोग भी अगर इस आसन को करेंगे तो मन से मजबूत होंगे, जैसे कुछ आसन है धारण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। एक है ताड़ासन। ताड़ासन एक बैलेंसिंग आसन है, शरीर को स्ट्रेच करते हैं, दोनों हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं और एड़ी को ऊपर उठाते हैं। शरीर को भी स्ट्रेच करता है, शरीर के ऑर्गन्स को भी स्ट्रेच करता है, क्योंकि नशे की लत में शरीर के ऑर्गन्स भी उतने ही प्रभावित होते हैं जितना कि मन होता है। और अगर हम लोग ताड़ासन करते हैं तो शरीर में स्ट्रेचिंग होती है, तो इसके ऑर्गन्स भी स्ट्रेच करते हैं, और जब ऑर्गन स्ट्रेच होते हैं तो उसको हील करने में मदद मिलती है। तो ये एक आसन काफी लाभदायक हो सकता है। दूसरा है वृक्षासन। वृक्षासन भी है कि एक पैर को फोल्ड करके थाई पर रखते हैं और दोनों हाथ को ऊपर करके अपने शरीर को बैलेंस करते हैं, ठीक एक बगुले की तरह। आपने देखा होगा बगुला जो है पानी में एक पैर पर खड़ा होता है, उसके पीछे उसका कारण ये होता है कि उसको अपने मन को कंसंट्रेट करना होता है ताकि वो पूरी तरह से एकाग्र होकर मछली को पकड़ पाए। सेम फॉर्मूला यहाँ भी काम करता है। अगर आप वृक्षासन करते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। बच्चों के लिए भी उतना ही लाभदायक है जितना कि ड्रग एडिक्ट्स को है। और इसके बाद फिर हम लोग ये दो आसन करने के साथ भी हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं, जिसको हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीधा हम लोग ऑक्सीजन के इंटेक से मन को कूल करते हैं। जैसे हम लोग नाड़ी शोधन करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट ब्रीदिंग इसको कहते हैं, जिसमें एक नोस्टिल से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं, पहले से छोड़ते हैं। तो इससे क्या है कि मन को बैलेंस करने में, जो उत्तेजना मन में आ जाती है उसको शांत करने में, आदमी को कूल करने में बहुत मदद मिलती है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसको आप दिन के किसी भी समय में कर सकते हैं, और जितनी देर आप चाहेंगे उतना देर आप इसको कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ इसका ये है। उसके बाद फिर जब आप एक व्यक्ति नशे की लत में ग्रसित हो जाता है तो उसके बॉडी पे रिलैक्सेशन नहीं हो पाती है, नींद नहीं आ पाती है, ठीक से सो नहीं पाता है। तो ये योग में रिलैक्सेशन के भी बहुत आसन है, जैसे कि एक है आपका शवासन। शवासन अगर आप करते हैं तो शरीर को, ऑर्गन्स को हील करने के साथ साथ मन को भी शांत करता है। मैं आपको बार बार मन के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि नशे की लत है 99% वो मन पे ही अफेक्ट करती है।
1: तो अगर हम लोग मन को ठीक कर चला जाता है जी,
2: हाँ मन को ठीक कर लेंगे तो आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।
1: ये आसन कैसे करेंगे सर? ये आसन करने का तरीका?
2: हाँ, शवासन करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप पीठ के बल सबसे पहले लेट जाइए और दोनों हाथों को कमर के बगल में रख लीजिए, हथेलियां को ऊपर की तरफ छोड़ दीजिए खुला, सर सीधा रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी रखिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी तरह का कोई कड़ापन नहीं रखना है, ऐसे लगना चाहिए कि आपके शरीर में जान ही नहीं है। पूरे शरीर में एक ही काम होगा, वह है केवल सांसों का आना और जाना। इसके अलावा आपके शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा। देखिए योग में क्या है ना, स्थिरता के ऊपर बहुत जोर दिया गया, स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना ज्यादा आपका मन शांत होगा। हम लोग बच्चों को भी जब सिखाते हैं तो उनको भी यही बताते हैं कि अगर आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो स्थिरता के ऊपर फोकस करिए। समय दिन में किसी भी समय थोड़ी देर अपने आप को शांत बैठने का प्रयास कीजिए तो आपके मन को भी बहुत फायदा मिलेगा। तो ये है शवासन का कि अगर आप लेट के करते हैं तो आपको काफी इससे बॉडी को हील भी करेगा, मन को भी शांत करेगा। और ये आप कभी भी दिन में, रात में भी कर सकते हैं सोने से पहले, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद फिर एक स्पेशल प्रैक्टिस आता है, उसको बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा में हम लोग सेम उसको शवासन की स्थिति में लेटवा देते हैं पीठ के बल, और इसके बाद फिर हम लोग उसमें उसके कई सारे प्रोसेस है जिससे हम लोग उसको बोल के उसके मन को एनहांस करते हैं, उसको स्ट्रांग करते हैं, और इससे उसकी मन की जो एकाग्रता है, सोचने की जो शक्ति है, जो अपने आप को उसमें हार की उसमें ये आ जाती है, सोचने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, इन सारी चीजों को उसको बूस्ट अप करने में काफी मदद मिलती है। तो इन सारी चीजों से जो लोग ग्रसित है उनको तो लाभ मिलता ही मिलता है, और जो लोग इससे बचना चाहते हैं वो भी इन सारी चीजों को करेंगे, इन सारे अभ्यासों को करेंगे तो वो उनसे काफी दूर रहेंगे जी।
1: क्या एक आप जो आज के हमारे किशोर हैं, मैं किशोर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारे वो न्यू है जो आगे चलकर अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, सोसाइटी को एक नया दिशा दे सकते हैं, इसलिए आप उन्हें किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे और किस तरीके से वो अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने प्रेशर के साथ साथ, अपने जिंदगी को एक सकारात्मक रास्ते में ले जाए।
2: देखिए, किशोर के लिए हमें, आपको जो यंग जनरेशन है उसके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, रास्ता मुश्किल बहुत है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अपने आप को हार नहीं मानना है, अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है और

0: चीज दिखाना है कि हाँ भाई हम जिस प्रदेश से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, वो अपने आप को कम नहीं आंकना है और अपने विल पावर को बढ़ाना है और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ करना है, ताकि आप जहाँ भी जाएंगे तो आपका एक अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से आप अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह आपकी पूछ होगी। लेकिन वही इसके जगह अगर आप एक बहुत लेथार्जी होंगे, शरीर आपका ढुलमुल होगा, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो यूथ के लिए है कि आपको अभी बहुत एनर्जी चाहिए, आगे जिंदगी में आपको बहुत सारे काम करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं। तो इसलिए है कि योग को अपनाएं, और ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए अलग से समय निकालें, योग को अपने जीवन में उतार लें। तो उससे क्या होगा कि आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा और एक रूटीन बन जाएगा। जैसे कि आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, उस तरह से ही आप नियमित रूप से कुछ अभ्यासों को करें, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहें।
1: यानी ये बहुत जरूरी है। और जब हम बात योग की करते हैं, इसलिए आज हमने पहले तो एक कराटे शिक्षक से बात की, वो इंडियन कराटे टीम के कोच हैं, उनसे समझने की कोशिश की कि कैसे खेल को जब आप जिंदगी में अपनाते हैं तो आप कैसे इन चीजों से दूर हो जाते हैं, कैसे आप में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। और दूसरे हमारे मेहमान जगदीश जी हैं, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, योग आचार्य हैं, और इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप योग को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो ये आपको कितना बूस्ट करता है। सो आपसे समझना चाहेंगे, आपका रूटीन क्या होता है जगदीश जी, जब मैं आपकी बात करूं, आप खुद को कैसे मानसिक तौर पे, क्योंकि आप तो इतने वर्षों से कर रहे हैं, आपका रूटीन कैसा होता है ताकि लोग समझे, वो भी आपसे एक प्रेरणा ले सके।
0: जी देखिए, रूटीन तो हेक्टिक रहता ही है आज के डेट में, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, पत्रकारिता भी करता हूँ, और जैसे आपको भी पता होगा कि पत्रकार के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा होती है।
1: जी,
0: और चूंकि मैंने एमएससी भी किया तो उसमें मेरा रिसर्च का टॉपिक भी था कि जो पत्रकारों में जो बीमारियां होती है मानसिक और शारीरिक रूप से, उसको कैसे योग से ठीक किया जाता है। जैसे आपने मुझे पूछा कि मेरी दिनचर्या के बारे में, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग तो उठ ही जाता हूँ
1: जी,
0: और उठने के बाद ही बिना अभ्यास किए मुझे चैन ही नहीं मिलता है। जब तक मैं अभ्यास नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे लगता है कि बहुत कुछ कुछ छूट रहा है। तो डेली रूटीन है, उसको करने के बाद ही लगता है कि हाँ भैया थोड़ा सा फ्रेश हो गया है आदमी। उसके बाद फिर जो मेरी डेली रूटीन है, क्योंकि मैं जॉब पे भी हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में मैं कार्यरत हूँ, तो अपने कार्यस्थल पे जाके योगा करवाता हूँ। उसके बाद फिर दिन भर के जो काम होते हैं एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन कई लोगों को आप देखे होंगे दिन भर के बाद वो इतने थके हुए महसूस करते हैं शाम तक कि उससे दूसरा काम नहीं होता है
1: जी।
0: लेकिन पता नहीं, हम मुझे तो थकान थोड़ी कम लगती है, क्योंकि योग में जो शक्ति है वो बता नहीं सकते आपको, जो करता है वही कह सकता है इसको। ये मतलब एक्सप्रेस करने की नहीं है, फील करने की बातें हैं।
1: यानी ये एक ऐसी ऊर्जा योग के माध्यम से मिलता है जिससे हम कह सकते हैं कि हमें एक नई जिंदगी मिलती है, हम कुछ नया सोच पाते हैं, हम कुछ बेहतर कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, योग में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो डिसीजन मेकिंग में बहुत आपकी हेल्प करता है और आदमी को कंफ्यूज नहीं करता है कि यहाँ पे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। वो पूरी तरह से माइंड को एक कंसंट्रेशन देता है और उसमें की एनर्जी को बूस्ट करता है। अगर देखिए, अगर आपका मन अगर शांत होगा तो उससे क्या है कि आपकी जो ऊर्जा है वो शरीर में गलत तरीके से आगे बढ़ेगी और आपके शरीर को थकाएगी। लेकिन अगर आपका मन शांत होगा तो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव वे में काम करेगी, शरीर को हील करेगी और आपको एक नई ऊर्जा देगी। ऑर्गन्स आपके अच्छे होंगे तो आपको बॉडी में बूस्ट मिलेगा और आप दिन भर तरोताजा फील करेंगे अपने आप को।
1: क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे युवा आपको सुन रहे हैं, क्या उन्हें एक संदेश देना चाहेंगे आप?
0: संदेश मेरा यही होगा कि योग में एक अद्भुत शक्ति है और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है। और चूंकि मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कई सारे लोगों को योग के माध्यम से ठीक किया है, जो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मौत के मुंह में थे और आज के डेट में बिल्कुल ही अच्छे स्थिति में है, चल फिर रहे हैं। इसलिए योग को अपने जीवन में उतारिए। अगर आपको एक लंबी जिंदगी जीनी है, अच्छी जिंदगी जीनी है, स्वस्थ जिंदगी जीनी है, परिवार के हर व्यक्ति को इस चीज को करना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ परिवार रहे। और जितना अच्छा हेल्दी आपका परिवार रहेगा, जितना हेल्दी समाज हेल्दी रहेगा, उतना ही स्वस्थ आपका देश होगा और एक अच्छा मैसेज पूरे विश्व में जाएगा, तभी हम लोग विश्व गुरु कहलाते हैं। क्योंकि योग की भारत की संस्कृति की पैदावार है, यहीं से वो निकला है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि इस चीज को करते थे, उस समय दवाइयां नहीं होती थी, लेकिन

0: योग के माध्यम से भी अपने आप को शरीर को फिट रखते थे। आज इस चीज को मेडिकल साइंस भी मान रही है कि योग के द्वारा आप कई सारी जटिल बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मेरा आपको यही मैसेज होगा, योग को अपने जीवन में उतारिए,
1: योग को अपने जीवन में उतारिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक सोचिए और नशे को ना कहिए, जिंदगी को हाँ कहिए। आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमारी यही कोशिश है, इसी मैसेज की हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। धन्यवाद आपका भी।
1: श्रोताओं, बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में हमने दो मेहमान को अपने साथ जोड़ा और ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जिंदगी में हम एक सकारात्मक दिशा का संचार कर सकते हैं, सकारात्मक सोच का संचार कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, नशे की गिरफ्त से बाहर आ सकते हैं। खेल को जिंदगी में जगह दीजिए, योग को जिंदगी में जगह दीजिए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते हैं, आप जो जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नशे की गिरफ्त में नहीं आना है, आपको जिंदगी को हाँ कहना है, नशे को ना कहना है। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर हाजिर होंगे नए मेहमान नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, अब आपको छोड़े चल रहा हूं इस प्यारे से गाने के साथ, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला।
1: ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोड़ी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम। प्रस्तुति प्रभु शरण की थी, वाचन स्वर था कमलेश कुमार मिश्र का। आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 4:35 से आप सुनेंगे सांझ सरगम, शाम 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार, 5:02 से आप सुनेंगे युववाणी निश्चय और अस्मित के साथ। प्रस्तुति की है गौरव पांडे ने। 5:30 कार्यक्रम श्रमिक लोक, चर्चा मरुस्थलीयकरण का बढ़ता खतरा, खादी और कुटीर उद्योग से ग्राम स्वराज, योग से जोड़ों के दर्द को कहें हमेशा के लिए अलविदा, आकांक्षा और प्रणव के साथ। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की, शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार, और 6:02 से आप सुनेंगे खेती बाड़ी चर्चा बीजोपचार का महत्व। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। और साथियों, शाम 6:32 से हम आपको लिए चलेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत हेडिंग्ले लीड्स से भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र। सांझ सरगम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत हमारे तमाम श्रोताओं का। जैसे गर्मी की तपिश थी कुछ दिनों से, पर मौसम ने करवट ली और मौसम हुआ बड़ा ही सुमधुर। रितेश करता है आपको नमस्कार।

मेरा चांद मुझे आया है नजर। आप सुन रहे कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लेते एक छोटा सा अल्प विराम, फिर हाजिर होते हैं।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।

0: खेती अब बनेगी स्मार्ट। झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
1: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
0: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
7: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
8: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत सांझ सरगम में। सांझ की बेला हो और कुछ मधुर नगमे सुनने को मिल जाए, तो फिर चाय की चुस्कियों के साथ आपका शाम भी सुहाना हो जाता है।

ये जो जज्बात होते हैं, ये जो एहसासात होते हैं ना, जब वो कलमबद्ध होते हैं तो सोचिए वो क्या कल्पना करके वो कवि या फिर वो रचनाकार लिखता होगा, उसकी कल्पना, उसकी दृष्टांत क्या रहता होगा, ऐसे गाने ऐसे नगमे लिख देते हैं वो। और साथ ही उनका भी क्या कहना जो संगीतबद्ध करते हैं उस लेखनी को, उसे ताल में लाते हैं। यानी ऐसी जब अनूठी जोड़ी बनती है तब ऐसे हिट गाने का पदार्पण होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम।

मैंने रब से तुझे मांग लिया, फिल्म कर्मा में आप सुन रहे थे और 7वीं कार्यक्रम ही संपन्न होता है। रितेश आपसे विदा चाहता है, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे और हंसते रहे, यूं ही हमें याद करते रहे। रितेश का नमस्कार। साथियों आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम, आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। गिरिडीह के धनवार में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संस्थान के खुलने से स्थानीय और ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सकेगी। पलामू व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म और जानलेवा हमले के 23 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी संतोष कुमार सिंह को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खूंटी पुलिस ने चर्चित राधेश्याम साहू हत्याकांड का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पलामू के छतरपुर में आज डायन कुप्रथा के खिलाफ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। डालसा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर जिला जज ज्योतिशील ने डायन प्रथाओं को सभ्य समाज के लिए अभिशाप बताया। राज्य की पारंपरिक नचनी नृत्यांगना बूटन देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने रांची के बुंडो स्थित उनके घर जाकर उन्हें लोक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृतज्ञता पूर्वक सम्मानित किया। राज्य में मॉनसून के बावजूद जून महीने में सामान्य से 57% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा और चतरा में सूखे जैसे हालात हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कल से राज्य भर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। इस समय संध्या के 5:02 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। शांतिकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ छवि। अब से कुछ ही देर के बाद यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाए कुछ गीत। संध्या के 5:30 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी हरा चारा की खेती के बारे में। मनोरंजन होगा हो लोकगीत से सिनेमा आल्डा और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता आप सुनेंगे 12 मासी सब्जियों की खेती के बारे में। भेंटवार्ताकार है लखन कुमार और भेंट करता है कोमल नायक। नागपुरी लोकगीत आप सुनेंगे रूना देवी और साथियों के स्वर में। इसके अलावा बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संध्या के 6:00 आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

श्रोताओं, 6:06 आपको मुख्य समाचार के बाद 6:02 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हुआ खड़ा, जिसमें जानकारी की बातें होंगी वात्सल्य मिशन योजना के बारे में चर्चा की जाएगी। और उसके बाद मनोरंजन होगा हेरोदुरंग से जन्म से मुंडरी और साथियों के स्वर में। आप इसके अलावा भेंट वार्ता सुनेंगे खेती बाड़ी के साथ बकरी पालन से लाभ। भेंट वार्ताकार हैं जयमती गुइयां, उनसे बातें कर रहे हैं महेंद्र गुइयां। इसके अलावा आप सुनेंगे आहिंदी लोकगीत डोगे सिंह को व साथियों के स्वर में। 6:30 पर आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 226 का सीधा प्रसारण, जो कि इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स के बीच में खेला जाएगा। 6:55 पर आप हमारे रांची केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:10 से 7:45 पर होगा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, विषय है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ के बारे में एपिसोड 17। 7:45 पर पुनः आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सीधा प्रसारण, जो कि इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। 8:45 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से ही समाचार संध्या। रात्रि के 9:00 से 9:15 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

रात्रि के 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सीधा प्रसारण, जो कि इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के बीच में खेला जा रहा है। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कुछ बाकी कार्यक्रम के बारे में। अब आपको सुनवाते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाए कुछ गीत।

कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाए कुछ नगमे हम सुनवा रहे हैं श्रोताओं। तो सबसे पहले सुनिए, फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ें हैं जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाने छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है अग्निसाक्षी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गुलदस्ता कार्यक्रम में का ये गीत कुछ फिल्में नगमे। अभी आपको हम सुनवा रहे थे विनाशक फिल्म से गीत। अब एक आवश्यक सूचना। जिला दंडाधिकारी स उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का ज्ञापन 1594 गोपांक दिनांक 8/6/2026। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का पत्रांक 27/62 दिनांक 5/6/2026 के निर्देशानुसार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के प्रभावित गिरिरक्षकों को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत मोहर्रम पर्व ड्यूटी 2026 के अवसर पर दिनांक 25/6/2026 से 28/6/2026 तक कुल 4 दिनों के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु 300 गिरिरक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। अतः वैसे सभी गृहरक्षक जो वर्तमान अवधि में किसी भी प्रकार की कर्तव्य में प्रतिनियुक्त नहीं हैं, वे सभी गृहरक्षक जिला समादेष्टा कार्यालय चाईबासा में आकर दिनांक 18/6/2026 से मोहर्रम पर्व हेतु आगमन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझे। आदेशानुसार जिला समादेष्टा झारखंड गृहरक्षा वाहिनी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, चलते चलते आपको सुनवाते हैं चालबाज फिल्म का ये नगमा। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति के गाए कुछ गीत। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। तो कैसे हैं किसान भाई बहनों आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। हरा चारा, हरा चारा की खेती, आज हम इस विषय पर आप सभी को जानकारी देंगे, साथ ही आनंद लेंगे हो लोकगीत का और कुछ जरूरी संदेश भी सुनवाएंगे और सुनवाएंगे एक भेंटवार्ता। तो किसान भाई बहनों, पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए पौष्टिक हरे चारे की खेती बेहद महत्वपूर्ण है। जलवायु के अनुसार, यानी अपने क्षेत्र के जलवायु के अनुसार, ज्वार, बाजरा, मक्का, बरसीम और नेपियर घास जैसी फसलें सर्वोत्तम मानी जाती है। इनसे पशुओं को भरपूर प्रोटीन और फाइबर मिलता है। बरसात के मौसम में ज्वार, मक्का और बाजरा, इन फसलों को लगा सकते हैं। ये तेजी से बढ़ते हैं और 55 से 60 दिन में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रबी के मौसम में, यानी सर्दियों में, बरसीम और जई लगा सकते हैं। ये सर्दियों में पौष्टिक चारा प्रदान करते हैं। पूरे साल यानी 12 महीना में सुपर नेपियर घास की खेती आप कर सकते हैं। यह एक बार लगाने पर 6 से 7 साल तक चलती रहती है और इसकी लंबाई 12 से 15 फीट तक हो सकती है। इनकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 सबसे उपयुक्त माना जाता है। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई करें, इसके बाद कल्टीवेटर से दो बार जुताई करके पाटा लगा दें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बुआई के समय 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालें। इसके अलावा अच्छी उपज के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। चारे की फसल को फूल आने से पहले या 50 से 60 दिन की अवस्था में काट लेना चाहिए ताकि पोषण सबसे अच्छा मिले। किसान भाई बहनों, इसमें बीजों को कतारों में बोएं, लाइनों के बीच लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मक्का और जई का बीज 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है। गर्मी में फसल को हर 8 से 10 दिन में पानी देना चाहिए। सर्दी में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और बरसात में बारिश की स्थिति को देखते हुए आप सिंचाई कर सकते हैं। पौधे को आप जब भी काटें तो जमीन से 6 सेंटीमीटर ऊपर से काटें ताकि वह दोबारा जल्दी उग सके। पशुओं को हमेशा सूखा चारा, हरा चारा और दाना मिलाकर देना चाहिए। हरा चारा बहुत रसीला और मुलायम होता है, जिससे पशुओं का पेट साफ रहता है और पाचन क्रिया ठीक होती है। तो किसान भाई बहनों, अभी हमने आपको जानकारी दी हरा चारा की खेती किस तरह से करनी चाहिए।
1: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इसे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में

0: किसान भाई बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे हो लोकगीत का सिनीमाई आल्डा और साथी के स्वरों में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं भेंटवार्ता, बारहमासी सब्जियों की खेती, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं लखन कुमार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
1: हाँ, मेरा गांव है सिनी सिदमा और मेरा नाम है लखन वर्मा।
0: अच्छा, तो लखन जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जो है तो लखन जी, आप खेती बाड़ी से कितने सालों से जुड़े हुए हैं?
1: 5 साल से जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा, तो 5 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं, है ना?
1: हाँ।
0: तो अभी तो लखन जी धान लगाने का मौसम है, तो
1: हाँ।
0: धान की खेती के लिए आप खेत की तैयारी कर चुके हैं या करेंगे?
1: नहीं, करेंगे अभी
0: जी।
1: अभी बारिश के चलते हम लोग नहीं कर पाया।
0: अच्छा,
1: तो इस साल तो थोड़ा लेट से ही हो रहा।
0: अच्छा, तो जून में ही करेंगे।
1: हाँ,
0: लास्ट जून में
1: ही करेंगे
0: जी। तो तैयारी किस तरह से करेंगे आप?
1: हाँ, पहले हल जोत के तोला का ये बना लेंगे।
0: अच्छा,
1: है ना?
0: तो हल जोतने के तुरंत बाद तोला डालते हैं कि उस हाँ, समय खेत को छोड़ देते हैं?
1: नहीं, हल चलाने के बाद ही करते हैं।
0: अच्छा, तुरंत बाद करते
1: हाँ,
0: हैं
1: हाँ।
0: अच्छा, तो इसमें खाद वगैरह कौन सा डालते हैं?
1: हाँ, पहले तो गोबर देते हैं।
0: गोबर खाद देते
1: हाँ,
0: हैं
1: हाँ।
0: अच्छा, गोबर हाँ, खाद डालने के बाद फिर
1: हाँ,
0: आगे का जो तरीका है वो किस तरह से करते हैं?
1: हाँ, जब फिर लगाना चालू करते हैं तब समय खाद, मतलब क्या DAP वगैरह
0: अच्छा
1: देते हैं।
0: अच्छा, तो ये खाद घर पे ही बनाते हैं?
1: नहीं, घर तो नहीं बनाते हैं,
0: खरीद के लाते हैं। अच्छा, तो खाद अगर आप बाजार से लाते हैं तो कितना कीमत में मिल जाता है?
1: वही किलो का हिसाब में अभी हो गया 40 रुपया 1 kg में।
0: अच्छा, 40 रुपया 1 kg।
1: हाँ।
0: अच्छा, और घर पे गोबर खाद वगैरह बनाते हैं?
1: हाँ, वही गाय का गोबर।
0: अच्छा,
1: भैंस का।
0: अच्छा, तो वो ताज़ा तो नहीं देते हैं ना?
1: हाँ, ताज़ा नहीं देते हैं।
0: अच्छा,
1: तभी तो पचाते हैं हम।
0: अच्छा, तो उसके बाद आगे जैसे कि धान की खेती करते हैं तो उसके बाद जो धान का जो दूरी है कितनी दूरी पर लगाते हैं?
1: हाँ, दूरी कम से कम, हाँ, एक बित्ता बोलेंगे।
0: अच्छा, एक बित्ता की दूरी पर।
1: हाँ।
0: यानी कि जो पौधे हैं आपस में मिलना नहीं चाहिए, जिससे बढ़ नहीं पाता
1: हाँ,
0: है पौधा,
1: हाँ,
0: है ना?
1: हाँ।
0: जी, और ये जो धान की खेती है इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात होता है? किस किस चीज़ का ध्यान देते हैं धान जब लगा लेते हैं?
1: हाँ, पानी,
0: पानी का ज़्यादा
1: हाँ,
0: जरूरत
1: हाँ,
0: पड़ता
1: ज़्यादा
0: है
1: पड़ता
0: तो
1: है।
0: पानी कितने दिनों में देते हैं?
1: अगर सूख जाता है तो जल्दी देना पड़ता है, सप्ताह भर में।
0: यानी कि 7-15 दिन के अंदर पानी देना चाहिए। तो चलिए लखन जी, ये तो बात हो गई थोड़ी बहुत धान की खेती के बारे में।
1: हाँ।
0: इसके अलावा आज जो हमारा जानकारी का विषय है, जो आज हमारे भेंटवार्ता का विषय है, बारहमासी जो खेती बाड़ी होती है सालों
1: हाँ,
0: साल
1: हाँ।
0: तो उसकी खेती आप किस तरह से करते हैं और 12 महीने में कौन कौन सी ऐसी साग सब्जियां हैं जो आप लगाते हैं?
1: 12 महीना वही जैसे हुआ भिंडी हुआ, बैंगन हुआ, है ना, और ऐसा लौत वाला सब तो है ही है
0: जी।
1: हाँ,
0: साग वगैरह जैसे
1: हाँ, साग
0: लाल
1: वगैरह तो है ही है।
0: अच्छा,
1: अभी जैसे कभी मूली उली लगाना चालू करते हैं।
0: तो अभी कुछ लगाए हुए हैं अपने खेतों में?
1: हाँ, लगाए हैं।
0: क्या लगाए हुए हैं?
1: मूली सभी लगाए हैं अभी।
0: अच्छा, मूली लगाए। तो मूली का जब आप खेती किए तो खेत का तैयारी किस तरह से किए?
1: वही आड़ बनाते हैं, अभी बारिश का टाइम है ना।
0: अच्छा, तो आड़ बना के, यानी कि अगर नीचे लगाइएगा तो पानी जमा होने का खतरा है।
1: हाँ।
0: जी, आड़ बना के आप खेती किए हैं तो
1: हाँ,
0: बीज कहाँ से लेके आए हैं?
1: बीज तो ही ये से ही,
0: बाजार से ही जी। तो आप कुछ सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो कौन सी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं?
1: पहले थे GTDS तरफ से
0: जी,
1: वो तो अभी
0: नहीं मिल,
1: हट गया, अभी
0: नहीं मिल
1: रहा। अभी ऐसे अभी है जैसे कि ब्लॉक से
0: उपलब्ध हो जाता
1: हाँ,
0: है जी
1: हाँ।
0: तो ये बीज तो उपचारित बीज ही होते हैं, है ना?
1: हाँ,
0: हाँ, तो घर पे ऐसा बीज तैयार करते हैं क्या?
1: नहीं,
0: नहीं, सब ब्लॉक से मिल जाता है और खरीदते भी होंगे। तो इन बीजों का क्या मूल्य होगा बाजार में?
1: मूल्य ज़्यादा ही है बाजार में।
0: अच्छा,
1: जैसे आप भिंडी का बीज खरीदने जाइएगा उसका 1000 रुपया तक पड़ जाएगा।
0: अच्छा, और उसमें कितना? अच्छा, 1 केजी बीज रहता है उसमें। जी जी, तो ये रहा बात है भिंडी की खेती का, तो भिंडी की खेती में जब आप खेती की है तो उसका खेत भी किस तरह से तैयार करते हैं?
1: हाँ, उसका भी बनाए आड़ जैसे करके, जैसे कि पानी इधर उधर न ये है।
0: अच्छा, ज़्यादा जमा ना हो, इधर उधर ये ना हो। जी, और साग सब्जियों की जैसे खेती हमने कहा आपसे, तो लाल साग, सूजना साग, पुई साग, तो इन सबको आप किस तरह से लगाते हैं? बीज का ही जरूरत होता है या फिर भी लगा?
1: नहीं, बीज से ही।
0: बीज से ही लगा सकते हैं। अच्छा, तो इसको किस तरह से लगाएं?
1: वही बनाते हैं क्यारी जैसे।
0: क्यारी बनाते हैं, तो क्यारी का जो दूरी होता है कितना दूरी रखते हैं?
1: ये कहाँ कैसे बुनते हैं?
0: बुनते हैं। अच्छा, यानी कि छींट देते हैं?
1: हाँ, छींट देते हैं।
0: जी, तो हो जाता है,
1: हो जाता है उसी से।
0: तो इसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं?
1: लगते हैं।
0: तो इसके उपचार क्या करते हैं आप?
1: वही स्प्रे मिलता है बाजार में।
0: अच्छा, और नीम वगैरह का छिड़काव करते हैं? नीम तेल वगैरह का
1: नहीं, वो सब नहीं करते,
0: नहीं करते हैं, घर पे नहीं बनाते हैं,
1: बनाते नहीं।
0: अच्छा, आजकल तो बहुत ऐसा भी होता है लखन जी कि बहुत कोई घर पे ही कीटनाशी वगैरह बनाते हैं। जी, अच्छा, तो उसके अलावा और क्या क्या चीज़ लगाया हुआ है साग सब्जियों में?
1: साग सब्जियाँ और वही लौकी वगैरह।
0: लौकी वगैरह लगाया हुआ है। लौकी का बीज भी आपको ब्लॉक से मिल जाता होगा?
1: हाँ, मिलता नहीं तो खरीदते हैं।
0: खरीदते हैं,
1: झींगा जैसे हुआ।
0: अच्छा,
1: करेला हुआ।
0: अच्छा, तो इनको कैसे, इनको तो सहारा देने के लिए मचान बनाना पड़ता है।
1: हाँ, मचान बनाते
0: तो हैं। कैसे बनाते हैं मचान?
1: मचान बनाते हैं जैसे आड़ में अभी लगा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: आड़ से ही खूंटा गाड़ते हैं।
0: खूंटा गाड़ते हैं बांस का?
1: हाँ, बांस का।
0: अच्छा, तार वगैरह दे के सहारा बनाते होंगे। अच्छा, तो ये जो भिंडी का फसल है कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाता है?
1: लगता है 3 महीना लगते हैं।
0: 3 महीना लगता है। अच्छा, 3 महीने के बाद बनके तैयार हो जाता है। और अभी जो मूली का फसल आपको कितने दिन में मिल रहा है?
1: वो 25
0: पच्चीस दिन में मिल रहा है। जी, तो बाजार यहाँ कौन से बाजार में ले जाते हैं?
1: सरायकेला।
0: सरायकेला
1: भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, तो कितने में बेचते हैं आप इसको?
1: अभी तो 40 ही चल रहा है।
0: 40 रुपये।
1: हाँ, जैसे बाजार का ये है
0: माहौल है।
1: हाँ,
0: जी जी, और साग सब्जियों की जैसे हम बात कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: तो साग सब्जियों का जैसे क्या दाम रखे हैं बाजार में?
1: आलू बांधते हैं, आलू तो ये तो नहीं करते हैं ना,
0: मुठा ये
1: मुठा,
0: करते।
1: हाँ,
0: जी जी। हाँ, तो उसको कैसे, 10-20-10 रुपये? अच्छा, और तो लखन जी अक्सर देखते हैं कि हम कुछ भी साग सब्जियां लगाते हैं तो घास फूस खेत में निकल आते हैं जो कि जिससे पौधा बढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए आप क्या करते हैं?
1: वही खुशियाँ करते हैं।
0: अच्छा,
1: गाछ का दूरी थोड़ा 1 फीट घास नहीं होना चाहिए।
0: नहीं होना चाहिए। जी, और बीच बीच में खेत की तो सफाई करते होंगे ना?
1: करते हैं
0: जी। तो लखन जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। किसान भाई बहनों, कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे नागपुरी लोकगीत रूना देवी और साथी के स्वरों में।

तो किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य के स्टेट ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के विशेष समारोह में मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही श्री दत्ता देश के 7 शीर्ष निर्वाचन कोर एक्सपर्ट्स में शामिल हो गए हैं। राज्य में ATS अब अपराध अनुसंधान विभाग CID के अधीन कार्य करेगा। DGP तदाशा मिश्रा ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। इसके तहत अब ATS की सभी प्रशासनिक जांच और परिचालन गतिविधियां पूर्ण रूप से CID प्रमुख के निर्देशन में संचालित होंगी। राज्य में मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 101वें दिन भी जारी रही। रांची के लोक भवन के समक्ष आज से 10 कर्मचारियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कर्मचारी संघ ने 19 जून को विशाल मानव श्रृंखला बनाने की भी चेतावनी दी है। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में आज जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बोड़ियों में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को तुरंत ठीक करने और आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त सेविका सहायिका पदों पर जल्द बहाली का निर्देश दिया। लोहरदगा में 28 जून से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 644 बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। सरायकेला खरसावां के चांडल में गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्लांट में हुए फर्नेस ब्लास्ट के बाद आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कंपनी के मुख्य गेट को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हादसे में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हो अखड़ा।

नहीं, आकाशवाणी रिया चाहिए भाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 MHz श्रवण आई मतना ना आयु पिंग छः बजाय ना ते 2 मिनट हो बस का है ना कार्यक्रम हो अकड़ा आई मिच में लगे लिंग बिठाओ जो कि ना महेंद्र गई है सभी को आलिंग पे ते जो हार जाओ दिन लिखा गया एस पूरा लिंग सगा मांगो ते डे इना कोमियन नियत लिंग आयु मिच बिना आयुम लगे एफएम रेडियो जपा रहे टाइम में चे मेरा ना तरंग बन जपाओ जो है ना एंड द एल

आयमचे बिना सभी को ऐता आयर अटकर जगार वत्सल्य मिशन योजना अबेन आदान गया बेन परिवार सिर्फ जीत जीवन ते रिश्ते दो काबा इंतन निया प्यार ओंडो जोगोसन तियो बयोतन आबू ए जिले रे ऐसे पूरे इंका नहन को मिना कोआ इंगा आपू को बांग कोआ या इंगा आपू को मिना को रियो मेंदो एन को मियन कारण वास्ते आको एन को काकोलेल दे को तना एन लिकन हन को जो काकोलेल दे ओतना एन को इनकन हन को आ आको असुल को तिया या एनरे जायो काको अयरपान तना एनरे दो एन लिकन को मरंग को तिया लगिन अब एन हन को आ ना बारसिंग मिये संस्थागत रे नेलकोतन तेया को मिना गया इनकान उनको अलग इन सरकार पाए तेयो मियन मिशन वत्सल्य अंतर्गत पोस्टर केयर ओकन को जो नैन उनको को ले लो ओताना इना को चला ओताना निया योजना इनकान उनको अलग इन मिना जे ओकन को कुछ समय लगिन आको दुर्कर वा एनलिका हिसाब मैंने रियो या तो आको 18 बरस उम्र पूरे जुका निको को ललकुआ डो जोगसन दई को आको एनलिका ते आबु निन तालामला रे आबु समाज रे आबु हतुरे जदि इनकन हुनको मिना कर दो इनको ने नलकना को अटकर के ते इनक बुजा पगारो का अंडो एनलिकन हुनको निकन तारबु आगु कोचा अंडो नन जो अब ना वत्सल्य मिशन योजना जो मिना निना सरकार पाते चलावतन तेया संस्था गेतन एनरद अब नेको वकील कतबो हरमरंग को के रदो एनको अब समाज ताला माला रे नेको वकील कते को तैने इना मनते या तनेलकन हन को ओको गोदरे ते असुल मरंग ते काको सनंग ओतन एनरद ने नेन कन ताबो आगु को का नो नेन कन संस्था रे बु जुड़ाव को छ तिसिंगे जगरदो नेन मुले रगे चबावतन निन जगर चनम एला अंडोजिका अयरपालिंग आयुमिचिबिना हेरो प्रोब्रिया दुरंग।

0: Naben ayom ten taikena hera oporobria durang Janum Singh Mundri ondo juriko saril saritege abu Bharat disum ajad lagin gadalika mayum ko haliyene ondo abu marang marang neta ko taikenen ko jail koreo ko jail ket ko gea ajad lagi enlikan lade ko ladai hubalna endado mar enlikan during ko during keda eso artpun durang nina odu lerdo eso duku gea atkarwa ondo na nina abu ಎಂದದ ಜಿಮಿಸೆ ರಾಂಸ ಆಟ್ಕರ ಎಂಚನಮ್ ಎಲ ನಾದ ಅಬು ದುಕ ಚಾಸ್ ಬಾಸಲೋತೆ ಮೇರಂ ಕು ಅಸುಲ್ ಕೇತೆ ಲಾಭ ಚಿ ಲಾಪಕಬು ನಮತೆ ಅಮಿಸೆ ವೆಪ್ಟ ಜಗರ್ಬು ಅಯುಂಬೆಯ
1: ಕಿಸಾಂತ ಅಲಿಂಗ್ ಬಿಟಾ ಕನ ಜೊಕೆ ಅಕಿನ್ ಮೇರಂ ಕಸುಲ್ ಕೇತೆ ಎಸ್ಪುರೆ ಲಾಭ ಕೊಕ್ಕೆ ನಮತನ ಎಂದದ ಅಬು ತಿಸಿಂಗೆ ಜಗಾರ್ಯ ಬಿಸಯ ಇನಗೆ ಮಿನ ಚೆ ಮೇರಂ ಕಸುಲ್ ಕೇತೆ ಲಾಭ ಚೆ ಲಾಪಾ ನಮತೆ ಎಂದ ಅಕಿನೆ ಉಪರುಂ ಚೆ ಪರಿಚಯದ ಅಕಿನ್ ಗೆ ಜಗರ ಬೋಬು ಅಯಂ ಕಿನೆ ಚಿಗೆ ಜ್ವಾರ್
2: ಜ್ವಾರ್ ಗೆ
1: ಅಬಿನ ಉಪರುಂ ಚೆ ಪರಿಚಯ ಕೊದ ಅಬೆನ್ ಗೆ ಜುಕ ಜಗರ ನೋ ತರದನ ಎಸು ಬುಗಿನೆ
2: ಅಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊದ ಇಂಕಾ ಮಿನ ನುತುಂ ದೊ ಜೇಮತಿ ಕುಯೆ ಹಾತು ದೊ ಲಾಜರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಗೋಲ್ ಕೇರಾ ಪರ್ಕನ್ ಗೋಲ್ ಕೇರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಭೂಮ್
1: ಅಚ್ಛಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಭೂಮ್ ಎಂದದ ಅಬೆನ್ ಎಸ್ಪುರೆ ಮೆರಂ ಕೊಲಿ ನಿರಾಟ್ ಕೋ ಅಬೆನ್ ವಾರೆ ಅಂತೆ ದೊ ಅಬೆನ್ ಚಾಸ್ ಬಾಸ್ ಅಬೆನ್ ಚಾಸ್ ಬಾಸ್ ತನ ನಂದನ ಮೆರಂ ಕೋ ಚಿಲ್ ಕಿತೆ ಬೆನ್ ಅಸುಲ್ ರೆ ಅಬೆನ್ ಉಡು ಕಿದ
2: ಮೆರಂ ಕೋ ಅಸುಲೆನ್ ರೈನಾ ಗೆಸು ಸುವಿದೆ ಮಿನಾ ಯಾಕೊ ಹಾರಾ ಕೆಟ್ ಕೋ ಮರಂ ಯೇನಾ ಕೋ ದೊ ಮೆಟೋ ಮೆರಂ ಗೇಮ್ ಅಕರಿ ರೆ ಬಾರಾ ಜಾ ತೆರಾ ಜಾ ಕೋ ಅಕರಿ ಯೋ ಅನೆ ತೆಂಡೋ ಆಂದಿ ಬಲಾ ರೆ ಪನಾ ಓಆರ್ಗೆ ಅಸುಲೆಂಡ್ರದ ಎಂದ್ರೆ ಪುರೆ ಪೈಸಾ ಟಕಾ ಪನ ಕಾಕಾ ಚೇತೆ ಉವಾಹೋ
1: ಎನ್ಕ್ವಾಯ್ತಗೆ ಅಪನ ಖರ್ಚಾ ಜೋ ಪೈಸಾ ಖರ್ಚಾ ಇತೆ ಇನ್ನ ಬಚಾವು ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಛಾ ನೆನ್ ಮೇರಂ ಕು ಬೇನ ಅಸುಲೆ ಕಡೆ ಎಂದ್ರೆ ಅಬೆನ್ ಚಿಲ್ಕೆ ಬೇನ ಅಸುಲ್ ತೆಕ್ಕೋನ ಚಿಲ್ಕೆ ಉವಾ ಇಪೆನ್ ತ ಅಲಗ್ ತಬೆನ್ ಬೈ ಕಡೆ
2: ಇಯಾ ಮೇರಂ ಕು ಲಾಗಿ ತೊ ಇಪೆನ್ ತಲಿಂಗ್ ಬೈ ಕಡೆ
1: ಅಚ್ಛಾ ಎಂದ ನೆಕೊ ಅಬೆನ್ ಸುರುರೆ ಯಾನಕೆ ಒಂಕೊಳುರೆ ಚಿಮಿನ್ ಲಿಕ ಮೇರಂ ಕು ಬೇನ ಕಿರಿಂಗ್ ಪುಂಜಿಲೆ ಕೋಚಿ ವಾರಂ ಕೋ ಕತೆ
2: ಬಾರಿಯೇ ಲಿಂಗ್ ಕಿರಿಂಗ್ ಪುಂಜಿ ಲಟ್ಕಿಂಗೆ
1: ಪಟಿಯಾಕೆ
2: ಪಟಿಯಾಕಿಂಗೆ
1: ಅಚ್ಛಾ ಅಚ್ಛಾ ಇಂದ ಬಾರಿಯೇ ತೆಗೆ ಮನ ಅಬೆನ್ ನಾ ಅಬೆನ್ ವಾರ ಚಿಮಿನ್ ಮಿನಾಕೋ
2: ನಾ 15 ಟೋಲ್ ಕಮ್ ನಾಕೋ ಅಲಿಂಗ್ ವಾರ
1: 15 ಟೋಲ್ ಕಮ್ ನಾಕೋ ಸಮ ಯೇ ಕಾಸಿ ಕೋ ಸಮೇಚೆ ಸಮ ಪಟಿಯಾ ನಾ ತೆಂಗಾ ಕೋ
2: ಕಾಸಿ ಕೋ ಮಿನಾಕೋ ನಾ ತೋ ಹುಡಿಂಗ್ ಹುಡಿಂಗ್ ಪಟಿಯಾ ಅನ್ಕೋ ಎಂಗಾ ಕೋ ನಾಕೋ
1: ಅಂದ ಕಾಸಿ ಕೋ ತನ ಅಬೆನ್ ತಾರೆ ಚಿಮಿನ್ ಮಿನಾಕೋ
2: 5 ಟೋಲ್ ನಾಕೋ
1: 5 ಟೋಲ್ ನಾಕೋ ಚಿಂತಿಂಗ್ ಬರೋಸ್ ಕೋ ಬಾ ಕನ್ನನ
2: ಮಂಡೋ ಕಸಿ ತೀನ್ ಬರಸ ಉಬಾಕನ
1: ಅಚ್ಛಾ
2: ಮಂಡೋ ತೋ ತೀನ್ ಬರಸ ತೆಲ್ಲಾ ಕಡ
1: ಅಚ್ಛಾ ಅಚ್ಛಾ ಅನತೆ ಒಂಡ ಉತ್ತರ ಇನ್ಕೋ ದುದು ಸಾಲ ಕತ
2: ಒಂಡ ಬಿಟಾ ಐಡೆ ತನ ಬಿಟಾ ಐಡೆ ತಿನಿಕೋ
1: ಏ ಆಯ
2: ಆ ಪರ್ಷ ಪಪಕ ಉಮರ್ ತೋ
1: ಏ ಆಪೆ ಲೆಲೋ ತನ ಕೊನ್ ಹೆಂದ ಕಸಿ ಕೋ ಅಪಿ ಕೋ ಲೆಲೋ ತನ ಅನತೆ ನಕೋ ಕಸಾಯ ಕೋ ಇನ್ಕೋ ಅಪಿ ಕೋ ಲೆಲೋ ತನ ಇನ್ಕಾ ದೋ ಸಮ ಹುಡಿಂಗ್ ನೀಲೋ
2: ಏ ಆ
1: ಏ ಆಯ ಏಯ ಎನ್ಕಿನ್ ಮರಂ ಕಸಿಕಿಂದು ಕಿನ್ ನಲೋ ತನ ಹೆಂದೆ ಎಂದೆ ನೀ ನೈತೆ ಮಿಡು ಕಸಾಯ ನೀ ಎಂದ್ರದು ಇನ್ಕಿನೆ ದೊ ಮೋಟಾ ಮೋಟಿ ಅಭಿನ ನಲೋ ತನ ಕೊ ನಾ ತುರಂ ಎನ್ಕಿನ್ ಚಿಮಿನ ಎನ್ಕಿನ್ ಬಿಟಾಯ ಎನ್ ಮರಂ ಕಸಿಕಿಂದ
2: ಮರಂ ಕಸಿಕಿನ್ ಇನ್ಕಿನ್ 13,000 ತಕಿನ್ ಬಿಟಾಯ ಗಿಯ
1: 13,000 ಕಿನ್ ಬಿಟಾಯ
2: ಏಯ
1: ಅಚ್ಛಾ ಅಚ್ಛಾ ಏಯ ನಾ ದೊ ನೆಕುವಾ ಗೊನಂ ಕೊ ಎಸ್ ಪುರೆ ಬಡಾವ ಕನ್ ಹಿಸಾಬ್ ತೆ ಎಂದು 13,000 ತಕ್ ರಿಯ ಅಭಿನ ಮನೆ ಉಡು ಬಿನ್ ರಿಕೆ ಕಿಡೆ ಇನ ಮಿನಂಗ್ ದುಕಿನ್ ಅಕರಿಂ ಹೋಗಿಯ ಮಂತೆಯ
2: ಇಯಾ ಅವಳು ಊರಿಂಗ ಹಾಕಡಾಲಿಂಗ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಯಂ ತೆಗೆಲಿಂಗ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಕಿಂಗಂತೆಯ
1: ಅಚ್ಛಾ ಅಯರ ಬರಸ್ಕೋ ಎಂದ್ರದೋ ಜಾ ಚಿಮ್ನಲ್ ಕಬನ ಅಕರಿಂಗ್ ಬೇಕೆಟ್ ಕೋ
2: ಈ ಅಕರಿಂಗ್ ಕೆಟ್ ಕೋ ಅಲಿಂಗ್ ಆರ್ತ ಬಾರಿ ಕಾಸೆ ಕಿಂಗ್
1: ಅಚ್ಛಾ ಎನ್ಕಿಂದ ಚಿಂಪಿಂಗ್ ತಬನ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೆಟ್ ಕಿನ
2: 12,000 ತಲಿಂಗ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಕೆಟ್ ಕಿಂಗ್ ಎನ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಕಾನೆ ತೆ ಕೋಮ್ ನೋ ಕಿಂತೆ ಇಲ್ಲ
1: ಅಚ್ಛಾ ನಿಕಿನೆ ತನ ಮಿನಾ ಕಿನೆ ತೆ ಜುಕ ಕೋಮ್ ನೋ ಕಿಂತೆ ಕೆ ಅಚ್ಛಾ ಅಚ್ಛಾ ಎಂದ್ರದೋ ಠೀಕ್ ಗಿಯಾ ಎಂದೋ ನಿಮಿನ್ ಪುರೆ ಅಬನ್ ನಾ ಮಿನಾ ಕೋ ಎಂದೋ 12-15 ಟು 7 ಪಟಿಯಾ ಕೋ ಹಿಂಗಾ ಕೋ ಏನಾಯ್ತೆ ನೆನ್ ಕಸಿ ಕೊಲೋ ಎಂದ ಸ್ಪುರೆ ಅಬೆಂತ ಅರದೊ ಮಿನಾ ಕೋ ಅಬೆನ್ ಅಸುಲ ಕೆಟ್ ಕೋ ಅಚ್ಛಾ ನೆಕೋ ಚಾಸ್ ಬಾಸಲೋ ತೆ ನೆಕೋ ಅಸುಲ್ ದೊ ಅಬೆನ್ ಇನಮೆಂತ ಬೆನ್ ಉಡು ಕೆಡ ಚಿ ನಾ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಲಾ ಬೊಂದುರೆ ಮೆಂತೆಯ ಅಂಡೊ ಜೈಸೆ ಪೈಸಾ ಟಕ್ಕ ಕೋ ತರಂ ರಿಂಗೆ ಎಂದ ನೆಕೋ ಬೆನ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಕೊತೆ ಯಾವ ಅಬೆನ್ ದೊ ಬೆನ್ ಉಡು ಕೆಡ
2: ಇಯ ಪೈಸಾ ಟಕ್ಕ ರಿಂಗೆ ಎಂಟು ತಲಿಂಗ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಒಲಿಂಗ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಕೋ ಯಾನ್ ಜಿತಂತ ಬಾಲಾ ಬೊಂದು ಬಾವಾ ಎಂತ ಲಿಂಗ್ ತಿಂಗ್ ಇಟಿಕುವ
1: ಯಾ ಹರಂ ದೇಂಗ
2: ಹರಂ ದೇಂಗ ತೆ
1: ಅಯ್ಯಾ ನಾದು ಹೋ ಸಮಾಜ ರೇ ಇಂಕಾ ಮಿನ ಅಪನಂ ಹರಂ ಜಮ್ರದ ಆಯೋಂಡೋ ಮುಸಿಂಗ್ ಎನ್ಕಗೆ ಹರಂ ರೂ ಮೆಂತಿಯ ಲಿಂಗಾ ದೆ ಪಿಂಗಾ ಮೆನ್ಲಿಕ ಅಚ್ಛಾ ಅಚ್ಛಾ ಠೀಕ್ ಯಾನ್ರದೋ আলিং
2: গিলিং লেল কো আলিং চিলকে সময় নাম কেতে মিতন্ডলিং গুপি লেকোয়া পাতা কলিং জমি চিলিয়া গোটো ইদার কলিং আরবিউর লেকোয়া দু ঘন্টা লিকার কো পেরি ও পেরি আন দো আকো তে কো অল উজু রে ওয়া দো
1: আচ্ছা ইনকান গোটো তে লকনা কো বেন আরকোয়া এন এনা তেন পাতা কো বেন জমি চিকে কর দো 2 ঘন্টা লকা পেরি আন দো কো আকো তে কো
2: এই আকো তে কো উজু ওয়া তা
1: আচ্ছা আচ্ছা এই আন দে সো বড়িং এন উপায় আছে উড়ো মনে রে টেকি এন দো নে কো দো উরি কিড়া কো লিকা দো মনে দিন বার গোপি কোতে আদো জান দরকার বানো আচ্ছা আচ্ছা নেকো উরি মেরম কেড়া ইয়া জেতনা বি জানোয়ার কো মিনা কো ইনা হাসু দুকু কো দো তাইনে নেকো হাসু দুকু কো দো হুবান রদো আবেন নেকো বাঁচাও কো তে উপায় কো দো চিলকে
2: না তো মেডিকেল পা আগে সিন অতে উপাওন কো বাঁচাও লাগি তো কাদো সাল রে 3 বার লিং সো ইচিতে কো
1: আচ্ছা চিমিতে চিমিতে সাল রে 3 বার মেন রদো
2: জেট সিঙ্গি মিসে লিং সো ইচি তেকোয়া গামা ইমিতে মিসে তারাবাং ইমিতে মিসে
1: আচ্ছা আচ্ছা ইয়া মানে এন্ডো আবিনা কাজিরিয়া মতলব দলিং সমজা নাচে আবেন জেট সিঙ্গি বলতান রে মিসে নাতে জারগিদে অনোগে ইনকাগে বিটা ইয়ান রে মিসে নাতে নিকা রাবাং অনোগে বিটা তান রে মিসে
2: ইয়া
1: মানে ইমিনং রে মানে মেরম কো আবেনা ঠিক কো তাই
2: ইয়া না ইনকাগে 2-3 সাল বা আতা না ইনকাগে লিং সো ইচি কেট কইতে মেরম কো না বাড়ি কি না কো আন্ডো সাঙ্গে ও কো সাঙ্গে ইয়া
1: আচ্ছা আচ্ছা ইয়া এনরদো এস বড়িং ইয়া এনরদো নে আয়ুমতেন কো না দো আবেন জাইসে বেন রিকে কেট কো নাতে এনলিকা রিকে কর দো মানা কো টেক কো তাই না জান মানে গয় কো তো কাকো গয় বা আতা না
2: কাগে কাকো গয় ইয়া
1: আচ্ছা না বারসে ইনকা লিং আয়ুমতেন না জুকাল কা জে মেরম কো মান কো গয় তা না সরপো তা না কো ইয়া নাকে সুলুই কো অল তা না নাতে সামা কো জড়ায়ান কো তে কো গয় ইয়া না কো মানে আন্দো আবেন দো নিতার দো ঠিক গে মিনা কো আবুন তা
2: এই আবুনিতা ও আগাল বগাল রেঙ্কা কো গজি ওতানা আলে ইতে সই কলিং সই ইচিকেট কো পাসওয়ার্ডক সুতেন মন্ডে গেলিং কি আলে ইতেলিং সই ইচিতে কো
1: আচ্ছা এন্ডো এনি ফোন নাম্বার বেন রিকেকেড ডাক্তার পাসু ডাক্তার
2: ইয়া পাসু ডাক্তার আ
1: এন্ডো বেন ফোন কি রেগে হজুয়ে
2: ইয়া ফোন কি রেগে হজুয়ে
1: এনা তো চিলকে আইপ বেন কো বেন সই ইচিকো আছি সিতা পা
2: সিতা পা গে ইতেন রে হজুয়ে
1: আচ্ছা আচ্ছা ইদেন রে উজু আন্ডো এনকো বেন সই চিতে
2: ইয়া সই চিতে কোলে চেন 1 ঘন্টা বাদ রে গাও তেলি হারেডি তে কো
1: ও মানে কো জিরো না কো মানে আইয়া মানে রেট কো কো হোমোরে সাবেন মুলি আতিঙিয়া না ইয়া এন রে কো বিটা না উসকে বাদ দো আবেন গাও তে বেন বিটা তো কো গোট
2: ইয়া গাও তেলি বিটা তো কো
1: আইয়া আইয়া ইয়া চিকে চি গোট রে কো এমাকান রে দো নি গাও হার কো আইন মানে ইদেন রে ডাক্তার হুজি ইনকা গেবেন ফোন আই
2: ইয়া ইনকা গেলি ফোন আই আইও ডাক্তার এন্ড জানকারি মিনা আছে না পান্ত কো খোলা কন্ড গুপিতে কো ইডি কো আনতে
1: আচ্ছা আচ্ছা আন্দো অন্ডো জুকা আয়ার পালিং কুলি বিনা এন্ড তো নেন মেরম কো আসল রে জান জিতান পুরে তকলিফ দবন হই চা কবে আটকারে তানা
2: কাগে মেরম কো আসল রে জান তকলিফ না তাক রে কালিং আটকারে তানা রে হাসো তো কইতে জুকা বাঁচাও করতে ইয়া তালিং এ মান রে ইনকাম না আছে আন্ডো ওগে উনাং লিং সাঙ্গে কর দো ইনকা গান্ডো লিং কাসি কর দো এসু বানিয়ে আলিং এ জান জিতান পয়সা টাকা রিয়া রিঙ্গে কাহ পা মেন্টালিং ওড় উন
1: পেনে এয়া নে আপন জাগার কে লেকে আগার কাসি কো পুরেনো কো সঙ্গি এন রদো মিনে দে তেরিও 10,000 তে জক চিতানো পাতে কো আকারিং ওর 10 টু লিকার রদো মেন রদো বেনা বেনা মানে 1 লাখ রুপি দো বা ও মেন্টে 5 টু রগে 10 পচে 50,000 দো বানতা মেন্টে কাজি হ্যালো 5 টু রো বা তনে দো 10 টু রদো বিনা 1 লাখ দো বা ও গিছে মেন রটে এন্ডো এনে নকান ওড়ু কা বেনতা আরমিনা মানে পুরে নো সঙ্গেলিং পুঞ্জি কর দো ঠিক ইউ মানতে
2: এই আলি নেন্ডে আজান নকরি চাকরি কো বান অর্থ নিনাতে কি আলি এস
1: মানে ওয়া দুয়ের নো আন কো পড়া হচ্ছে কত ইয়া মানে কেনা কত রং বেন ওড়ু কত
2: ইয়া মেন্ডো সারা মান লিকা গিচে নিকো না কো জান জিতা না সো তো কো কর তো নিকোলিং আকারি কো
1: ইয়া না নো আয়ার তে জুকা বিন দগাল ডাচি মানে আন্দি বালা করে নিকো গিলিং এমতা না নো পয়সা টাকা কো কাও বায়ান রদো নেকো আকারিং কেতে ওকন গরজ সমান কলিং আলিং লিং পুরো এতনা চি আলিং দরকার হতে আমি তবে মনে তান্তে
2: ইয়া ইনকা বেলিং ওড়ো ইতে
1: আচ্ছা আচ্ছা ইয়া এসো বড়িং এন ওড়ো কো বেন ওড়ো ইতে নেন রদো আবেন নেকো ᱡᱮᱵᱮᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱱᱮᱢᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱚᱞᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱤ ᱠᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱜᱟᱨ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱟᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱚᱠᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱚᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱥᱩᱭ ᱪᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱱ ᱫᱩᱠᱩ ᱠᱚᱭ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱮᱱ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟᱝ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱢᱮ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱹᱥᱩᱞᱮ ᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱟᱨᱟ ᱢᱚᱨᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱩᱱ ᱡᱚᱱᱚᱢᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱮᱸᱰᱮ ᱮᱸᱰᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱸᱜᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱫ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱤᱪᱷᱤ ᱛᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱢᱤᱭᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱚ ᱤᱪᱷᱤ ᱠᱤ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤ ᱮᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱤ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱛᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱠᱚ ᱚᱡᱚᱜ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱟᱜᱟᱞ ᱵᱟᱜᱟᱞ ᱞᱤᱧ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱮᱴᱟ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱚᱵᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱩᱥᱩ ᱤᱪᱷᱤ ᱛᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱜᱤ ᱛᱮ ᱟᱢᱤᱥᱮ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱵᱚᱞᱚᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱥᱮ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱵᱤᱴᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱱ ᱥᱩᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱠᱟ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱥᱩᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱨᱚᱝ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱥᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱩᱜᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱱᱮᱨᱮᱠᱟᱜᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱤᱱ ᱨᱤᱸᱜᱮᱣᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱨᱤᱸᱜᱮᱣᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱮ ᱟᱠᱚ ᱮᱱᱠᱚ ᱟᱠᱟᱨᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱠᱤᱱ ᱪᱮ ᱟᱠᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱛᱟᱹᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱵᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱠᱮ ᱟᱞᱟᱣᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱰᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱤᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱱᱟ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱛᱮ ᱮᱥᱯᱩᱨᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱮᱱ ᱤᱰᱤᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱠᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱠᱮ ᱮᱥᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱷᱚᱱᱱᱚᱵᱟᱫ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱱᱟᱵᱮᱱ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞᱮ ᱛᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱪᱮ ᱞᱟᱯᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱤᱱ ᱟᱭᱩᱢ ᱤᱪᱷᱤ ᱵᱤᱱᱟ ᱞᱤᱝ ᱮᱞᱟ ᱱᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱩᱠᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟ ᱪᱮ ᱟᱸᱫᱮᱨᱤᱭᱟ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱩᱱᱰᱩ ᱯᱟᱭᱨᱟ

श्रोताओं आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सीधा प्रसारण, जो कि भारत और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा है। तो चलिए हम सीधे प्रसारण के लिए आपको वहाँ लिए चलते हैं।

0: to bat first because it's a little hard condition because of the overcast conditions. But I think good we are batting first, and we wanted to, you know, challenge ourselves.
1: Coming out of that first game, a convincing win for you. What other things are you looking to better? Because you've got a couple of games against South Africa and Australia following this one, but eyes on the prize today.
0: I think the power play with bat and ball, I think that is something, you know, we are really looking forward, and hopefully today we'll bat positive in the power play, and while bowling, if we can get few wickets in the power play.
1: Coming here today, you mentioned conditions a little while ago and how they could be. What's going to be the key if the ball starts moving around here?
0: I think just sticking to your own plans and batting as deep as possible, because you know, these conditions, you can't, you know, start hitting from the first ball. You really need to spend some time on the wicket, and then you can take the game ahead. I think that is the key, and hopefully, you know, we'll bat well.
1: Any changes to your lineup for today?
0: Yes, we do have one change. Arundhati is resting today. Place of our Nandini Sharma is back.
1: All right, and just finally, against Netherlands, first time you're meeting them, no complacency.
0: Well, I know they are a very good side. Yeah, they are the one, you know, who is improving every single game. And hopefully, you know, we play our best cricket.
1: Yeah, I saw you guys practicing hard yesterday. All the very best to your team today.
0: Thank you so much.
1: Right, just a reminder of what has happened out here. The Netherlands, under gloomy skies, have won the toss, and they will be bowling first.
2: लीड्स में द नेदरलैंड्स की कप्तान बेबेटा दे लीड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया।
3: जी हाँ बिल्कुल, और क्या ये सही फैसला हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सरफेस को नहीं स्काई को भी देखा गया है। हमें बताएंगी मिस माथुर और वैशाली, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड डिसीजन टू बोल फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया?
4: मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नीदरलैंड के पास उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं, एंड देखा गया है कि हालांकि इस पिच पे सबसे ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को ही मिली हैं, एंड उन्होंने जो चेंज किया है वो है मीडियम पेसर का। एंड अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों पे पहले ही इस पिच के ऊपर वोमेंस टी ट्वेंटी ब्लास्ट 2026 में अभी हुआ है रिसेंटली, एंड इसमें 26 स्पिनर्स पे बोल्ड विकेट्स मिली है एंड 17 फास्ट बॉलर्स को मिली है। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को खिलाना ज्यादा बेटर था, बट यहाँ पे चेंज हुआ है तो बेटर हमारी इंडियन टीम के लिए बहुत बेटर है ये, और हमारी शेफाली वर्मा के लिए एक महत्वपूर्ण चांस है क्योंकि वो मीडियम पेसर को जैसे हिट करती है हम सब बखूबी जानते हैं। एंड उसके बाद जब हमारी जेमिमा आती है तो वो किसी को टिकने नहीं देती है बॉलर को, और वहाँ उसके बाद जो बारी संभालती है हमारी हरमनप्रीत कौर, तो वहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए भारतीय टीम की, क्योंकि ऊपर के ही बैटर आज इस लाइनअप को ख़त्म करके आ सकते हैं। और इस पिच पे खासियत और है, यहाँ का जो स्कोर अगर हम देखें तो 150 तक गया है।
3: राइट, बट वुड दैट बी इनफ इज अ बिगर क्वेश्चन नाउ दैट इंडिया बैटिंग फर्स्ट। कर्नल भूपराज जी, India has also made a change, but that's in the bowling department. Arundhati Reddy is giving way to Nandini Sharma to be in the side. The young Nandini Sharma getting World Cup experience would be absolutely magnificent to watch. Having said that, India batting first. Do you also have a number in mind looking at that surface?
5: Actually, the last match we won very easily. But there were two concerns, you know. The first, as far as the batting is concerned, Shefali didn't score runs, nor did Jemima.
3: Right.
5: So it is good that we are batting first. At least both of them will get a good hit and get some confidence back before the next match against South Africa.
3: Which is the bigger one?
5: Yeah, that is the main, you know, sort of knockout match. Whosoever wins that match goes into the semi-final. That's the way things stand now. Now, as far as the change in the bowling is concerned, a second concern in the last match was that the fast bowlers did not bowl well. So there is a change in the fast bowlers, but I would have expected three fast bowlers to play in this match, keeping the wicket in mind.
2: Absolutely. और इस बीच हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084-2342-1085। और इसके साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार। जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। एक तो तब्दीली हो चुकी है, नंदिनी आई है, WPL में काफी प्रभावित किया था। उसके अलावा शेफाली का ये जो साल रहा है, पिछले साल

0: कंसिस्टेंट थी T20s में, लेकिन इस साल कंसिस्टेंसी मिसिंग रही है.
1: ठीक है, बट शी इज अ प्रूवन कस्टमर, काफी रन्स बना चुकी है तो, एंड शी इज गॉट क्रेडिबिलिटी और बैकग्राउंड उनका जो है. क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप एक सीजन रन नहीं किया कि उसको बिठा दो, और ऐसा नहीं होता. सो कंसिस्टेंसी, द सिलेक्टर्स हैव शोन कंसिस्टेंसी, टीम मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंसी दिखाई, एंड देयर आर सो मेनी मैचेस और क्रिकेटर्स नीड टू बी बैक्ड, स्पेशली समबडी लाइक शेफाली. दैट्स व्हाई द टॉस इज इंपॉर्टेंट. इंडिया गोइंग टू बैट बिग टेस्ट, बट अगेन एज हरमनप्रीत सेड, यू हैव टू स्टिक टू योर विकेट एंड प्ले टू द कंडीशंस.
2: एब्सोल्युटली. And coming back to Vaishali here, now Nandini Sharma will be seen in the ball in hand a little later. You mentioned 150, and you also mentioned that the spinners are the ones who are doing the talking here. So gone are the days where if you talk about England, it's the pacers who raise their collar up?
3: Maybe, but I can say ki यहाँ पे सबसे मेन है दोनों टीमें आज पहला मुकाबला खेल रही है T20 का, एंड इस मुकाबले को हम सेकंड मैच की तरह नहीं, एक जीत के मुकाबले की तरफ देखते हुए नजर देख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों टीमें एक दूसरे के प्लेयर्स को नहीं जानती हैं. ओडीआई में खेला है उन्होंने, बट ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जितना स्कोर हमारे बैटर और पार्टनरशिप बनेगी वो हमारे आगे आने वाले मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ अफ्रीका टीम के साथ आने वाला है. तो यहाँ की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, शेफाली वर्मा का बल्ला चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जहमीमा का भी बल्ला चलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी स्मृति का चल रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप अगर बनती है तो ही रन आगे हमारे बढ़ते हैं और स्कोरबोर्ड पर दिखते हैं. तो ये अगर नंदिनी शर्मा की बात करें तो नंदिनी एक बहुत अच्छा चांस मिला है उनको खेलने का, और रेड्डी की जगह पे उनकी अगर उनकी लास्ट मैच की अगर फील्डिंग की बात करें और बॉलिंग की बात करें तो वो उतनी खास रही नहीं एज कम्पेयर टू आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड नंदिनी उस जगह को, उस स्थान को बखूबी निभाएंगी. और आज जिस तरह की पिच है तो देखा जाता है कि स्किट भी होता है इस पिच पे, तो वो चीज़ देखने को भी मिल सकती है नंदिनी शर्मा से. एंड उसके साथ हमारी जो स्पिनर्स है वो लाइन जो है हमारे स्पिनर्स का वो काफी अच्छा है, बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है, तो ये एक बेनिफिट है हमारी इंडियन टीम के लिए.
0: शेफाली ने पिछले मुकाबले में शुरुआत एक छक्के के साथ की थी, 3 डॉट बॉल खेला और उसके बाद अपना विकेट गवा दिया. हरमनप्रीत ने टॉस पे कहा था कि विकेट ऐसा है कि वक्त दे सकते हैं, विकेट को समझ के बड़े शॉट्स फिर खेलने की कोशिश कर सकते हैं. क्या शेफाली की तरफ से वो अप्रोच आप देखते हैं?
4: देखिए, शेफाली की गेम ऐसी है कि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगर थोड़ा टिक के खेले तो शी कैन गेट ए वेरी बिग स्कोर टुडे.
0: जी बिल्कुल. और इस बीच हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो जल्दी ही बात करते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. एंड वी टॉक्ड अबाउट स्मृति मंधाना. इनफैक्ट इन द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट सौमित्रो, स्मृति लुक लाइक स्ट्रगलिंग, बट स्मृति इज नेवर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, बिकॉज वेन एवर इट्स बिग गेम्स स्मृति ब्रिंग्स हर ए गेम.
1: 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सन्स इन द वर्ल्ड, ओनली 2 क्रिकेटर्स टू फाइंड अ प्लेस इन टाइम मैगजीन. स्मृति मंधाना कैन नेवर गो रॉन्ग, राइट? अभी अभी आरसीबी को उसने टूर्नामेंट चैंपियन किया, एक बार नहीं दो बार किया, 17 सेंचुरीज, यू नेवर क्वेश्चन हर क्रेडिबिलिटी, राइट? पेडिग्री, क्रेडिबिलिटी, एंड इवन लास्ट मैच शी गॉट रन्स, राइट? शी इज नॉट दैट शी इज आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि शी इज अ परफेक्ट बैट्समैन टू टेक द इनिंग्स फॉरवर्ड. और देखिए, शेफाली वर्मा को तो हम बात कर रहे हैं कि उनकी जरूरत है उनको रन बनाना, कंडीशंस को फेस करना. जैसे कर्नल सेड, यू कांट हिट अ 6 इन एवरी बॉल, you have to play the ball to its merit. Aur dekhiye, I think the Dutch have done the right thing by choosing an extra pacer. So they are going to be tested, and it's good for us, good for India, because before you need this kind of tests, you need this kind of competition to play the bigger matches.
2: Indeed. And Mr. Bhupendra, Colonel Bhupendra, we were mentioning that Yastika is also in now. The fact that Yastika is in as a batter, even though Richa might be seen with the gloves rather than Yastika behind the wickets, does it also tell you that India is looking at the next opponent too, which is South Africa? I want to be better prepared for that, because Bharti Fulmali got just one opportunity but wasn't enough on that particular occasion. Little harsh on her, or you feel Yastika is the right move ahead because of more experience, given that there are bigger games coming up?
4: Look, if you compare Bharti and Yastika, what you have to see is what position they are going to play. Yastika is playing at number 3. And if we feel that she can fit into number 3, then it is a good idea to play Yastika Bhatia, because she has these shots to play in the power play to hit over right. the fielders, and she can get the runs. But if she have to, if she has to play at number 5 or number 6, it is better to play Bharti, because she is actually tuned to play at 5 and 6.
2: Right, so it depends completely on India's approach.
4: As to where the position they are going to play.
2: देखते हैं एंड वक्त हो चुका है एक और कॉलर लेने का जो इंतजार कर रहे हैं जी हाँ नमस्कार बताइए विपिन जी अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो पहले पहले बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए एंड बहुत ही सही सवाल था अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो मिस माथुर आप बताइए कितना स्कोर हो सकता है
3: अगर शेफाली वर्मा चल जाती है तो 180 प्लस स्कोर जा सकता है इजिली क्योंकि शेफाली का बल्ला जब चलता है तो वो धूम मचा ही देता है और उसके साथ अगर मंदना भी जिस तरह से वो लय में दिखती है दोनों अगर चलते हैं तो हो सकता है 200 प्लस भी जा सकता है जो स्कोर तो इट डिपेंड कि शेफाली वर्मा को आज पेशेंस के साथ खेलना होगा हर बॉल को हिट करने के चक्कर में ना जाके हर बॉल को हर बॉलर की बॉलिंग को देखना है कि किस वे में खेलना है
2: right.
3: क्योंकि अगर वो प्लेयर्स को देख के हिट करती है मोस्टली देखा गया है कि वो हाथ में मारने के चक्कर में वो बाउंड्री पे कहीं ना कहीं कैच दे ही देती हैं mm-hmm. उससे आज उनको बच के चलना है और फील्डर्स को देख के मारना है हिट
2: So ladies and gentlemen, you heard it from the opening batter herself then. Now Kranti Gaur, एक ही ओवर मिला था पिछली बार 14 रन उन्होंने खर्च किए थे लेकिन आप देखें तो विपक्षी टीम भी पूरे 20 ओवर नहीं खेली थी 17 में सिमट गई थी पाकिस्तान इफ यू टॉक अबाउट इट सो क्रांति डू वी हैव बिग इनफ अ सैंपल साइज टू से दैट शी इज आउट ऑफ फॉर्म और शी नीड्स अ लिटिल बिट मोर टाइम एंड रिदम एज एनी फास्ट बॉलर वुड वांट
1: कंडीशंस इन हेडिंगली आर जस्ट परफेक्ट फॉर हर
2: ओके
1: ओवरकास्ट कंडीशंस व्हाट एल्स कैन अ फास्ट बॉलर वांट एंड इफ शी कैनॉट यूटिलाइज दिस कंडीशंस एंड द ऑपोजिशन इज Netherlands, not Australia or South Africa. Today right. is the day to get some wickets and get the confidence back.
0: And talking about gaining confidence back, Colonel, we saw in the previous game, Richa Ghosh was explosive. In fact, she too had been struggling for form heading into the tournament. Got a half century in the warm-up against England and then subsequently that knock of 34.
4: Yeah, she played really well. Actually, if you see in the last 6-7 matches that she's played, she's got about 3-4 overs to play in all these matches and the only time she got a chance to play 10 overs she got a 50 I think she got 66 in that so she's playing very well and if she gets a chance to play today if her batting comes I'm sure she'll do well
2: all right and what about Jemmy who has the experience of playing in Leeds will that be of great effort a great experience The fact that you've played in Leeds, does it help you as a batter sometimes?
4: Oh, yes, it does help you. And I'm sure she'll play well today. Only thing is that, you know, the first 5-6 runs that you score, that you have to be careful. Okay. If you start hitting from the first ball, there are chances that you may get out. But what you have to see is your opposition. Netherlands has lost the last 6 matches that they've played. And... Right. They have got only one professional player. Rest are all club cricketers in a way. So the opposition is not that strong. So I suppose we should do well today.
0: Sumitro,
1: I want to add something about the Dutch.
0: Yeah.
1: Nobody is a professional. They play sport as a way of life. And even their hockey, even the women's Olympic champions, they come and play. You know, the stress levels in sport is so less that they come to play and enjoy a sport. That is why they have qualified for this World Cup, the first time they did. And they beat some big teams like Thailand and Scotland who have played World Cups before. So they know how to enjoy a sport. They don't mind losing, but they have set small targets. If you hear their Scottish coach, Neil McRae, what is he saying? He's saying we're setting small targets. Not big targets. They're not aspiring to beat India. They're planning to match India. Their aspiration is to not finish in the semi-final. Their aspiration is to finish top 8 mein hum qualify karenge. Mm-hmm. To next World Cup mein hum automatic qualify karenge. So they have set reasonable targets, achievable targets, and that's the beauty of these Dutch players. All these players who come to play, they don't put unnecessary stress ki isko out karna hai, isko run banana hai, aisa nahi hai. They come to enjoy, and that's the beauty of these teams.
2: And sometimes being an underdog does free you from all
1: absolutely
2: the other pressure that you might carry, absolutely. Isn't it? Isn't it like the car headlights then, Megha? It just shows you the next couple of feet, but that's what you need to see in order to reach a destination eventually.
1: And no high beam.
2: No high beam. Yes, no high beam.
0: Absolutely. एक और बात जो वो लगातार कह रहे हैं कि इंडियन टीम से इंस्पायर हुई है उनकी ये जर्नी और काफी सारी महिला क्रिकेटर्स के लिए वो खुद इंस्पिरेशन के तौर पर आती हैं. अब अगर हम बात करें वापस भारतीय टीम की और आज के 11 की, दीप्ति शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी में योगदान दिया, छोटा कैमियो ही खेला लेकिन ऋचा घोष के साथ वैशाली वो वापस साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी और उसके बाद तो 5 विकेट निकाले.
3: जी बिल्कुल, क्योंकि दीप्ति शर्मा एक सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम के अंदर हरमन के साथ, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बहुत जरूरी होता है टीम के साथ, और उन्होंने वो दिखाया है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बॉलिंग किस वे में होती है. एंड उसके साथ अगर बात करूँ उनकी दूसरी विकेट की, तो उन्होंने जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में उन्होंने स्वीप स्क्वेयर लेग रखा था और वहाँ पर स्मृति मंदना ने कैच किया था, दैट वॉज मतलब जो एक थॉट होता है वो उनका वो कम्प्लीट हुआ वहाँ पर, एंड वो माइंड में जो सोचती हैं वैसा वो अकॉर्डिंग टू फील्ड लगाती है और वही बॉल डालती है. ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर की खासियत है जो हमने लास्ट मैच में देखा भी है, और मैं होप करूंगी कि आज के मैच में भी 5 नहीं उससे ज्यादा विकेट ले. एंड उसके साथ साथ उनकी अगर बैटिंग की बात करें, उनका जो हमने इंटरव्यू सुना तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारे जो कोच हैं उन्होंने बोला कि आपके लिए 5th नंबर ही अलाउ है बैटिंग का, एंड शी सेड मैं वहां पे रेडी हूँ, फिट हूँ वहां पे मैं खेलने के लिए, एंड उन्होंने वो शो भी किया.
0: शुरुआत की थी गुलफिरोजा के विकेट के साथ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश उनके तरफ से, और उसके बाद आलिया को भी आउट किया था अपने अगले ही ओवर में. टॉकिंग अबाउट वॉकिंग दी टॉक, हरमनप्रीत कौर पिछले मुकाबले में जब पारी थोड़ी लड़खड़ाती भी नजर आ रही थी, 2 जल्दी विकेट गिर गए थे, तब पारी को संभाला स्मृति मंदाना के साथ. 91 रन की साझेदारी हुई थी भूप वहां पर, और रन बॉल ही खेल रही थी लेकिन उनका उस वक्त पे टिकना महत्वपूर्ण था.
4: या दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक विकेट और वहां गिर जाती तो हमारी टीम कुछ ज्यादा ही अंडर प्रेशर हो जाती, बट दोनों जोन से हैं बिग मैच प्लेयर्स हैं और उन्होंने सिचुएशन को संभाला और अच्छा खेला. 91 रन की पार्टनरशिप और उसके बाद फिर से 2-3 विकेट जल्दी गिरे, बट ऋचा घोष ने पूरी इनिंग फिर दोबारा संभाली और हमारे को एक बड़ा टारगेट की तरफ ले गई.
2: जी, और बात करें अगर स्मृति मंदना की तो फिर हल्की सी जो हलचल उठती है ना इधर उधर से, लोग बोलते जरूर हैं कि मे बी शी गेट्स फाउंड आउट व्हेन देयर इज एन ऑफ स्पिनर इन ऑपरेशन. क्या आप भी ऐसा देखते हैं कि सीगर्स हो गई नेदरलैंड्स की तरफ से या फिर ओवरडाइक हो गई, कहीं ना कहीं एक चुनौती प्रदान कर सकती हैं?
1: क्यों नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल. All you need are 10 good balls or 10 bad shots. So that, and in T20, the margin of error बहुत ही कम है. आपको तो चाहिए एक ही बॉल आउट करने के लिए, एंड व्हाई नॉट, इट्स गुड टू सी इंडियंस अंडर प्रेशर. अगर जितना प्रेशर डालिएगा नेक्स्ट मैच के लिए उतना प्रिपरेशन बेटर होगा. सी क्रिकेट इज आफ्टर ऑल अ माइंड गेम, यू कांट बी कॉम्प्लेसेंट, यू कांट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एंड यू नो आई ऑलवेज से टीम्स लाइक नेदरलैंड्स लाइक द बनाना स्किन, की केला का छिलका आप कभी भी फिसल सकते हैं. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि केप वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, कुछ भी पॉसिबल है स्पोर्ट में.
4: लुक, दिस विकेट इज स्लाइटली ग्रीनिश, एंड व्हेन ए स्पिनर इज बॉलिंग इन द ओपनिंग ओवर्स द बॉल मे नॉट टर्न, इट विल गो, इट विल स्किड थ्रू, देयर इज अ चांस दैट इट कैन टेक ए आउटर एज एंड पर्सन कैन गेट कॉट इन द स्लिप्स.
3: एंड अभी आपने बात की रोबिन की, अभी मैंने जो देखा है रोबिन काफी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, ऑफ स्पिन वो डालती हैं और वो काफी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि इस मैच में भी वो ना बॉल डाले, क्योंकि एक रिदम में होना बहुत जरूरी होता है बॉलर के लिए, और वो अभी तक वो रिदम दिखा नहीं रहा है क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम से बॉलिंग में नहीं है.
0: और यहाँ से पावर प्ले में क्या रणनीति निकल कर उतर सकती है भारत की टीम भूप, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ग्रीन विकेट है, कप्तान ने कह दिया है कि थोड़ा संभल के समझ के खेलना होगा.
4: लुक, वी हैव टू बी केयरफुल इन द फर्स्ट 1 or 2 ओवर्स एंड नॉट गो टोटली डिफेंसिव, ट्राई टू स्कोर रन्स and put up a big score in the power play.
2: And do you have a number in mind? The big score?
4: Yeah, it'll be over 60.
2: Over 60?
4: Yeah.
2: And this is

0: एक्सपीरियंस, जैसे आपने बोला कि हरमनप्रीत कैसे पकड़ के खेला, कैसे इफ दे डोंट डू, अ पर्सन इज गोइंग टू प्ले 200 matches, international matches, if that person is not going to apply or herself as a skipper, then who will?
1: Right. Right. You want to lead from the front.
0: Yes. So application has to be the buzzword, the keyword, and the Dutch will definitely come out with the plan.
1: और इस ground में अगर हम experience की बात करें तो Callis उनकी तरफ से कई matches खेल चुके हैं इसी ground पे. So she would understand the angles better. आपको लगता है उसमें जरूर मदद करेंगी वो कप्तान की कि फील्डर को यहाँ प्लेस कीजिएगा, यहाँ रन्स भी बच सकते हैं, कैचेस भी बन सकते हैं.
0: Definitely. See, English conditions are very different from Indian conditions or elsewhere. Ball will swing and it's overcast. It's typically.
2: घर घर तक पहुँचाएं आपका विज्ञापन. आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए.
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16-18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
8: PLI है ना?
9: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का

0: भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
1: श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। सुबह 9 बजे से विधानसभा में शुरू होगा मतदान, शाम में घोषित होंगे नतीजे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के धनवार में किया बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। कहा, ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास मिलेगी विश्व स्तरीय शिक्षा। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल ने देश में 21वां स्थान और राज्य में हासिल किया दूसरा स्थान। मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार। राज्य में मॉनसून के बावजूद जून में 57% कम बारिश। गढ़वा और चतरा बने सूखे जैसे हालात में। मौसम विभाग ने कल से भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का शानदार आगाज। 5 देशों के खिलाड़ी दिखा रहे हैं दम। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। क्रॉस वोटिंग और तकनीकी गलतियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। वहीं एनडीए विधायक दल भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने वाली इस योजना से अब तक 15 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गिरिडीह के धनवार को आज नई शैक्षणिक पहचान मिली है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संस्थान के खुलने से स्थानीय और ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय शिक्षा मिल सकेगी।
1: केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में 1334 है, उसमें से एक आज राजधनवार में भी शुभारंभ हुआ है। फिर थोड़े दिन में बरकट्ठा में भी एक स्वीकृति मिली है, बरकट्ठा में भी केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ होगा।
0: रांची आरएसएस कार्यालय हमले पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने इसे राष्ट्रविरोधी ताकतों की साजिश करार दिया है।
2: आरएसएस कार्यालय हमला किया गया, वह राष्ट्र भक्तों के आत्मा पर प्रहार करने वाला घटना है और यहाँ की शासन व्यवस्था को चुनौती देने वाला। यहाँ की राज्य की शासन व्यवस्था हेमंत सोरेन की सरकार निकम्मी सरकार है और निकम्मी सरकार से अपेक्षा करना मूर्खता है, इसलिए इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए।
0: राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल को देश में 21वां और झारखंड में दूसरा स्थान मिला है। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में स्कूल ने 93.30 स्कोर हासिल किया। विजेता के रूप में विद्यालय को राष्ट्रीय मान्यता के साथ 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रभारी प्रधान अध्यापिका रूपा वर्मा ने कहा, यह ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे छात्र छात्राओं और शिक्षकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है।
3: पूरे भारत में कुल 200 विद्यालयों का इस कार्यक्रम के तहत चयन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय का स्थान 21वां है और इस उपलब्धि के लिए हम लोग साल भर से प्रयास करते आ रहे थे। विद्यालय को जो है वो भारत सरकार के द्वारा मानक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और इसके साथ ही 1 लाख की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी।
0: राज्य का पलास ब्रांड आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धूम मचा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बिरसा हरित ग्राम योजना से राज्य के 2 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार मिला है। सरकार के अनुसार इस सीजन में करीब 52,000 एकड़ बागानों से 50,000 मीट्रिक टन आम का उत्पादन का अनुमान है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
5: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
7: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
6: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखे झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 405 करोड़ रुपए की सिग्नलिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 32 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इससे तकनीकी खामियां दूर होंगी और ट्रेनों का परिचालन अधिक सुरक्षित होगा। झारखंड के स्टेट ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष समारोह में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही श्री दत्ता देश के 7 शीर्ष निर्वाचन कोर एक्सपर्ट्स में शामिल हो गए हैं। रांची में 27 जून को राज्य स्तरीय डिजिटल क्रिएटर्स मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से मतदाता जागरूकता बढ़ाना है। इस मीट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो क्रिएटर्स हिस्सा लेंगे। इच्छुक प्रतिभागी 25 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य की पारंपरिक नचनी नृत्यांगना बूटनी देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बुंडू स्थित उनके घर जाकर उन्हें लोक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृतज्ञता पूर्वक सम्मानित किया। उनके साथ उनकी बहन सोमवारी देवी को भी यह संयुक्त पुरस्कार मिलेगा। श्री सेठ ने कहा कि यह झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान है।
8: संगीत नाटक अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कला क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इच्छा होती कि भाई हम कला क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, पूरा जीवन दे दिया, तो भारत सरकार का ये पुरस्कार अद्भुत है।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून के आगमन के बावजूद जून महीने में सामान्य से 57% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा और चतरा में सूखे जैसे हालात हैं, जबकि डाल्टनगंज में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने कल से राज्य के पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में गरज के साथ बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसके कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप

0: is Vander Warning. Around the biggest balls, and she drives and misses and through to the keeper. First time the ball is beaten the bars, beaten the bat rather. And a long over again, Vander Warning has bowled 2 overs, none for 25. And after 9 overs, it's none for 85. And 11 more overs to come off of this. I think just looking at the clock, you know, 45 minutes ago, they bowled just 9 overs, which means it could be, you know, penalised towards the later half of the game. But I feel this is one game where 200 looks there, isn't it?
1: जी जिस तरह से भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही है निश्चित रूप से एक उम्मीद बन रही है कि भारत की ये महिला खिलाड़ी अपनी इस पारी को बहुत आगे तक ले जाएंगी लेंग एक बार फिर से लेग ब्रेक गेंदबाज और ओवर पिच गेंद थी उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया चार रन के लिए
2: ये लगा आभा का चौका
1: यशवंत चार्ज जो बहुत ही हमारे स्कोरर हैं अनुभवी स्कोरर लेग साइड में ये पहला चौका लगा है ये बताया है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी और 89 रन बगैर किसी नुकसान के 9 ओवर की समाप्ति के बाद ये 10वां ओवर चल रहा है डी लेंज इस समय गेंदबाजी कर रही है फुल टॉस गेंद थी गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फिर से चार रन के लिए
2: ये लगा आभा का चौका
1: डी लेंगे अब जाके जमीन पर अपने हाथ रगड़ रही हैं गोया की गेंद उनके हाथ से छूटी है कुछ नमी सी है हाथ में और इस बीच दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं डी लेंगे और देखना है कि वो अपनी गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाजों को कोई प्रभावित कर पाती हैं या नहीं इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल चल रहा है भारत की रनों की संख्या बढ़ती हुई 93 पर जा पहुंची है और डी लेंगे एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से कट किया था पॉइंट की तरफ फील्डर के हाथ में और दोनों खिलाड़ी हालांकि क्रीज से बाहर निकल चुके थे और नॉन स्ट्राइक एंड पर जब तक की गेंद पहुंचती और गेंदबाज उसको विकेट्स पे लगाती दोनों ही बैटर सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी बहुत आगे निकल चुकी थी स्मृति मंधना बहुत ही किस्मत वाली रही कि इससे थ्रो बहुत धीमा आया और अन्यथा भारत को एक नुकसान उठाना पड़ सकता था बहुत महत्वपूर्ण विकेट होता इस बीच ओवर पिच गेंद थी ड्राइव किया कवर्स की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है अब जाके गेंद को फील्ड किया गया लेकिन तब तक एक रन और शैफाली वर्मा ने अपने खाते में जोड़ लिया है और भारत का स्कोर निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए और जिस तरह सा का पिछली गेंद पर एक मौका था नीदरलैंड्स के लिए स्मृति मंधाना को रनआउट करने के लिए सैफाली वर्मा 48 रन पर जा पहुंची हैं 32 गेंदों का सामना किया है 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रही हैं इस समय स्मृति 32 रन के स्कोर पर खेल रही हैं जो पहले आगे थी अब सैफाली से थोड़ा रनों के मामले में पीछे आ चुकी हैं लेकिन स्मृति मंधाना जिस तरह से खेल रही हैं इस बार ये गेंद थी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी लेकिन जैसे ही देखा गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद को ड्राइव किया था वाइड मिडऑन की तरफ एक रन अपने खाते में जोड़ा और उनका स्कोर हो गया 33 रन 28 गेंदों का सामना किया है स्मृति मंधाना ने और शैफाली खेल रही है इस समय 48 के स्कोर पर 2 रन अगर वो और बना लेती हैं तो ये एक अर्धशतक उनको एक नई ऊर्जा भी देगा इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ड्राइव किया इसे मिड ऑफ की तरफ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद एक रन ही मिलेगा और भारत का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर जा पहुंचा है 96 रन बगैर किसी नुकसान के
0: So 96 from 10 overs, India really in firm control of this game in the first half and 200 probably I feel could be there. We're just talking about Netherlands as a country, a very small country with 1.8 crore population and Dutch is the language which got a bit of a German mix into that and all these years their first last main football, I keep saying about that but these people have done something a little different. The men's team also does a good job in cricket, so it's just a question of time before we see them play international ODIs and Test matches. Long way to go. And Manoj asked that the situation comes with some kind of a record to keep us heavily engaged. Highest score in power play for India in World Cup, 59 in this game at Leeds, 59 for 3 versus Australia in Cape Town in 2023 semi-final, 54 for 2 versus Bangladesh in Perth 20. And 51 for no loss against Bangladesh in Bengaluru 2016. Vander Rad bowls beautifully driven, beats a fielder at cover. Diving save by Frederick, And I tell you, it was a wonderful save indeed, and appreciated by the whole team. Was it a catch? I'm not sure whether it carried or not, but we'll just pick it up. And Shefali has got to a 50. That's what everyone wanted. The whole country has been chasing about Shefali's form. And finally, she found some form today. 50 from 34. And acknowledged by her batting partner, Smriti Mandhana. It was driven officially. I tell you, that was a catch. That will go in as a dropped effort. And it was in the air, and unfortunately she couldn't grab it with both hands. Frederick is pushed the fielder, and she races her bat. Shefali, 50, not out. So India is going on well now, and they are 97. And Shefali's runs predominantly have come on the offside, 28 of them, and balance on the onside. So that's been the mix. Vandenrad had a long over. And now she is in her second over. None for 11 from 1.1. A worried looking captain standing behind the stumps. As next ball, Shefali comes and lifts it high over long on. This is running down towards the fence. No, it won't go for four. Misfield there, and she recovers well enough. And they settle for a single. So Smriti on 34 from 29. And Shefali 50 from 34. 98 on the ball, 11th over. And that strike rate of Shefali looks very healthy. 147 is the strike rate of her. And we don't see the centurion so far, right, in this World Cup? I think so. We don't have a centurion in this World Cup. Vandenrad. We'll give you bowling analysis also, along with the extras they have conceded in a while. Shefali with high back lift now faces the next ball. Lay on the wicket, she bowls. She beats him. Oh, I tell you, that is a great delivery. I don't know how it missed the outside edge of the bat. That came from a blind spot. Beautifully bowled by Vandenrad, and it was not far away from the edge. It was an amazing angle. She's comprehensively beaten all ends up. That is a beauty, I tell you. One of the finest deliveries of this game so far, and that's been done by Vandenrad. Up she comes now, round the wicket and bowls short. She pulls away, wide of mid on. This is running down towards the fence, and won't go for four. The fielder there patrolling wideish mid on sends in the return. Was it the 100 is up? Not sure. But Shefali's 51 from 36 with the help of 9 fours. No sixes in this game so far. In fact, the last game that Netherlands played against Bangladesh, there was no six in that from the Bangladesh side. From Netherlands side. It was a closely contested game. And we've seen some surprises happening. Australia field is a pretty strong team. Next ball. She comes down the track. Shefali hits it high. It gets a thick outside edge and it's running down towards deep backward point. Just a single. The 100 is up, and the 100 is a fine opening partnership for the first wicket. Undefeated till now. Smriti Mandhana 35 from 30, and Shefali's been the dominant partner. 51 from 36. 10.5 overs. One to go. It's been a good over so far. Four came from the first five deliveries. Shefali just turning an inch outside the batting crease now. Five had been inside the second. Next ball, she gets one. Pitched up, driven beautifully between cover and mid-off. This will race away for four.
2: Ye laga, abha ka choka.
0: For 265 boundaries in this World Cup so far, we all thought that would end up as a good error. Four came from the first five deliveries, and then the last one was pitched up and driven handsomely through the mid-off and cover fence for four. So India really playing well. They're in a very strong position. It won't be easy for the Dutch girls to come and chase anything in excess of 180. And there's something there for good fast bowlers. The Netherlands team has never found the rhythm. We'll give you the bowling analysis in a while, as I keep saying. And the most busiest month for all sports lads all across the globe. It's been a month to keep your ears engaged with radio. So only we'll be bringing all the matches of the Indian games and this T20 World Cup played in England. And the proceedings so far, Goswami, has been extremely good for India.
3: जी बिल्कुल जिस तरह से भारतीय बैटर्स यहाँ पर अपना हुनर दिखा रहे हैं और शेफ अली वर्मा जिनको काफी दिनों से इंतजार था ये गेंद अगली गेंद नया ओवर का पहला गेंद और उठा दिया है इसे एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए
2: ये लगा आभा का चौका
3: इस समय भारत का स्कोर 108 रन बगैर किसी नुकसान के एक शतकीय साझेदारी दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स ने की है स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा बहुत मजबूत इरादों के साथ खेल रहे हैं सीगर से एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गया।

0: समय पूरा हुआ है और रन रेट 10 रन प्रति ओवर की, इस तरह में बहुत ही मजबूत रगड़े के साथ भारतीय टीम अपना स्कोर बढ़ाती जा रही है। क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं यहां पर ताश के पत्तों की तरह से पारी बिखर जाती है और कहीं रनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। एकमात्र छक्का भी इस मैदान पे लगा है और इस बीच ये देखना है कि गेंद 115 रन पर भारत को पहला झटका लगा है। शैफाली वर्मा आउट होकर वापस पेवेलियन जा रही हैं। जिस तरह से गेंद को फ्लाइट किया था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को उछाल के मारा था और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार इस गेंद को बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई फील्डर ने अपने हाथ में लिया और ये पहला विकेट भारत का गिर चुका है। सैफ अली वर्मा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रही थी और उनको ज्वेलिंग ने कैच किया। सीगर्स की गेंद पर 55 रन बनाए, 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया और विश्व कप में ये पहला अर्धशतक है। मनोज कुमार हमारे स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं कुल मिलाकर 33वां T20 15 का वह मैच है, 33वां मैच है जिसमें इन्होंने ये विश्व कप में अर्धशतक जमाने का पहली बार अवसर पाया है। मनोज कुमार स्टेटिस्टिशियन बता रहे हैं। तो भारत को ये पहली विफलता कह सकते हैं भारत के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से शैफ अली वर्मा खेल रही थी लेकिन एक गेंद पर उन्होंने शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को हवा में उछाला था और बिल्कुल सीमा रेखा के पास जाकर गेंद पहुंची थी और ज्वेलिंग वहां पर खड़ी थी। सीजर्स को एक सफलता मिली इस अगली गेंद, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया उसे और बेहतरीन तरीके से कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 15 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं लेकिन जो सुखद बात है वो ये है कि इसमें नीदरलैंड को सफलता एक मिली है विकेट लेने की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए उनकी गेंदबाज हरीश बीसी गेंद को ड्राइव किया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। 119 रन अभी भी स्कोर है और जेमी माह रॉड्रिक्स इस समय आई हैं नए बल्लेबाज के रूप में। एक मिनट की गेंद को ड्राइव किया और गेंद जा रही है मिड ऑन बाउंड्री की तरफ लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, ज्वेलिंग ही खड़ी थी, ज्वेलिंग ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया लेकिन तब तक भारत के पास मौका था एक रन लेने का। 12 ओवर की समाप्ति पर 121 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर।
2: Well, I was just looking at the celebrations after the fall of Shefali's former wicket. Every Dutch girl, they got absolutely excited seeing the exit of Shefali and they were very happy because they got the first breakthrough. But I'm sure when the Netherlands team heads back to their home country, I'm sure they're going to remember this experience for a long time. And we've got to have the bowling analysis, I keep saying, which I missed in the last few minutes. Zwelling, 3 overs for 22, Sages. 2 overs for 26 and she got a wicket too in the last over. Warning, 2 overs 25. Vanderrad, 2 overs for 16 and Nylande, 2 overs, none for 16. One wicket taker so far and no change in bowling. We're going to see another leg spin bowler in action. She bowled 1 over before this and I was surprised that she was taken away. It is Silver Seizure. She's going to bowl around the wicket, over the wicket with a round arm action. Short climbs on to the batswoman and it's pulled away down to its deep. Score like a juggle with the ball, in fact, by Vander Wunning, and finally she sends the return back to the wicketkeeper. 1 for 122 from 12.1 overs, and India heading towards a massive score. I think she had a nasty bounce coming up because of the, there was a hole dug over there, maybe a yard or two in front of her, and it just bounced on her, and luckily it was a nasty one. So Jemima. She's coming now, ball, face to face ball. She gets a thick outside edge and trying to work the ball on the offside, daps it in front of back for the square, no run. And India remain at 1 for 122. Mandana 47 from 34, and Jemima 6 from 3. And we're seeing a large contingent of Indian followers and a lot of followers from the Netherlands too. Sieges with a round arm action comes and bowls and it's worked away on the onside and they probably will settle for a single, not more than that. I feel Sieges has been the best of these bowlers in this Dutch side.

0: know, it's very tough to read her action, isn't it? When I look at someone like the other, spinner, which is Heath Sieges, she remembers me of Paul Adams from South Africa. She's got that kind of an action. So it's that, you know, I'm sure with a lot of data and video available on the Indian team, the Think Time team would have done a lot of work in studying their action and playing them. But some of the action's very tough to read as Malinga, isn't it? With that slinging action. And you see a lot of this coming up in the IPL game. Next ball, Sean. And she pulls it away on the onside down towards deep mid-wicket. Just a single. Mandana up to 48 from 35. It's one for 124. I probably felt Richa Go should have been sent in now because she's another dominating, you know, right-hander. And I would love to see her, you know. She can score this one so quickly. She's a powerful lady indeed. And a very strong match winner for many, many matches for India. Next ball, short. Hammered away on the onside out towards deep mid-wicket. And it's one of those irritating pace for any batter to bat on. So they're just coming on to you very slowly, half crackers, and you find it very tough to hit it or smash it to any part of the ground. And single pushes India up to 125. A run rate almost touching 10 and over. Well, they're doing well now. So we're just looking at the centurion. There's been one centurion in this game. One for 120. Next ball, Smithy comes down, gets it high over extra court. This is running down towards the fence. Will it go for four? And, oh, that's a great save indeed. She'll get a couple of runs for sure. And she gets to her 15 indeed. 50 from 36 as the Indian team stands up in the dugout, appreciating another half century. 35-50. Manoj Kumar's decision is bang on. 30 never gone. One for 127.
1: स्मृति ईरानी का ये बहुत स्मृति मंधाना का बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस समय 50 रन वो बना चुकी हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना का एक विशिष्ट स्थान है उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और जिस तरह से वो खेल रही हैं आज लगता है कि वो काफ़ी बड़ा स्कोर करने की ओर बढ़ रही हैं हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है यहाँ किसी भी पल परिस्थितियाँ बदल जाती हैं शैफाली वर्मा बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रही थी लेकिन एक ही गेंद आउट होने के लिए काफ़ी होती है और इस तरह शैफाली ने अर्धशतक जमाया भारतीय के इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आज बहुत अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा किया एक ऐसा मजबूत आधार बना दिया है कि आने वाली टीम के खिलाड़ी इसको और अधिक मजबूत कर सकेंगे 127 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर स्मृति खेल रही है 50 पर जेमिमा रॉड्रिक्स खेल रही हैं 8 रन के स्कोर पर 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है ओवर डिस्क अब गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं दाएं हाथ की इनकी गेंद स्टंप के बाहर गेंद को कट किया था कवर और कवर पॉइंट की तरफ पर इस समय फील्डर के हाथ में जाती तब तक बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और भारत का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 129 रन एक विकेट के नुकसान पर ओवर डिस्क इस समय गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रही है स्पिन गेंदबाजी पर ज्यादा भरोसा नीदरलैंड की टीम को नीदरलैंड्स की टीम जो कि पहली बार विश्व कप में अपना पदार्पण किया है नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया इस बीच गेंद थोड़ी हवा में थी मिड ऑन की तरफ लेकिन फील्डर बहुत पीछे खड़ी थी रन लेने का मौका दिया पूरा उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को स्मृति का स्कोर 50 रन अभी भी 36 गेंदें उन्होंने खेली हैं और जेमिमा का स्कोर हो गया 11 रन इस एक रन के साथ 130 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर 9.75 के औसत से रन आ रहे हैं और काफ़ी मजबूत कहा जा सकता है एक आधार भारत ने रख दिया है और लगता है कि भारत नीदरलैंड्स के विरुद्ध काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ा स्कोर करने की ओर कदम बढ़ा रही है भारतीय महिला टीम और देखना है कि किस तरह से ये राउंड द विकेट हमारे आते हुए गेंद को ड्राइव किया है हवा में थी गेंद फील्डर के पास पहले टप्पे के साथ आई और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए एक ही रन मिलेगा 51 रन स्मृति मंधाना का स्कोर हो गया इसके साथ ही 131 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर हेडिंग लेके इस क्रिकेट ग्राउंड में जहां 17,000 की क्षमता है दर्शक क्षमता काफी बड़ी संख्या में लोग और यहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं इस बीच शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद गेंद को लपेट के मारा है ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद को मारा है ऑन साइड में जेमिमा ने लेकिन एक ही रन उनको मिलेगा 12 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया 132 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर 13.4 ओवर्स का खेल हो चुका है और एक बार फिर से उन श्रोताओं को बताएं कि भारत ने जिस गति से रन बनाए हैं 9.66 रन

0: 7-4। तो T20 विश्व कप में आज ये दोनों ही टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मिड विकेट की तरफ ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर जो कि कप्तान ही है, बबेट डी लीट, नीदरलैंड्स के कप्तान है, जिन्होंने आज टॉस जीतने के बाद पहली बार फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। हालांकि बांग्लादेश के विरुद्ध ये टीम हार चुकी है और भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को पराजित किया था, दूसरे मैच में सामना कर रही है नीदरलैंड्स का। इस बीच एक गेंद फ्लाइट किया था, इसे ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मृति का स्कोर इस समय हो गया 57 रन और 143 रन, भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। एक कदम आगे बढ़ी थी, बेहतरीन तरीके से प्रहार करते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा था। सीजर्स की अगली गेंद एक बार फिर से एक कदम आगे निकली और गेंद हवा में है, बहुत तेजी के साथ जा रही है और अब जाके बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन का इशारा अंपायर की तरफ से।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: मिड ऑफ and the extra gulf inner fielder on the fence. I think it's a big mistake to have mid-off inside the circle because she's down the track freeing her arms and gets her right foot away and then she lifts it in the air with the ease for 4s and 6s.
0: जिस तरह से भारत की पारी बढ़ती जा रही है, आगे एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही है, 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 151 रन एक विकेट के नुकसान पर। सीजर्स की गेंद को पूरी तरह से सबक सिखाते हुए भारतीय बल्लेबाज दोनों बीच मैदान पर खेल रहे हैं, रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना, बहुत तेजी के साथ रन बन रहे हैं। 151 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से सीजर्स आ रहे हैं, उनकी गेंद ओवर पिच गेंद थी, गेंद को डीप विकेट बाउंड्री की तरफ ड्राइव किया है 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 4 चौके इस ओवर में विश्वनाथ लगे हैं भारतीय टीम की तरफ से।
2: Four boundaries in a row, and so very expensive. I think that's the most expensive I've seen in this game so far. So, see the Netherlands bowling has been taken apart by these Indian batters, and 200 is looks very much on the cards now, and very expensive over by all means. But some of the deliveries I've seen bowled by Netherlands have been too, you know, probably below par, I would say, which even the Indian batters wouldn't have faced that kind of delivery in the net practice session. And I'm sure Netherlands as a team are going to learn this game quickly, the nuances of the game. And as I keep saying, T20 is one of the best, you know, the first step in the ladder. By the time, maybe 10 years from now, the program will play test matches. Short start of a new era, it's been played by Jameem off the back foot, cutting away on the offside for a single, and brings a left-handed Mandana on strike. Well, she's been very fluent today, and I really enjoyed seeing her play those shots on the offside, particularly in that cover area. She's an absolute wonder to watch indeed. The last year was pretty expensive indeed, Mandana. Well, 603 boundaries in a T20 career. That's quite amazing. 156 for one. We are in the 16th ever. Mandana 69 from 43. And now Netherlands, some have to find and get through there as quickly. At the same time, contain them to maybe less than 200. First ball, next ball, slower. I tell you, very slow indeed. And Spandana came charging down the track, had to adjust to the pace of the ball and ended up playing up to short cover. Extraordinary action indeed from De Lange. Probably she's the replica of someone like... next ball, hit in the air, high, over long off. What's going to happen now? It's gone one bounce into the fence for four. Again, the mistake. One bounce for four.
1: Ye laga abha ka choka.
2: Well, they should have the long off on the boundary. The rule for this women's T20 encounter is there can be only 4 fielders allowed outside the 30-yard circle, unlike the men's in a T20 where they're allowed even 5. So that's a bit of a handicap indeed. And you go very expensive at times. 160 for once. Smriti Mandana into the 70s. 73 of 45. Next ball is down the track and whacks it away on the onside out towards mid wicket. One bounce to Heath Seegers. A deep mid wicket. Cinch and a flat return. And that takes Mandana up to 74 from 46. India

0: 161 for one. Might be wondering why they send India first to bat after winning the toss. And they probably can reach around about 220 with some big hitters to come, including the captain and Richa Ghosh to come. Next ball is swept away hard and down towards deep square. A single results, and 162 for one. We are in the 16th over, one ball to go. And then after this, four more overs to come. Mandana, she's playing beautifully at the moment. 74 from 46, and finding a form where she left against Pakistan. The last ball of the year from D. Lange. Right among the balls. She's down the track, hits it. She's got a top edge there. She's going high in the sky and will take it indeed. Second Indian wicket is down. Celebration in the Dutch camp. I'm sure they're celebrating this wicket so well. So Mandana gone, caught at mid-off and off the bowling of D. Lange. And India lose the second wicket. Both the openers are gone. It's 2 for 162 from 16 overs. I'm sure every Dutch girl out of the centre, they all come to a huddle and hugging each other, and it was very well taken indeed at mid-off, and celebrations in the Dutch camp. They know the importance of the wicket. D. Lange is absolutely delighted. So Mandana is gone finally for 74. Caught by Zwilling. It was the second catch, isn't it? For Zwilling, isn't it? And off the bowling of D. Lange, and India are two down after 16 overs.
1: भारत को एक झटका लगा है दूसरा विकेट भारत का यहां पर गिरा है स्मृति मंधाना जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी मंधाना ने 74 रन का बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जा सकता है हालांकि उम्मीद ये थी कि वो एक बड़ा स्कोर आज करेंगी और अपनी पहले की पारी में जितने भी शतक लगाए हैं उनमें एक शतक की वृद्धि करेंगी लेकिन ये क्रिकेट है यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी परिदृश्य बदल जाता है पलक झपकने के साथ ही कई नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं और पुराने ध्वस्त हो जाते हैं अनिश्चितताओं के आंगन में ये खेली गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद थी लेकिन देखना है गेंद बैट से लगी है नहीं और ये आउट दे दिया उन्होंने गेंद उनके बल्ले के कहीं बाहरी किनारे से छूते हुए विकेट कीपर के पास गई थी और भारत को ये एक झटका जेमिमा रॉड्रिक्स 12 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन के स्कोर पर विकेट के पीछे पकड़ी गई कैच आउट आउट हुए दूसरा विकेट भारत का 162 रन के स्कोर पर और जिस तरह से गेंद लेग स्टंप के बाहर की थी स्वीप करना चाह रही थी गेंद उनके ग्लव्स के पास से लगी और विकेट कीपर जो कि कप्तान भी हैं बबेट डी लीड उन्होंने लुढ़कते हुए एक शानदार कैच लिया और उछलते हुए गेंदबाज ने भी अपने आप अपनी खुशी का को जाहिर किया यहां पर और भारत का स्कोर इस समय 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर जेमिमा रॉड्रिक्स ने दो चौके इस पारी में लगाए थे
0: यू लुक एट द सेलिब्रेशंस ऑफ द डच गर्ल्स अमेजिंग इज़न्ट इट दे आर सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस गेम दे रियली एंजॉयिंग दिस वर्ल्ड कप एज अ टीम टुगेदर एंड व्हेनेवर दे गेट अ विकेट यू नो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर I think the celebration has been wonderful to watch and they are taking this game to a different level when they go back to Netherlands a couple of weeks from now. I'm sure there'll be a lot of learnings and this experience will be very handy for them, for the future generation within Netherlands to take the game and endorse T20 cricket very seriously. And their celebrations are wonderful to watch.
1: बिल्कुल इस समय मंधाना और शैफाली वर्मा रॉड्रिक्स तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं स्मृति मंधाना ने 74 रन बनाए शैफाली वर्मा ने 51 रन बनाए और रॉड्रिक्स ने 23 रन बनाए इस बीच गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट रीजन में लेकिन एक रन ही मिलेगा यस्तिका भाटी में यस्तिका आई है नए बल्लेबाज के रूप में एक रन के साथ अपना खाता खोला और भारत का स्कोर 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर जिस तरह से आज भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत आधार यहां पर रखा था लेकिन उसके बाद तीन विकेट भारत को गिरे और भारत का स्कोर बहुत मजबूत है समय 163 रन तीन विकेट के नुकसान पर और रॉड्रिक्स गेंद को स्वीप करना चाह रही थी ऑन साइड में लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले के नजदीक से निकलते हुए ग्लव से टकराई और विकेट के पीछे बबेट ने उनको कैच किया इस बीच अगली गेंद थी राजकीय और उस गेंद को ड्राइव किया है ऑफ साइड में और पीछे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया कैलिस खड़ी थी वहां पर स्टीर कैलिस उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया 164 रन तीन विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर रिचा खेल रही हैं एक रन के

0: पर और यष्टिका खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर। तो इस समय भारत को और रनों की आवश्यकता है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही बल्लेबाज कुछ और रन जुटाएंगे। इस बीच ओवर पिच गेंद के देरी से फ्लिक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड करती सीजर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक रन और यष्टिका ने लेते हुए अपना स्कोर कर लिया। दो रन दो गेंदों का सामना किया उन्होंने, दो रन बनाए, 165 रन भारत का स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर इस समय चल रहा है। वापस गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी लेकिन इस बार दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से।
1: इट्स माय कर्स।
0: जैसे ही आपने तारीफ की उन्होंने एक वाइड गेंद डालते हुए बताया है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण अभी भी उनके पास में नहीं है। 166 रन तीन विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर। ऋचा खेल रही हैं, ऋचा घोष विकेट कीपर हैं भारतीय टीम की एक रन के स्कोर पर, और यष्टिका खेल रही हैं दो रन के स्कोर पर। 166 रन तीन विकेट के नुकसान पर ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और गेंद को लेकिन बहुत ऊपर उठी है, देखना इसको नीचे फील्डर कैच करवाते हैं, यहीं ड्रॉप कर दिया है, गेंद छोड़ दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मॉल कबीर वहां पर खड़ी थी, उनको लगभग गेंद उनके हाथ में आ चुकी थी लेकिन यष्टिका की किस्मत अच्छी रही कि गेंद एक आसान कैच छूट गया डच खिलाड़ियों के हाथ से। काफी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुआ था, उन्होंने देखा कि मिड ऑफ पे खड़ी फील्डर आगे आ रही है लेकिन जब देखा कि वो नहीं आ रही है तो वो आगे बढ़ी और उन्होंने गेंद को हाथ में ले लिया था लेकिन छिटक कर कैच चला गया। इस तरह के कैच बहुत महंगे साबित होते हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से डीप स्क्वायर लेंग की तरफ से सीजर्स के पास खेल दिया, एक रन और अपने खाते में जोड़ते हुए यष्टिका का स्कोर हो गया तीन रन और ऋचा घोष खेल रही है दो रन के स्कोर पर इस ओवर की समाप्ति पर।
1: Well, in the last over, it was not really a catch that was dropped. They also missed the run out. In fact, Richa was not running to the other end. She thought she's going to be out for sure. And it was a very easy chance that was spilled at the cover area. I tell you, that was basic stuff. It was kid stuff indeed. And that should have been catchable at any standard. And unfortunately, she dropped it. It all happens in any form of cricket at any level. But they probably would have got back to basics in trying to run the batter at the other side. They missed both of them. It's a bit of an inexperience on the part of Netherlands side. But nevertheless, India in a very strong position. But I'm very impressed with Van der Waard come back. She had a horrendous first over. Dean Lange, she comes to in balls and will be stumped easily. Easily stumped indeed. It's Yastika, she's gone. Again, a lot of celebration in the Dutch camp. Lange gets her first wicket. She got two in the first game against Bangladesh. In India, 168 for four. And the wickets have started to fall at very, very frequent interval indeed. Nicely tossed him. And that one spinned with the arm. And was an easy stumping for the captain, Dean Lange, to complete it. And that's got the batter standard by a mile. So, celebration all across. I could see the smile coming from everyone in the Dutch team. They're all enjoying every moment of this World Cup. They're enjoying every wicket of this. So, it's Yastika Badia, stemmed by lead and off the merling of Dean Lange. And I won't say India in a spot of border with the fourth wicket going down, but I think, you know, the exit of Mandana, the flow of runs have been controlled to a large extent. We haven't seen, the boundaries and the sixes getting in. So we'll just give you the bowling scorecard in a while from now. We're just getting it from a scorer. But the captain is in. Lange bowled short. And that's thrashed off the back. We're down towards deep extra cover. Oh, it's a nasty bounce for the fielder patrolling the boundary. I think the ball hit one of those playing turf indeed and bounced on to her. And the captain is over the mark. Harmanpreet Kaur, the 50-50 winning World Cup last year. And I tell you, she's really led the team by an example. A lot of discipline in the side. And she's been well respected within the side as a leader. And I think she's done a great job for the team. Lange, Dean Lange. She's in the last of bowls. This is hit high, straight down the ground. One go for five, presume. No, it's gone for four indeed. And a tremendous hit indeed by Richa Ghosh. That's a penalty you play when you drop it, because he smashes that run. In fact, it's gone for six, actually. And we couldn't pick it up very cleanly here. It's gone for six.
2: Ye laga, abha ka chakka.
1: It just managed to cross the boundary ropes over there. Flat indeed from Richa Ghosh. And boy, she's a very powerful lady. And when she hits them a long way. Pretty strong wrist indeed. Here's the next ball, Langley ball, short wide. She has to wait and reach for it, and a good diving stop at backward square on the offside. And that takes Richa up to 9 from 4 deliveries. India 176 for 4, with 2.2 overs remaining in this game. They still managed to bowl with the least of penalty, I presume, because they had plenty of wides in this game, also 15 wides in this game. And brings the captain on strike, Harmanpreet Kaur. 178 matches, 4,112 runs. Amazing career indeed. First ball, she goes back, rocks off the backward, but unfortunately it goes straight to Heath Seegers at extra cover. No run. She's on 1 from 2. Look at the run rate, 9.87, going steady. With the next match coming up after a few hours from now, Pakistan and South Africa. Harmanpreet Kaur off the backward cuts this one. They're running a tough single indeed. There's a chance of running at this non-strikers end. They still complete the run. And at the end of 18 overs, it's 4 for 177.
0: 18 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर है 177 रन और भारत की तरफ से जो विकेट्स गिरे हैं पहला विकेट गिरा था 115 रन के स्कोर पर शैफाली वर्मा आउट हुई थी दूसरा विकेट 162 के स्कोर पर स्मृति मंधाना आउट हुई तीसरा विकेट 162 के स्कोर पर ही गिरा जेमिमा रॉड्रिक्स आउट हुई थी और उसके बाद चौथा विकेट यास्तिका भाटिया के रूप में गिरा था उस समय स्कोर था 17.168 रन स्कोर था और इस तरह से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरह की गेंदबाजी कर रही हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज वहां पर रनों की संख्या तो बढ़ाई भारत ने लेकिन विकेट भी गिरे हैं 18 ओवर के बाद 9.83 के औसत से रन जुटाए हैं भारतीय टीम ने इस समय भारत का स्कोर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 177 रन 4 विकेट के नुकसान पर और ये 19वां ओवर यानी इसके बाद भी इस ओवर के बाद एक ओवर और खेला जाएगा इस बीच धीराड गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी धीरे से कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ खेला हरमनप्रीत ने और अपने खाते में एक रन और जोड़ दिया हरमनप्रीत का स्कोर इस समय 3 रन ऋचा घोष अब आ रही हैं बल्लेबाजी करने के लिए ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक प्लेयर कही जाती हैं और कई मौकों पर भारत के लिए उन्होंने अंतिम क्षण में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुझे याद है गत वर्ष जब विशाखापट्टनम में विश्वनाथ और मैं एक दिनी विश्व कप में कमेंट्री कर रहे थे ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बहुत ही शानदार स्कोर किया था इस समय ऋचा घोष तैयार हैं 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर 178 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह अगली गेंद थी उस गेंद को ड्राइव किया है गेंद बिल्कुल हवा में जा रही है और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर
2: ये लगा आभा का छक्का
0: बहुत ही शानदार तरीके से जैसा हम बता ही रहे थे कि ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक मूड से बल्लेबाजी करती हैं ऋचा घोष ने एक बिल्कुल स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और पूरी ताकत के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जाकर गिरी थी एक और शानदार छक्का ऋचा घोष के बल्ले से निकला और भारत का स्कोर 184 रन 4 विकेट के नुकसान पर और ऋचा घोष फिर से तैयार हो रही हैं 5 गेंदें उन्होंने मात्र खेली हैं और 15 रन बना लिए हैं अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी पुल किया है उसे देखना है फील्डर नीचे नहीं लेकिन बहुत पीछे थी फील्डर और पहले टप्पे के साथ फील्डर के हाथ में आया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 1 रन और ऋचा घोष ने अपने खाते में जोड़ लिया 16 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया इस समय 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर ऋचा का स्कोर हो गया 16 रन 6 गेंदें मात्र खेली हैं और वेन डी राग की ये इस ओवर में 8 रन अब तक ले चुके हैं 3 गेंदें अभी भी शेष हैं हरमनप्रीत इस बार तैयार हैं अगली गेंद का सामना फुल टॉस गेंद थी ड्राइव किया उसे और गेंद अब जाके फील्डर के हाथ में आई लेकिन तब तक हरमन और ऋचा ने 22 गज के इस घेरे की पट्टी को दौड़ते हुए पूरी किया हरमनप्रीत का स्कोर हो गया 4 रन 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं ऋचा अब 16 रन के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं अगली गेंद का भारत और नीदरलैंड्स के बीच में टी ट्वेंटी विश्व कप का यह मैच टॉस नीदरलैंड्स ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। राग की यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पॉइंट बाउंड्री की तरफ उसे गेंद को कट किया था और चार रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: 190 रन भारत का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर।
1: Well, the last shot was just fantastic to watch from Harmanpreet Kaur. Just bounced inside the fence for four, one bounce. And the fielder at the boundary, she was not at the edge of the boundary rope. She was just, yeah, about, I would say, a couple of yards in front, and she was never in control of that. That was catchable by all means. 190 for four, one ball to go in the 19th over. And, India should get past 200, I think. That's what everyone was looking at. Ran in the last of bowls, Fuller. That's beautifully bowled. It was a dot ball in the over. Fuller, Yorkerland ball. And Richie was trying to make some space and crush it and missed it. And a dot ball. 4 for 190 from 19. Exactly 10 is the scoring rate from India's point of view. If you just switched on your radio sets, you're drawing the car. It's one of the best form of entertainment. And India was sent in by Netherlands today. This is the second of the matches they're playing this World Cup. They're 190 from 19 overs and well set for a 200. I think we're not seeing a 200 score in this World Cup so far. And, we're not seeing much surprises from the Dutch women, but I tell you, they've taken this game at a different level and they're going to be a big inspiration for the future generation within Netherlands to come up. And the first game they played against Bangladesh, they played well. First ball, here is now, Zwilling Bowles gets an edge. It's going down towards deep. Third man, and run away for four.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: Not a great start to the last ball, to the last over. It was a tick outside edge and it flies past the fielder who is inside the circle within the 30 yards and wide offer for four. So that's what India needed. 194, five legal deliveries remaining, and good entertainment indeed provided by the Indian batters. Richa goes in 20 from 8, and Harmanpreet Singh on 8. Next ball is wide down the Lakshya. Well taken by the keeper. Beautifully done indeed. And a dot, and it's an extra delivery. Lots of wides in this game. And Zwilling, she's bowling the last over. No wicket for 27 from 3.1 overs. Well, I'm sure this is a match that I'm sure is going to boost the confidence of the Indian batters, particularly the bowlers, when they come and have a go at the Dutch women. This next ball short, and she hits it high, and well caught, all dropped again. She almost caught it, and I thought she was in control of that, and in the end she dropped it. I'll tell you, frustration for the Dutch team. It was, in fact, Richa, she dropped it at mid-off, and that was coming at a comfortable height. A slower ball indeed. It was a bit of an off-spinning delivery. And Harmanpreet Kaur was never in control of that and headed straight to the fielder at mid-off and she dropped it. It was a kind of a lolly pop chance. Next ball is driven hard. See, this time she misses the field, misses the ball. It's beaten her. It's beaten at mid-off and it's gone down towards the deep mid-off fence for four.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: Well, they're paying a high penalty for dropping Richa Ghosh 3 or 4 overs before. Now a drop catch for Harmanpreet Singh and then the boundary results. It was a bit of a low, dying, dipping full toss for Harmanpreet Kaur, but still she managed to get some bat on ball and raced away for four. Zwilling, this is going to be an expensive. Next ball, makes room, hits it high. It's in the air. Anyone could catch that. Let's see if it's going to catch it or not. Oh, she takes it now. That's the end of the captain, Harmanpreet Singh. Harmanpreet Kaur. She's out for 12 from 9 deliveries. India lose wicket number 5. 199 for 5. From 19.4 overs. And a couple of balls from now. We'll take you to the studios of Radio All in the Radio for the next program, Free Hit 20. And I'll tell you, it's a very interesting program because they get a lot of callers in that and some serious anchors and experts joining for that program. So the captain is gone, out for 12 from 9, caught Richa of the bowling as Zwilling, and two more balls remaining. So we'll just give you the figures and shortly And, well, I tell you, the Dutch girls, they played the game extremely well. No shaming in losing a game of this nature to a very strong team like India. By the time we see them in the next World Cup, I'm sure they'll be a very changed team indeed. You can expect a lot from the Dutch girls. So it's 198-5, two legal deliveries remaining in this first half of the game. And at the end of the 20th over, which is the end of the first phase of this game, we'll take you to the studios of All India Radio for the next program, Free Hit 20. And stay glued on to your radio sets, as a matter of fact. Lots of entertainment. It's been a very busy month indeed. Lots of games, tennis, football, cricket, it's all happening. Zwilling, she's got figures of 1 for 31. Bells, next one on the leg side, that's been flicked away. Ristoli, that's gone for 6. That is a sensational shot from deep to a casual flick of a wrist, and it's gone racing away down towards define leg for 6. That is a magnificent shot, one of the shots of the day, I would say, by all means. The 200 is now quite a bit.
2: Ye laga abha ka chakka.
1: It's 205 for 5, and it was just a casual flick, and that went going all the way down towards the deep fine leg fence. Very expensive here indeed. 205 for 5, one ball to go. Deep T on 6 from one delivery. Richard 20 from 8. And I'm sure Indians will be very happy with the overall scorecard. And the Dutch girls won for 80s. Next ball short again. She gets this one, scoops this one over long leg. One bounce into the fence for 4. Smiles in with the Indian two batters. India finished the 20 overs at 209 for the loss of 5 wickets. Now with the score at 209 for 5, half centuries from the openers, and overall it's been a clinical first half performance from India. We take you to the studios of All India Radio for the next program, Free Hit 20.

0: अच्छा उसके लिए आपको टी पिच पे टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी था आज. एंड यस्तिका भाटिया, एज अगर हम कंपैरिजन करें भारती की और यस्तिका की, तो दोनों सिमिलर है अभी, दोनों एक ही जगह पे स्टैंड कर रहे हैं एंड कोई भी खेले, बट हरमनप्रीत को उनकी जगह पे आना चाहिए था और बेटर हमारा रन रेट बढ़ सकता था. एंड उसके साथ अगर हरमन की बात करूँ तो लास्ट मैच और इस मैच में देखें तो उनका बैट उस तरीके से चल नहीं रहा है जो साउथ अफ्रीका के लिए हमें चाहिए बैटिंग.
1: राइट, अगर हम बॉलिंग की बात करें नेदरलैंड्स की, तो दिलांगा, उन्होंने दो विकेट चटकाए और सीगर्स ने भी एक विकेट चटकाया. उसके बावजूद अगर आप देखें तो इंडिया वर एबल टू टैकल द स्पिनर्स वेल. क्या उन विकेट्स के चलते आप कह सकते हैं ये कर्नल की इस विकेट में कुछ ना कुछ तो है स्पिनर्स के लिए, मदद जरूर है?
2: या देयर इज स्लाइट यू नो असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स. हालांकि विकेट थोड़ी फास्ट खेल रही है, लेकिन अगर आप राइट स्पॉट पे फ्लाइट करके बॉल डालोगे तो हल्की सी टर्न भी है जिससे बैट्समैन को खेलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी.
3: सौमित्र, इट्स ऑल्सो अबाउट हु दे आर अप अगेंस्ट. फॉर एग्जाम्पल अ सेट मंधाना, इवन इफ इट्स एन ऑफ स्पिनर इन फ्रंट ऑफ हर, इज नॉट गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल.
4: Absolutely. But just to add to what Colonel said, all the five wickets that India, all the wickets that fell, so all were bad dismissals. Have you noticed that? There was kind of strokes Jemmy played, you know. Richa was lucky because she was dropped on two.
1: Right.
4: I mean, imagine if Harmanpreet was also not dropped, we could have been in bigger trouble. It so happens ki ye jo hamara team hai, opposition hai, is Netherlands. Imagine, can you do this with Australia or South Africa? Answer is no. And spinners, yes, fine, but did you see if the ball turned too much? Not too much, maybe. Because the point is this, they were trying to, that's what I said, ki in the 16th over onwards, the Dutch bowlers tried to get something back out of this game.
1: Right.
4: That's why Dilange got. But again, the wickets we gave Dilange were gifts.
1: Got it.
4: Except for the fact that Yastika stepped out, missed the line completely and was bowled and was stumped.
1: Right.
4: So the point is how you played the match. I think it's largely because the two batsmen in the top of the order, they got the runs. And if it's contrast of the first match where the middle order got the runs, the top order did not. Here it was a bit of a reverse.
1: Mm-hmm.
4: But things are, there are lessons to be learned from this match.
1: Hopping about the spinners once again then, if it's not turning as much, Vaishali, jis tarike se chahalkadmi ki thi Smriti ne, the fact that she was able to use her feet to the spinners, that brought a lot of runs. Do you think the opposition will borrow a leaf out of her book? Wo bhi waise hi khelne ki koshish karenge jis tarike se Smriti ne pace out kiya tha apne innings ko?
0: Ye thoda doubtful question hai, but मुझे लगता है कि जहां पर अभी स्पिनर, अगर हम पूरा आंकड़ा निकाल के देखें तो अभी भी स्पिनर ने ही विकेट ज्यादा ली है. एंड हमारी दीप्ति शर्मा, अगर वो जैसे उन्होंने लास्ट मैच में पकड़ के एंड स्पॉट बॉलिंग की थी, वही अगर वो उस तरीके से बॉल करती और श्री चरणी करते तो हो सकता है आज दोनों ही बॉलर अपने नाम भी विकेट्स कर सके.
3: भूप, और खास करके हमने दीप्ति के केस में देखा है कि अगर वो कोई चीज को वेरी करती है, वो होता है उनका पेस, वो होता है उनके लेंथ, लेकिन लाइन हमेशा सटीक ही रहता है.
2: देखिए, शी इज अ वेरी गुड बॉलर. हम उसको जो नेदरलैंड्स के बॉलर है उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते. शी इज अ बिग मैच प्लेयर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा विकेट्स ले रखी हैं, तो उसकी बॉलिंग यहाँ पे इस विकेट पे बड़ी अच्छी होगी. एंड मुझे लगता है कि जो नेदरलैंड्स के बैट्समैन हैं उनको काफी ट्रबल करेंगी. और जिस प्रकार से ये विकेट खेल रही है, मुझे लगता है जो हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स हैं वो भी विकेट लेंगे, क्योंकि बॉल्स
5: की डोरी. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की. पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई. रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी. मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
6: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
5: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
5: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है।

0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए

0: गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening.

0: Shell Chaka Vishayake. ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है।

0: भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद। जय हिंद।
0: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
2: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर्स जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने में बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर्स सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना, ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो 15.6%, तो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 crore, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 crore है, प्राइवेट प्रोडक्शन, यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन है, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
0: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं, एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
1: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे मुल्क है जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे, 10-12-15 साल और रहेंगे जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कम्प्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे, हम इम्पोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
0: जी हाँ कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है, यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
2: देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, L&T हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 178,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, विच इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो जिसकी आप बात करें। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने Mk1 बनाया है, आपने हमने ही बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको Mk2 बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस, सप्लाई, स्पेयर, उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें DRDO की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमियां है, IITs है, वहां के बच्चे बड़े होशियार है, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स है वो आगे आते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम बिहार, जैसे आप कह रहे हैं, बिहार वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी, ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टेल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा 2 साल हो गए, 2 इंजन नहीं आ पाए, 2 साल हो गए, क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके भी बनाना शुरू करेंगे, इसलिए लगे अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
0: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब चार गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
1: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इंपोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इंपोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन। ठीक है, पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत, उसके तीन आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो हैं और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट के पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है, उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट कराया कि आप अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी भी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसे बोलते हैं इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, 8-10 साल हमें पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
0: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: देखिए, ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करते, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें, जरूर चाहे स्टार्टअप के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक देते, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस को चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इस आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर रेमिटेंस है जिसको जीएसटी और हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस मार्केट का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो।

0: वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशन है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं, इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस करेगी वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, यूएवी को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, जो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए, और इसको इनिशियली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है इनिशियली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर, पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी, फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात, अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे, जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा, मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी, जब आप ग्रो करेंगे तो, जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं, बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी, जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है, और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा वो, जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको, MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे, साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके, तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
0: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है, अगर नंबर 1 GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर 2 तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर 3 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी, तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है, और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है, हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने की कि लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है बिंदा गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिए कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन सा जनरेशन है 1 2 3 4 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया 4.5 जनरेशन, 5th 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब अब भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया, इसको किस तरह, तो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAV है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है, जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब यू ट्रेन्ड वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोते मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मीनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइप है, USSR यानी अब सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाइप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई, उसकी कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, पर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना है, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिक कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D वेरी स्ट्रांग, R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे, मैं भी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके

0: ये भी 3 लाख करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इदारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्र संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी है। ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब का, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू।
0: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है
2: Afghanistan by 170 runs and the women's team is not far away. That one is a 50-over match and the one that you're doing is a 20-over game. And June has been a month flooded with variety of sports, tennis, football, variety of T20, 50-50, test matches going on. England are playing New Zealand today with 220-5, New Zealand some time back. No Stokes in that game. He's got his own problems. Beyond the playing hours, unfortunately, it's Root leading England after a long gap, and he's playing his 167 test match. Would you believe he's playing 167 test match? The rest of the other England side all put together 114. But a wonderful cricketer, fancy him to get past Tendulkar somewhere down the line. He's got 3 or 4 years of cricket left with his bat. So right now, back here in Leeds. India on the way, they're in complete command of this game, and Netherlands probably haven't batted badly, but they're learning, continue to learn as the game goes on, the months and years to come, and they're probably at some point of time in the next 10 years time, they'll be a strong contender in the T20 format as a matter of fact. So right now, new player is going to step into the centre, play briefly held there with the exit of the captain, who's been stumped smartly by Ghosh and off the bowling of Nandini. And one casualty in the inside with Patil, the off spinner, you know, just bowled one ball and she had a nasty fall. She slipped and she suffered an ankle injury. Say, Overjik. She's the new batter in, and the batter at the other side is Richke, Netherlands. 96-4, one ball to go in the 15th over, and the target they're chasing now looks very unrealistic. 210. Nandini with the last ball of her third over bowls. Fuller. And lifted in the air, wide of Minon. It'll be cut off by Jemima Rodrigue. She does well to cover. Have to run 15 metres. Couple of runs here. And after 14 overs, Netherlands, 4 for 98.
5: 14 ओवर की समाप्ति पर 98 रन पर 4 विकेट इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है जो 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। हीट सीजर्स, कॉट स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकन बोर्ड कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स, बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन, बबेट डेलीट, स्टंप ऋचा घोष, बोल्ड नंदी शर्मा 28 रन और स्टीव कैलिस जिनको सैफ अली ने बोल्ड किया था 18 रन के स्कोर पर। और इस समय 4 विकेट जो गेंदबाजी का सिलसिला है, नंदी शर्मा ने 3 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए।

0: शेफाली वर्मा ने 3 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया है। और पाटिल जैसा कि इंजर्ड होकर चली गई थी, एक गेंद फेंकी थी। श्री चंडी ने 2 ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं। और दीप्ति शर्मा ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की। तो इस समय नीदरलैंड जूझ रही है भारतीय आक्रमण के समक्ष। 14 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, डिसीजन को रिव्यू किया गया है। देखना है, अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है और तीसरे अंपायर अब टीवी पर देखकर, टीवी अंपायर लॉरेन एगेन बैग टीवी अंपायर की भूमिका इस मैच में निभा रही हैं। और डिसीजन जिस तरह से आपको हम निरंतर बता रहे हैं कि गेंद को स्वीप करना चाहा था और गेंद उनके बूट पे लगी है। देखना है गेंद बैठ के कहीं किसी किनारे, भीतरी किनारे से तो नहीं लगी, यही देखना है। और अगर नहीं लगी तो फिर उसकी क्या दिशा रही है, क्या गेंद स्टंप्स को छूकर निकल रही है या स्टंप्स के पास से निकल रही है, इन्हीं सब बातों का एक चिंतन होता है। और तीसरे अंपायर की तरफ से ये निर्णय किया जाता है। क्रिकेट में जब से रिव्यू सिस्टम आया है, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब बेहतरीन बल्लेबाज कई बार गलत तरीके से आउट दे दिए जाते थे, लेकिन बाद में इस तरह की कंट्रोवर्सीज निकलती रहती थी। लेकिन फिलहाल देखना है कि अब जाके पूरी तरह से संतोष, मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई है, लेकिन देखना है कि क्या निर्णय होता है। अंपायर ने अपना निर्णय दिया, आउट हो गए हैं बैटर और ये अंपायर की उंगली उठी। इसके साथ ही क्रीज की पारी यहीं पर समाप्त हुई और एक और करारा छक्का लगा है। रॉबिन रिस्क 8 रन पर आउट हुए हैं। LBW बोल्ड श्री चरणी, उन्होंने मात्र 3 डॉट गेंद बनाई, 1 रन उनके खाते में जुड़ा और इस तरह से दक्षिण नीदरलैंड्स को एक और करारा झटका लगा है। और देखा जाए तो एक तरफा मैच होता हुआ विश्वनाथ ही नजर आ रहा है कि किस तरह से पहले टॉस जीतने के बाद एक मौका मिला था कि वो बल्लेबाजी करती, लेकिन उन्होंने बेटर समझा, उचित समझा ये कि हम पहले गेंदबाजी करें। भारत ने 209 रन का स्कोर उनके समक्ष दिया है।
1: Well, at times I probably will say it's a match of the unequals, isn't it? One of the top-ranked team playing a team which is new entrant and a long way to go. Charney bowls and driven towards long off for a single. She's off the mark, Zwilling. She bowled well, indeed, and takes Netherlands up to 99 for 5.
0: ज्वेलिंग ने अपना खाता खोला है, एक रन दिया है। जिस तरह से पिछली गेंद पर आउट हुआ था, अंपायर ने एक और आउट नहीं दिया लेकिन रिव्यू दिया और उस पर भारत को सफलता मिली। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है। ओवर डिस्क इस समय 2 रन के स्कोर पर खेल रही हैं। ज्वेलिंग ने 1 रन बनाया है और अब 111 रन पीछे है अभी भी नीदरलैंड्स की टीम भारत के मुकाबले, जबकि 34 गेंदों का खेल शेष रहा है। बहुत ही मुश्किल, कोई चमत्कार ही हो तो अलग बात है। इस बीच ये गेंद फ्लैटेड गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, गुड लेंथ गेंद थी। एक बार फिर से श्री चरणी को सफलता मिली कि उन्होंने मौका नहीं दिया बैटर को रन लेने के लिए। ओवर डिस्क इस समय खेल रहे हैं 2 रन के स्कोर पर और एक बार फिर से श्री चंडी गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव करना चाहती सीधा, लेकिन गेंद बन लेके बाहरी किनारे से लगते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: एक चौके से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन निश्चित रूप से ये मैच अब भारत की पकड़ पे मैं आ चुका है। श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी और अंपायर ने हालांकि उसको आउट नहीं दिया था, लेकिन बाद में रिव्यू लेने पर उनको सफलता मिली। इस बीच ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ और इससे पहले की गेंद फील्ड की जाती, थ्रो किया जाता, 1 रन और उन्होंने अपने खाते में जोड़ा। हालांकि मिस फील्ड हुई, 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है और एक गेंद अभी भी शेष है श्री चरणी के इस ओवर की। 14.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। नीदरलैंड्स के बल्ले से अभी तक 104 रन निकले हैं, 5 विकेट का नुकसान उनको हो चुका है, आधी टीम उनके आउट होकर पेविलियन लौट चुकी है और भारत के लिए ये एक आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी इस समय की जा रही है। गिली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को धीरे से पुश किया स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता है एक रन और जोड़ लिया। 106 रन 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है नीदरलैंड्स का।
1: So the game has gone one-sided, isn't it? Last 5 is coming up, and it's certainly out of reach now. It's, the ask is around about 20 runs an over, so we haven't seen any of the best of the IPL games. And 209 in reply after 15 overs, 105 for 5. So Dee Lange, she bowled well. She bowled 4 overs for 32. And she was the best of the ball. She had 2 wickets in the game against Bangladesh too. She bowled 4 overs 2 for 27, isn't it? In that game. It's going to be Deepti Sharma to bowl her 3rd over. Flights this one and it's lifted in the air, safe. It'll fall safe at the fielder Mandana at deep mid-wicket. In fact, it's not Mandana, I can tell you that. It's Rava. She fields in and sends in the return 106 for 5. And the last 4 overs and 5 deliveries coming up to complete the formalities of this game, as they need 104 from 29. And Frederick Erdick, she's the one playing Richa Sharma. She comes in from close to some bowls and she slocks the feet this man, not with much power and timing. Again, Mandana in business, Rava in business. And one more to the Netherlands team. They go up to 107 for 5. But I tell you, by all means, for a team like Netherlands, you know, this is a good, massive experience for them. One is to qualify for the World Cup. They'll be very happy if they win one game in these qualifying matches. Next ball is defended up to short mid-wicket. Mandana, obviously, rather Corin for Harmanpreet Kaur. She's the fielder. And Mandana probably will be strong contender for the player of the match in this game. And the game has been a bit disappointing in the second half, I can tell you. The first half was more entertaining and enterprising. Next ball, she gets a thick outside edge. She's going down towards no women's land. And they run just a single. It was not timed. A thick edge that went sailing in the air and fell between mid-on and deep mid-wicket. You could cross her for an easy single. So that takes in Netherlands up to 108 for 1. 3 singles in this over. Deepti's having a nice little time. She tosses this one nicely. Again, slog swept, not with any timing. So these swipes, it's been looking very ugly, isn't it? These slog sweeps hasn't been as elegant as it has been. And most international wickets now is now Deepti from India sharing with Goswami, 355. Magic figure indeed. Next ball, she's lifted this one high, ever long gone, and it's gone for 4.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: Well, that's a welcome boundary from a Netherlands team point of view. 42-4 in this game so far, and at the end of 16 overs, it's 5 down for 113. Winning is out of equation now, Goswami, but I'm sure they're going to play for pride. They're going to play with a lot of passion. And they're probably trying to narrow the gap and settle somewhere between 150 to 160 if all their wickets remain intact from a Netherlands point of view. But they'll be very happy if they win one game in the league games of this World Cup before they leave back for Netherlands.
0: 16 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर उठा दिया। इस गेंद को देखना है कि इसके पीछे फील्डर है कि नहीं, और इसके साथ ये कैच बहुत ही शानदार तरीके से एक और विकेट मिला है श्री चरणी को। और जिस तरह से श्री चरणी ने अपने ओवर की शुरुआत की थी और गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट किया था, बल्लेबाज को आमंत्रित किया था, स्मृति मंधाना ने एक कैच और पकड़ा है। स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और उसे उठा दिया था बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाई शॉट को। स्मृति मंधाना वहां पर खड़ी थी और एक शानदार कैच पकड़ते हुए इस बार एक और फ्रेडरिक ओवर डिस्क ने मात्र 9 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। कॉट स्मृति बोल्ड श्री चरणी 7 रन। इस समय छठा विकेट आउट हो गया है, 6 विकेट गिर चुके हैं और अब पूरी तरह से दर्शकों में भी उत्साह तिरंगा लहरा रहा है मैदान में वहां पर, और निरंतर इंग्लैंड की धरती पर जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी निवास करते हैं, ऐसे किसी भी मैच को वो से मैदान पे जरूर आते हैं। 97 रन की अभी भी जरूरत है नीदरलैंड्स को, लेकिन अब ओवर बहुत ही कम बचे हैं। एक तरह से मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है और अब राड आए हैं अगली बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गिनती है अंपायर की तरफ से, सर आरएस के साथ ही आउट, एक और विकेट मिला है। श्री चरणी ने इस गेंद को थोड़ा से हवा में फ्लाइट किया था और डीआरएस लिया है। वहां पर बल्लेबाज ने देखा कि जैसे ही उनको लगा कि कहीं उनका किनारा नहीं लगा है, श्री चरणी की गेंद को कट करना चाहती थी, लेकिन बॉल ने उनके बल्ले का एक बाहरी किनारा लिया या नहीं लिया यह अब डीआरएस के जरिए तय होगा। लेकिन भारत के खेमे में उत्साह, क्योंकि अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी थी और अब देखना है कि बहुत नज़दीकी मामला है उनकी बैट से लगी या नहीं। जहां से देखने पर तीसरे अंपायर के पाले में गेंद गई है अब, और जो मूल निर्णय है वो आउट का है अंपायर की तरफ से, और देखना है कि गेंद बल्ले से टकराई या नहीं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे ऋचा घोष ने लिया है, और अगर ये परिणाम में बदलता है तो एक और विकेट नीदरलैंड का गिर जाएगा। बैट से टकराई है और अंपायर ने अब जाके अपने निर्णय को वापस बरकरार रखा है, और अंपायर ने दूसरी बार तीसरे अंपायर की सलाह पर अपनी, देखते हैं उंगली उठाई या नहीं। लेकिन लेकिन बैटर पेवलियन की तरफ लौट रही हैं और धीरे धीरे कदमों से लौट रही हैं। अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से निर्णय को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा की गति से जब गेंद निकलती है, कई बार तो ऐसा लगता है कि बैट से लगा है, लेकिन विकेट कीपर ऋचा घोष को पूरा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और अब जाके निर्णय अंपायर का, उंगली ऊपर उठी और राड जो कि शून्य पर आउट होकर पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और सातवां विकेट नीदरलैंड्स का गिर चुका है। और अब सीजर्स आई हैं बीच मैदान पर, और ये श्री चरणी लगातार दो विकेट ले चुकी हैं, हैट्रिक पर हैं। देखना है अगर वो ये कमाल कर पाती हैं कि एक विकेट और वो अगर अगली गेंद पर लेती हैं तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर जुड़ जाएगी। 16.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर है, और अब कितने रन की आवश्यकता है सवाल यह नहीं है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत कितनी जल्दी इस मैच पर विजय प्राप्त करती है। इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन गेंद मैदान पर लुढ़कती हुई जा रही थी, गेंद को फील्ड किया, एक रन और खाते में जुड़ा है। सीजर्स ने अपना खाता खोल लिया है 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष हैं, और श्री चरणी अपनी कलात्मक गेंदबाजी से कितना कुछ कर पाती हैं। सीजर्स ने 24 पारियों में 69 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग कोई उनकी रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रही है, और 20 गेंदों का खेल अब शेष रहा है, 96 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय दर्शकों में अपार उत्साह, तिरंगा झंडा भी फहराया जा रहा है, शोर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही ये गेंद को खेला था, लेकिन गेंद टप्पे के साथ उछली थी हवा में और विकेट के बीच में आके उसको अपने हाथों में लिया था श्री चरणी ने। ऐसा लगा था यहाँ पर दर्शकों को कि कोई कैच है, लेकिन क्योंकि बैट्समैन ने बहुत सुरक्षित तरीके से खेला था। अगली गेंद अच्छी, और इस गेंद को उठा दिया है, देखना है गेंद बाउंड्री में क्या पार, जिसके साथ ही आउट, एक और विकेट गिर चुका है श्री चरणी की। इस ओवर में देखा जाए तो 3 विकेट उन्होंने जरूर लिए हैं, लेकिन लगातार 3 विकेट लेते तो हैट्रिक होता, लेकिन इस ओवर में सफलतम 17 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर, और बहुत ही सफल ओवर जिसमें 3 विकेट उन्होंने श्री चरणी ने लिए हैं, और एक तरह से बहुत ही शानदार जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि लॉन्ग पोजीशन पर फील्डिंग करती हैं, उन्होंने कैच किया, आयरिस ज्वेलिंग 8 रन पर आउट हुई है। कॉट जेमिमा बोल्ड श्री चर्नी और 114 रन 17 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। विश्वनाथ,
1: well it's a triple wicket over indeed, remarkable for her, and she's got figures of 4 for 19 from 4 overs. Sri Charney, she's having a wonderful time with the ball, 4 for 19 from 4, very economical, and a complete grip on this game from an Indian point of view. Just the last 3 years to complete the formalities, and 2 wickets in hand, and Shefali Verma will bowl her last over, if I'm not wrong. No, yeah, that's right, in fact. First ball, she tries to whack it on the onside. They're all appealing for a stumping. It was so well collected by Richa, and she got the bails broken in a flash. It's been referred to the third umpire. It's been given out, indeed. It's been given out. And it wasn't a late decision by the umpire, or he had some kind of a thing coming out from third umpire. I'm very stunned, actually. I've never seen anyone taking such a long time to give that out. Stumped, the second stumping of the game. And that's out, in fact. I could pick it up from the replay. And the right leg was in the air. Smiles in the Indian camp. Flurry of wickets have fallen in the last 7. Netherlands have lost 4 wickets in the last 7 deliveries. And silver sieges. Stumped by Richa off the bowling of Shefali Verma. She gets a second wicket. And she's got figures of 3 overs, 2 for 20. It should be effectively 3.1. She bowled the last 5 balls to replace that one. So, vendor warning. She is the last batter in. Verma bowls and she defends. Unknowingly where the ball has hit the bat. And it comes back to the bowler. So, small smiles all around the Indian camp. They'll be overall very satisfied with the performance. Been very clinical in the approach. Shefali bowls. Tosses this one nicely. She's lifted in the air. Where's it going? Is it going to be caught? Oh, well taken indeed by the cap by the middle order player. In fact, it's Jemima Rodrigues. She's taken that catch, and so which means that Netherlands are all at indeed for 114, and they give India a big win indeed, as India win this game by 96 runs, and the last how much? What, 7, 8 deliveries? They lost 5 wickets. The last 9 deliveries, they lost 5 wickets. So it's been third catch by Jemima. So it's been a very, very clinical performance from an Indian point of view. They'll be overall satisfied. They'll be clashing on the points along with the Australians in this group. And I'll just give you the scorecard, just to the benefit of our listeners and those who have just switched on the radio sets. India been sent in. They scored 209 from 20 overs, and when the Netherlands team had a chance to bat, it was all the way. A pretty tough ask indeed. Heath Seegers was first to go out for 21, and then Mullenbrook out for 15, and then not great contribution apart from the captain Leach. He got 28, and Kelly scored 18. Just give you the bowling analysis. Grandy Grode, 4 overs for 26. Sharma, 3 overs, 2 for 22. Shefali, 3.2 overs, 3 for 20. Shreyanka Patil, 1 ball, and she was badly injured. She twisted her ankle. And then you've got Sri Charani, 4 overs, 4 for 19. And Deepthi Sharma, 3 overs, 1 for 26. India won this game comprehensively by 94 runs. And now we'll be returning to the studios of All India Radio for the next program. Free hit, player of the match. And we're going to have some serious, set of people, the team around. They're going to have a flurry of questions too. So over to the studios of All India Radio.
3: Player of the match.

0: जी धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए. द सेम रूथलेसनेस इज वॉट आर लिसनर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियन टीम. साउथ अफ्रीका दो हैव सम इश्यूज, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन बींग देन नंबर थ्री पोजिशन. विच बैटर इज बेस्ट फिट फॉर दैट पोजिशन?
1: It's difficult to say which batter, but the point is this, the match against South Africa will be an entirely different cup of tea. Ek toh, first of all, you know, if you don't forget, there's the same team that we played in the 50 over cricket, and if I'm not wrong,

0: This is something that the scholar also mentioned. The intensity of that match will be an entirely different level, and they have so many match winners, starting from their captain. So it is not a question of number three or number four. It is a question of your mindset going into a big match, right? Today, if they can beat Pakistan, or South Africa, Pakistan, or Birmingham with the win, it will be a big boost ahead of this match. But the point is this, against a match against South Africa, Australia, I mean, the dressing room, in the Indian dressing room, their thinking will be completely different. They will forget what they have done against, you know, Pakistan or Netherlands. Yeah. So the, and don't think that they are a world-beating side. They're a very good side, and they, and many of their cricketers play cricket in these kind of regions and are familiar with the conditions. Similarly, if you see, not many Indian cricketers actually are used to these conditions.
1: Right.
0: Because you see, Smriti Mandhana said something very interesting, that she played the 100. Okay? So these kind of conditions actually help them prepare better. That's why, why do you think that Smriti Mandhana is not happy with her 250s? Is because she knows that the next set of matches will be very, very crucial. And if she can't middle the ball, bat agar balla mein nahi laga, that feel good factor is not there. The runs will not come because the bowling from South Africa will be very, very tough.
1: Right, I think that
2: a lot will depend on the type of wicket that is provided. And in case it is a slightly spinning wicket, we have a good chance of beating South Africa.
1: All right, because Lees will also be waiting to rip the ball. So Shabnam Ismail is again someone who's quick when there's a little bit offerings from the surface. Now let's go to our listener. Ji, aap kahan se call kar rahe hain? Bataiye, aapka parichay dijiye. Namaskar. Ji, bataiye, aapka sawal kya hai? Shukriya, sir. Right, Shriyanka Patil ke injury ke baare mein pooch rahe hain. Ji, bataiye. Bahut bahut shukriya. Nahi, bahut bahut shukriya, aur aise lutf uthate rahe, hum yahi umeed karenge. Vaishali, aap se rahega ye sawal phir ki Shriyanka Patil ki kami kya khalegi ab India ko?
3: कहने के लिए खल सकती है, लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन है अभी राधा यादव, एंड वो बेटर फील्डर भी है. जैसे मैंने बोला कि बैटिंग भी करती है वो, तो हमारे पास उसे उनसे थोड़ा सा बेटर राधा यादव है, एंड वो इम्प्रूव भी कर रही है. उनकी हम देखें तो उनकी बैटिंग पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है, एंड बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो वो काफ़ी बेटर एंड क्रिप के साथ जो बॉल डालती है तो वो काफ़ी अनप्लेएबल बॉल होती है. एंड अगर हम बात करूँ बैटिंग के लाइनअप की, जो अभी आप बात कर रहे थे थर्ड डाउन की, बट हमारे पास मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, और वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए, हम उस उनके अगेंस्ट जब खेलेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लैक हो सकता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी दो लास्ट टू मैचेस से दिख नहीं रहा है, नॉट इवन नॉट लास्ट मैच, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वहां पर यास्तिका भाटिया या भारती की जगह जो भी खेलता है नेक्स्ट मैच में, उनकी जगह पे हरमन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर जैमी.
4: बिल्कुल, और हमने देखा है कि भारत जब विकेट्स लूज करता है तो वो क्लस्टर में लूज करता है, खास करके मिडिल ऑर्डर में. साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज गवाई थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में 4-1 से उस श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को. अभी कंडीशंस काफी अलग होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम नेट रन रेट में काफी पीछे. भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबलों को बहुत अच्छे से बुनाया है इस वर्चुअल नॉकआउट से पहले. वो
2: नहीं, हमारी टीम अच्छा खेल रही है, दोनों जो मैच जीते हैं वो बड़े कन्विंसिंगली हमने जीत लिए हैं. एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न्ड, उनका अभी शबनम इस्माइल जस्ट कम बैक इनटू द टीम फ्रॉम रिटायरमेंट, सो दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज शी इज बॉलिंग क्वाइट वेल, शी प्लेज इन द WPL, शी नोज ऑल आर बैट्समैन बैट्सवुमन. सो मेरे को लगता है कि अगर हम शुरू के जो हमारे जो बैटर्स हैं वो 6 ओवर निकाल लें आराम से विदाउट लूजिंग मोर देन 1 विकेट, then we can get a good score against South Africa and then put them under pressure with our bowling. Bowling is quite good as far as the spinners are concerned.
4: एब्सोल्युटली। और वॉलफार्ट शानदार फॉर्म में है, पिछले साल विश्व कप में 50 ओवर के विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अभी भी रन बनाने की मशीन बनी हुई है।
0: क्वालिटी बैट्समैन है, देखिए पेडिग्री जो है ना वो आपको दिखेगा वो रिगार्डलेस कि कौन फॉर्मेट में व्हाइट बॉल खेल रहे या रेड बॉल। देखिए मंदाना, हरमनप्रीत, मिताली राज पहले थे, इन तो दे हैव क्वालिटी, और क्वालिटी जिस बैट्समैन में पेडिग्री और क्वालिटी है दे कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट ऑफ द। That's why we are talking कि number three में कौन बैट करना चाहिए, right? Mm-hmm. Because today Yastika did not get the runs as desired. But these kind of matches are very, very crucial. There, nobody will not look at run rates. They will look at victory, 2 points, right? So it is very, very important that you know you go with a proper mindset. और इस तरह का मैच हम जीतने का कोशिश करेंगे, not about run rates.
1: Not about run rates. It brings us to a very interesting point at this stage. On the 21st, Colonel, it's going to be the Indian bowlers versus South African batters, or do you think the South African bowlers versus the Indian batters? What do you think will be the bigger battle on that day?
2: I think the bigger battle would be the South African bowlers versus the Indian batters, and I hope we do well, okay, and score over 150 and put them under pressure with our spinners.
4: और हमने देखा है कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी में काप, जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि बल्ले से योगदान आ रहा है लेकिन गेंदबाजी में उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है साउथ अफ्रीका को।
3: गेंदबाजी की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं ना साउथ अफ्रीका का जो हमने लास्ट मैच खेला था वहां पे अगर देखा जाए तो फील्डिंग ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोनों साइड के बैटर बहुत अच्छे हैं एंड स्पिनर एंड बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बहुत काफी है। बट यहां पे डिफरेंस होगा सिर्फ आपकी फील्डिंग को लेकर कि आप कैचेस को कैसे ग्रैब कर रहे हैं। आप फोर, जहां पे आप फोर को स्टॉप कर रहे हैं वहां पे आप टू रन्स दे रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है फील्डिंग के अंदर। एंड साउथ अफ्रीका टीम के साथ हमें यही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी रन्स जितने कम से कम दे सकते हैं उनको, वो तभी आप आगे जीत के लिए जा सकते हैं। एंड उसके साथ मैं एक चीज और ये कहूंगी कि जैसे आज नंदिनी शर्मा ने बॉल डाली, आउटस्टैंडिंग बॉल डाली, बट उसके साथ अगर हम उन दोनों के फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं लेग साइड पे बॉल जा रही थी एंड वो हमें इम्प्रूव करनी है। जब जीत हमें मिलती है तो हम गलतियां भूल जाते हैं, बट गलतियों को देख के अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो वो हमें नेक्स्ट मैच के लिए विन दे सकती है।
1: इंडीड। और नंदिनी शर्मा की आपने जब बात की तो कीपर ऋचा घोष उनके लिए आगे खड़े हुए थे क्योंकि बल्लेबाज चहलकदमी करने पर उतर आए थे ताकि झूलती हुई गेंद को बेहतर संभाल सके। क्या आगे जाते हुए भी हम इन कंडीशंस में इसी पैतरे को आजमाते हुए देखेंगे ऋचा घोष स्टैंडिंग अप?
3: जी बिल्कुल, ऋचा घोष मैं हमेशा बोलती हूँ इंडियन टीम के लिए बेस्ट है एंड उनकी बैटिंग ही नहीं, उनकी कीपिंग भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो कहीं भी लेग साइड हो या ऑफ साइड हो वो हर जगह पे आपको डाइव लगाती हुई नजर भी आएंगी एंड वो जिस तरह से अपना माइंड सेट रखती है उस तरीके से वो बॉल भी डलवाती है बॉलर्स को। वो इशारे से जो एक इशारा देते हैं हम विकेट कीपिंग की जगह पे खड़े होके, वो बॉलर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एज एक टीम के लिए कीपर बैकबोन होता है, क्योंकि वो एक कीपर वहां पिच पे खड़े होके पूरी फील्ड सेट कर सकता है, सबको देख सकता है, उसके लिए वो सबसे इजी पॉइंट है वहां पे खड़े होके चेक करना।
1: All in all, a great win for the Indian side, and now they'll be putting their feet up and watching Pakistan take on the South African bowlers especially, so that they are better prepared and they do their homework for the next game on the 21st, Megha.
4: Absolutely. Indian team would now turn its attention on making all the notes. वैशाली यूज द वर्ड इशारा, हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से इशारा आ गया है इसी बात पे कि इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि 21 जून को हम वापस आएंगे। सुहास आपका धन्यवाद, हमारे विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रोडक्शन की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर शहनवाज खान ने उठाई, और प्रोडक्शन टीम में इंजीनियर्स हैं मनोज, अजय राणा और आर यादव, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं तन्मय पंत, अमीशा पटेल और कविता। और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का यहां पर समापन करेंगे, वापस लौटेंगे 21 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले के साथ, जुड़ते हैं आपके साथ शाम 6:30 बजे।
5: प्लेयर ऑफ द मैच,
6: अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
7: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

श्रोताओं, श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सीधा प्रसारण, जो कि भारत और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा था। इसमें भारत की जीत हुई। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजे हम आपको लिए चलेंगे फिर से दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में। तो उसके पहले चलिए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के बाद अब आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स

0: निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।